0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिली किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर

0: खानाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। चिंतन,

सच्ची और विश्वास युक्त प्रार्थना में अपार शक्ति है। प्रार्थना की ये शक्ति और भी असीम हो जाती है जब हम वो याचना करें जो जन जन के लिए कल्याणकारी हो, जिसमें धर्म की विजय और अधर्म की पराजय हो, दुखों का नाश हो और हर तरफ सुख की वर्षा हो। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, मेरा नहीं है। ये वस्तुएं प्रकृति की देन हैं, मेरी नहीं है। केवल एक परमात्मा ही मेरा है और मैं उस पार ब्रह्म परमात्मा का हूं। ये बात यदि भली प्रकार समझ में आ जाए तो मनुष्य को शांति की प्राप्ति हो जाती है।

प्रभु की आराधना करने से हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। हमारे भीतर लोभ, मोह, अहंकार आदि के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं, भक्ति के द्वारा वह समाप्त हो जाते हैं और हृदय में प्रेम जागृत होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 MHz पर। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 110।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिलीज किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा। गाने सुहाने हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:30 पर। जनवाणी ये सजीव फोन इन कार्यक्रम पेश किया जाएगा सुबह 9:00। सुबह 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम गीतों का कारवां। पहाड़ों के सुर कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक संगीत 10:30 पर। जय हिंद गीतमाला कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 11:05। 11:30 पर प्रसारित किया जाएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सैनिक भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे सैनिकों के लिए 12:00। पर सुनो सखी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिली किए जाएंगे। 5:10 पर सुनिएगा गैर फिल्मी भजन। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवा मंच 5:30 पर। कार्यक्रम में आज सुनिए फिल्मी फ्राइडे। 6:05 पर किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा मौजा ग्राइंदियां। कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:35 पर। सबरस कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:00। 9:15 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम कारवां सुरों का। बॉलीवुड बीट्स कार्यक्रम में आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीत 10:00। 10:30 पर पेश किया जाएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

एक बजे, शाम 5 बजे, 7 बजे और रात 11 बजे हिंदी में समाचार, 1:05, शाम 5:05, 7:05 और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9 बजे न्यूज़ @9।

तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिली किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिली किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह सुहानी।
1: दोस्तों नमस्कार, सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे। दिन और सुबह और भी सुहानी हो जाती है जब आपका और हमारा साथ बना रहता है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के विचार के साथ।
2: आज का विचार,
1: क्रोध में लिया गया निर्णय और अहंकार में बोले गए शब्द हमेशा हानि पहुंचाते हैं। शांत मन से सोचना जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि शांत जल में ही प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। आज अपने मन को शांत रखिए और प्रेम से भरे शब्द बोलिए। जी हाँ दोस्तों, बोलकर देखिए अच्छा लगता है।

जी हाँ दोस्तों, आपस में प्रेम करो, सबसे मीठा बोलो, इसके और भी बहुत से फायदे हैं जो आप और हम सभी जानते ही हैं। सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिनके कारण आज का ये दिन खास बन गया, और साथ ही बात करते हैं आज की। दोस्तों आज 5 जून है और आज के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस संबंध में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं वर्ष 2005 की। ताइवान ने अपनी पहली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण आज के दिन किया था। 2008 में आज ही के दिन एलेन परेरा ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला। आज ही के दिन वर्ष 2017 में सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3D1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। किन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए आपको बता देते हैं। 1879 में आज के दिन NM जोशी का जन्म हुआ। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन

के जन्मदाता थे एनएम जोशी। 1892 में आज के दिन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व औपनिवेशिक काल में पंजाब प्रांत के प्रधानमंत्री सिकंदर हयाज खान का जन्म हुआ। 1901 में गोविंद शंकर कुरूप का जन्म आज के दिन हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में हम उन्हें जानते हैं, गोविंद शंकर कुरूप। 1961 की अगर हम बात करें तो आज के दिन भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन का जन्म हुआ। आज के दिन 1972 में जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। किन महान हस्तियों के निधन आज के दिन हुए आपको बता दें, 1942 में आज के दिन प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक मास्टर मदन का निधन हुआ। 1942 की आज पुण्यतिथि है। मास्टर मदन देश की आजादी से पहले एक प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1927 को जालंधर पंजाब में हुआ था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मास्टर मदन को आकाशवाणी और अनेक रियासतों के दरबार में गाने के लिए आमंत्रित किया जाता था और इसके बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम दी जाती थी। जालंधर में रहने के कारण मास्टर मदन उस समय के विख्यात गायक कुंदन लाल सहगल के बेहद करीब थे। मास्टर मदन के केवल 8 गाने ही रिकॉर्ड हो पाए थे जो आज उपलब्ध हैं। महज 8 वर्ष की आयु में उन्हें संगीत सम्राट कहा जाता था। महज 14 वर्ष की अल्पायु में 5 जून यानी आज के दिन 1942 को इस विलक्षण प्रतिभा के धनी बालक का निधन हो गया। आइए सुने मास्टर मदन का गाया ये गीत।

मास्टर मदन का गाया ये नायाब गीत अभी आपने सुना। सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब बात करते हैं आज की। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रतिवर्ष 5 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सकारात्मक पर्यावरण कार्य हेतु विश्व भर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को लेकर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ और प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित कर जनमानस को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनमानस को प्रेरित करना था। हमारे चारों ओर प्रकृति और मानव निर्मित जो भी जीवित या निर्जीव वस्तुएं हैं वे सब मिलकर पर्यावरण बनाती हैं। 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, जिसके अनुसार जल, वायु, भूमि इन तीनों से संबंधित कारक और मानव, पौधे, सूक्ष्म जीव, अन्य जीवित पदार्थ आदि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम के कुछ नियम और कानून हैं जिनका उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम हाजिर हैं ताजातरीन खबरों के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूके की विदेश सचिव जवेट कूपर ने भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्वी मेदिनीपुर के दादन पत्रबार में नए बंदरगाह विकास की घोषणा की। साथ ही आपको बता दें, सरकार ने राष्ट्रीय छात्र लैपटॉप योजना 2026 को लेकर वायरल दावों का खंडन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर से रुख करते हैं मनोरंजन की और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना। श्रोताओं के सुझावों और शिकायतों से संबंधित कार्यक्रम आप और हम इस बार रिकॉर्डिंग पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग के लिए आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। यदि आप हमारे प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में कोई सुझाव देना चाहते हैं या अपनी शिकायत एवं प्रतिक्रिया साझा करना चाहते हैं तो आज यानी 5 जून 2026 दोपहर 1:15 से 1:45 के बीच हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए आपको मिलाना होगा हमारा दूरभाष नंबर 01892224391। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रमों को और अधिक रोचक, उपयोगी और श्रोताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में सहायता करते हैं। तो याद रखिए, आज दोपहर 1:15 से 1:45 तक कार्यक्रम आप और हम की रिकॉर्डिंग के लिए हमें अवश्य कॉल करें। फोन नंबर है 01892224391। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। और दोस्तों, सुबह सुहानी कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों ये था आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अपने दोस्त संजीव को इजाजत।
1: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 17वां अध्याय, नेटाल में बस गया। अर्जी लिखने में मैंने बहुत मेहनत की, जो साहित्य मुझे मिला सो सब मैं पढ़ गया। हिंदुस्तान में हम एक प्रकार के मताधिकार का उपभोग करते हैं। सिद्धांत की इस दलील को और हिंदुस्तानियों की आबादी कम है, इस व्यावहारिक दलील को मैंने केंद्र बिंदु बनाया। अर्जी पर 10,000 सहियां हुई। एक पखवाड़े में अर्जी भेजने लायक सहियां प्राप्त हो गईं। इतने समय में नेटाल में 10,000 सहियां प्राप्त की गईं। इसे पाठक छोटी मोटी बात ना समझें। सहियां समूचे नेटाल से प्राप्त करनी थी। लोग ऐसे काम से अपरिचित थे। निश्चय यह था कि सही करने वाला किस बात पर सही कर रहा है, इसे जब तक वह समझ ना ले तब तक सही ना ली जाए। इसलिए खास तौर पर स्वयं सेवकों को भेज कर ही सहियां प्राप्त की जा सकती थीं। गांव दूर दूर थे, इसलिए अधिकतर काम करने वाले लगन से काम करें तभी ऐसा काम शीघ्रतापूर्वक हो सकता था। ऐसा ही हुआ। इसमें सबने उत्साहपूर्वक काम किया। काम करने वालों में सेठ दाऊद मोहम्मद पारसी रुस्तम जी, आदम जी मियां खान और आदम जीवा की मूर्तियां इस समय भी मेरी आंखों के सामने खड़ी हैं। ये खूब सहियां लाए थे। दाऊद सेठ अपनी गाड़ी लेकर दिन भर घूमा करते थे। किसी ने जेब खर्च तक नहीं मांगा। दादा अब्दुल्ला का घर धर्मशाला अथवा सार्वजनिक दफ्तर सा बन गया था। पढ़े लिखे भाई तो मेरे पास ही बने रहते थे। उनका और अन्य काम करने वालों का भोजन दादा अब्दुल्ला के घर ही होता था। इस प्रकार सब बहुत खर्चे में उतर गए। अर्जी गई, उसकी 1,000 प्रतियां छपवाई थीं। उस अर्जी के कारण हिंदुस्तान के आम लोगों को नेटाल का पहली बार परिचय हुआ। मैं जितने अखबारों और सार्वजनिक नेताओं के नाम जानता था उतनों को अर्जी की प्रतियां भेजी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस पर अग्रलेख लिखा और हिंदुस्तानियों की मांग का अच्छा समर्थन किया। विलायत में भी अर्जी की प्रतियां सब पक्षों के नेताओं को भेजी गई थीं। वहां लंदन के टाइम्स का समर्थन प्राप्त हुआ। इससे आशा बंधी कि बिल मंजूर ना हो सकेगा। अब मैं नेटाल छोड़ सकूं, ऐसी मेरी स्थिति नहीं रही। लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और नेटाल में ही स्थायी रूप से रहने का अत्यंत आग्रह किया। मैंने अपनी कठिनाइयां बताईं। मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे सार्वजनिक खर्च पर नहीं रहना चाहिए। मुझे अलग घर बसाने की आवश्यकता जान पड़ी। उस समय मैंने यह माना था कि घर भी अच्छा और अच्छी बस्ती में लेना चाहिए। मैंने सोचा कि दूसरे बारिस्टरों की तरह मेरे रहने से हिंदुस्तानी समाज की इज्जत बढ़ेगी। मुझे लगा कि ऐसा घर मैं साल में 300 पाउंड के खर्च के बिना चला ही नहीं सकूंगा। मैंने निश्चय किया कि इतनी रकम की वकालत की गारंटी मिलने पर ही मैं रह सकता हूं और वहां रहने वालों को इसकी सूचना दे दी। साथियों ने दलील देते हुए कहा, पर इतनी बड़ी रकम आप सार्वजनिक काम के लिए लें, यह हमें पुसा सकता है
और इसे इकट्ठा करना हमारे लिए आसान है। वकालत करते हुए आपको जो मिले सो आपका। मैंने जवाब दिया, मैं इस तरह के पैसे नहीं ले सकता। अपने सार्वजनिक काम की मैं इतनी कीमत नहीं समझता। मुझे उसमें कोई वकालत तो करनी नहीं है, मुझे तो लोगों से काम लेना होगा। उसके पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर मुझे सार्वजनिक काम के लिए आपसे पैसे निकलवाने होंगे। अगर मैं अपने लिए पैसे लूं तो आपके पास से बड़ी रकम निकलवाने में मुझे संकोच होगा और आखिर हमारी नाव अटक जाएगी। समाज से तो मैं हर साल 300 पाउंड से अधिक ही खर्च कराऊंगा, पर हम आपको पहचानने लगे हैं। आप कौन अपने लिए पैसे मांगते हैं? आपके रहने का खर्च तो हमें देना ही चाहिए ना? यह तो आपका स्नेह और तत्कालिक उत्साह बुलवा रहा है। यही उत्साह और यही स्नेह सदा बना रहेगा, यह हम कैसे मान लें? मौका आने पर मुझे तो कभी कभी आपको कड़वी बातें भी कहनी पड़ेंगी। उस दशा में भी मैं आपके स्नेह की रक्षा कर सकूंगा या नहीं सो तो देव ही जाने। पर असल बात यह है कि सार्वजनिक सेवा के लिए मुझे पैसे लेने ही ना चाहिए। आप सब वकालत संबंधी अपना काम मुझे देने के लिए वचनबद्ध हो जाएं तो उतना मेरे लिए बस है। शायद यह भी आपके लिए भारी पड़ेगा, मैं कोई गोरा बैरिस्टर नहीं हूं। कोर्ट मुझे दाद दे या ना दे मैं क्या जानूं? मैं तो यह भी नहीं जानता कि मुझसे कैसी वकालत हो सकेगी। इसलिए मुझे पहले से वकालत का मेहनताना देने में भी आपको जोखिम उठानी है। इतने पर भी अगर आप मुझे वकालत का मेहनताना देंगे तो वह मेरी सार्वजनिक सेवा के कारण ही माना जाएगा ना? इस चर्चा का परिणाम यह निकला कि कोई 20 व्यापारियों ने मेरे लिए 1 वर्ष का वर्षासन बांध दिया। इसके उपरांत दादा अब्दुल्ला विदाई के समय मुझे जो भेंट देने वाले थे उसके बदले में उन्होंने मेरे लिए आवश्यक फर्नीचर खरीद दिया और मैं नेटा

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में संवाद बहुत जरूरी है और यही कोशिश करता है आपका अपना आकाशवाणी धर्मशाला का परिवार।
2: जी श्रोताओं, चैटिंग और मैसेजिंग की इस दुनिया में आकाशवाणी धर्मशाला आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा मंच जहां जुड़ती है आम जनता की आवाज, उनके विचार, उनके सुझाव और उनकी उम्मीदें।
1: आपकी इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी, जहां हर राय मायने रखती है, हर आवाज गूंजती है।
2: साथियों, जनवाणी सशक्त माध्यम है आपके और हमारे बीच संवाद का, जिसमें आप फोन कॉल्स के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं।
1: क्योंकि आपकी हर बात हमारे लिए मायने रखती है, तो आइए मिलकर अपनी बातें साझा करते हैं कार्यक्रम जनवाणी में हर शुक्रवार सुबह 9 बजे FM धर्मशाला।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिलीज किए जाएंगे।

0: भाई है ना बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज PCPIR और सरिगाम GIDC में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास

0: पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
0: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा

0: शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति

0: कुमार सानू की आवाज में शिकारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। संगीत आदेश श्रीवास्तव का था।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की आवाजों में लीजिए सुनिए मुन्ना भाई MBBS फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं राहत इंदौरी, संगीतकार अनु मलिक।

0: फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थीं श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की।
1: रिश्तों की खुशबू से महकेगा हर पल,
2: जहां सवरेगा सखियों का आज और कल,
3: जानकारी मनोरंजन और भावनाओं से भरपूर,
2: जहां आप नहीं रह पाएंगी हमसे दूर।
1: आ रहा है आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
3: जहां मिलेंगे जीवन को बेहतर बनाने वाले विचार
2: और खान पान में बनाएंगे कई व्यंजन और अचार।
3: तो सोमवार से शनिवार सुनना ना भूलिए
2: आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
1: दोपहर 12:30 पर
3: सिर्फ आकाशवाणी धर्मशाला से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कुमार सानू और एलके अग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए गुलाम फिल्म का ये गीत। इंदिवर के बोलों को सुरों में ढाला है जतिन ललित ने।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सोनू निगम और तुलसी कुमार के गाए हमको दीवाना कर गई फिल्म के इसी गीत के साथ आज का गाने सुहाने कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जनवाणी।

दोस्तों नमस्कार, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व भर में पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखते हुए ये दिन 5 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है। पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये आप बखूबी जानते ही हैं। यूं तो इस दिन को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, लेकिन वास्तव में ये दिवस आपसे जुड़ा है, हमसे जुड़ा है। इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, मृदा आदि सभी से जुड़ा है। हम सभी को पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए, तभी हम एक स्वस्थ और दीर्घायु रहने की कल्पना कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण में आपका क्या योगदान है, यही विषय है आज के जनवाणी कार्यक्रम का। तो उठाइए फोन, डायल कीजिए स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर 0182224391 और कीजिए हमसे बात।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर
0: जी। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए।
1: सर नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, सरकार घाट मंडी से जी।
0: जी नेगी साहब, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे सर, बस आचार संहिता लगी थी, इस दौरान आपसे बात नहीं हो पाई जी।
0: जी बिल्कुल, और हम भी देखिए व्याकुल थे आपसे बात करने के लिए, लेकिन मजबूरियां थी, नहीं कर पाए।
1: हमने भी खुद को आचार संहिता के बंधन में बांध लिया था सर, और बिल्कुल चुप रहे, मतलब पंजाब के भी किसी रेडियो स्टेशन पे बात नहीं कर सके जी।
0: जी देखिए, समय के साथ और परिस्थितियों के अनुरूप हमें चलना ही चाहिए, तभी हम सफलता से जीवन को जी सकते हैं।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली सर।
0: जी क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में?
1: सर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमने 100-150 साल के इस विकास के दौर में पर्यावरण को इतना बिगाड़ दिया है कि अब हमें पर्यावरण मित्र बनना चाहिए, पर्यावरण बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और हर बंदे को जागरूक होना पड़ेगा जी।
0: जी बिल्कुल, आपकी बात 100% यानी 100% सही है। आप अपने बारे में बताइए, पर्यावरण संरक्षण में आपका क्या योगदान रहता है?
1: सर मतलब ये समझ लीजिए कि प्रकृति के साथ संतुलन बना करके हम भी जो दैनिक कार्य हैं उसमें पर्यावरण का नुकसान ना हो, उसको कम से कम तर कैसे किया जाए, उसके बारे में बिल्कुल जागरूक रहते हैं और इसको अपनी आदत में शुमार करने की हर संभव कोशिश करते हैं सर। औरों को भी विसल ब्लोअर बन करके जो है वो इसमें सहयोग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने एक संस्था भी बनाई हुई है ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जिसमें ऊपर पहाड़ों पे जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि टूरिस्ट आते हैं और बहुत सारा कचरा जो है वो वहाँ पर फैला के चले जाते हैं जी।
0: जी
1: हमारे बांध देखिए, पंडो डैम में डेली एक ट्रक निकलता है जब टूरिस्ट सीजन होता है सर, प्लास्टिक का सर।
0: तो ऐसे ऐसे पर्यटकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के कृत्य करते हैं?
1: सर मेरी तो ये गुजारिश है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। हिमाचल में प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, आपका चलान भी हो सकता है, और प्लास्टिक को जंगलों में मत फैलाएं। ये पेड़ अगर हरे भरे रहेंगे, हिमाचल हरा भरा रहेगा तो टूरिज्म भी बना रहेगा और हमारी आर्थिकी का एक बहुत बड़ा साधन है। पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाओ और सच्चे पर्यावरण रक्षक बन करके हम अपनी जीवन शैली में जैसे बिजली या पानी को बचाना या ऊर्जा को बचाना, तो ये तमाम कोशिशें हमें करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। और कचरे का सही प्रबंधन करें, उत्पादों का प्रयोग जो है वो इस तरह से करें कि परिवहन और प्रदूषण कम से कम हो, जो कार पूलिंग है वो करें ताकि परिवहन का जो प्रदूषण है उसको कम

0: किया जा सके, और पर्यावरण मित्र परिवहन यानी कि थोड़ी छोटी दूरी तय करने के लिए या तो पैदल चलेंगे, साइकिल का प्रयोग करेंगे। अभी साइकिल दिवस भी एक 3-4 दिन पहले मनाया गया
1: जी।
0: और सार्वजनिक परिवहन का हिमाचल में इस्तेमाल करें। आपकी जो टूरिस्टों की जो गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में आती हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स को यहां का तजर्बा नहीं होता और जिसकी वजह से आप दुविधा में पड़ते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, हेयर पिन कर्व है यहां पर। तो ये बहुत सारे प्रकृति की अगर पूरी तरह से नजारा लेना है तो हिमाचल की HRTC बहुत बढ़िया एक सुविधा है आप लोगों के लिए, जिसकी विभिन्न बसें, वॉल्वो, दूसरी एयर कंडीशन, बहुत सारी गाड़ियां यहां पर चलती हैं, तो उनका सदुपयोग करेंगे
1: जी। बहुत बढ़िया विचार आपकी निगी साहब, और बहुत अच्छा संदेश आपने दिया आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप भी हमें फोन कर सकते हैं 01892224391, यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर।
2: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है? भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है। नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
3: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
4: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं 01892224391, यह स्टूडियो का टेलीफोन नंबर। और पर्यावरण संरक्षण में आपका क्या योगदान रहता है, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
5: हेलो
1: हेलो।
5: हाँ भैया, नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
5: जी भैया, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी योगेश जी, क्या करते हैं छत्तीसगढ़ में रहकर?
5: हमारा मूल काम खेतीबाड़ी का है भैया। जी,
1: आज पर्यावरण दिवस है और आप खेतीबाड़ी से जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे बताइए।
5: जी, हम तो यही कहेंगे भैया, हमारा तो पूरा जो समय होता है, जीवन होता है, वो अधिकांश खेती मतलब प्रकृति के बीच में ही गुजरता है। और प्रकृति से जुड़ाव रखना, प्रकृति से प्रेम करना, ये हमें बखूबी आता है।
1: क्या बात है। तो आप खेतीबाड़ी में सिर्फ फसलें लगाते हैं या फलदार पेड़ पौधे भी लगाए हैं आपने?
5: पेड़ भी बहुत सारे हैं भैया, बाड़ी में भी हैं और खेत में भी हैं। और विशेष रूप से आपको एक चीज बताना चाहेंगे भैया कि हमारे यहाँ बांध है 2 बड़ा बड़ा
1: जी।
5: तो कुछ समय पूर्व वहाँ ना पशुओं का मतलब पक्षियों का वो किया जाता था शिकार, तो उसको हमने 100% मतलब बंद कराया था फॉरेस्ट विभाग से मिलकर।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा काम आपने किया, क्योंकि जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ये भी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं।
5: और इन सबको सहेजना और सामंजस्य रखना मानव समाज के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी का काम है और इसे हमें स्वयं ही करना है।
1: जी बिल्कुल, और पर्यावरण संतुलन भी तभी बन सकता है जब ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी सुरक्षित रहें।
5: जी
1: जी, और कुछ कहना चाहेंगे योगेश जी?
5: जी नहीं भैया, काफी अच्छा विषय रखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और इसी तरह से हमें फोन करते रहिए, अपने विचार व्यक्त करते रहिए कार्यक्रमों में। जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो,
1: नमस्कार संजीव जी, मैं रतन चंद बोल रहा हूँ।
0: जी रतन जी नमस्कार,
1: कैसे हैं सर?
0: जी बहुत बढ़िया हैं, अपने बारे में बताइए।
1: बहुत बढ़िया सर, विषय आपका बहुत बढ़िया है। और देखिए आप कि आज शुक्रवार भी है और आपका विषय भी वही है और विश्व पर्यावरण दिवस भी है, कैसा मेल मिल गया है।
0: जी बिल्कुल, और देखिए ना, पर्यावरण तो ऐसी चीज है कि इसकी बात हम जब भी करें तभी हमें सुकून ही मिलेगा।
1: और हर रोज करनी चाहिए, चाहे परिवार के साथ, चाहे मित्रों के साथ, चाहे कहीं और।
0: जी हाँ,
1: तो ऐसा सर, इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिशरी है, जैसे आदमी है बिल्कुल चेतन है, उसको सब पता है कि क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा। आदमी, सारे जीव जंतु, जानवर, सभी इसके ऊपर निर्भर हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: आप निर्जीव की बात करें, आप दरख्त ले लो, पानी ले लो, जमीन ले लो, सूरज की रोशनी ले लो, ये एक दूसरे के पूरक है सारे।
0: जी बात आपकी बिल्कुल सही है।
1: तो हम क्या कर रहे हैं कि अब तो वैसे काफी टाइम निकल चुका है, अब भी हम नहीं जागे तो शायद फिर जागना मुश्किल भी हो जाएगा थोड़ा।
0: जी देखिए, जागृति के लिए हम जो भी करें वो कम है, और प्रकृति से अगर खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति फिर अपने तरीके से जगाती है।
1: हाँ, वो बाउंस बैक करती है और अब पूरे जोर से करती है फिर।
0: जी
1: तो अब देखिए ना, 1973 में जब वे पर्यावरण दिवस मनाने का ये हुआ, तो उस वक्त देखिए 1973 में ही आप सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना सबने, उनके साथ हो गए चांदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, इन्होंने वो चिपको आंदोलन चला दिया।
0: जी
1: सरकार ने सारा नलाम किए हुए थे, जंगल नहीं काटने दिए उन्होंने, जिस जंगल पे कुल्हाड़ी चलाने लगते थे उसको वो झप्पी डाल के खड़े हो जाते थे, नहीं चलने दिया उन्होंने।
0: जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी पहल थी,
1: बहुत अच्छी पहल थी, और इसी फिर जागरूक हुए लोग, और हिमाचल में 1980 में हिमाचल में भी ये शुरू हो गया काम।
0: जी
1: अब चंबा के एक

0: बहुत मशहूर, आपने भी उनके लेख पढ़े होंगे, माननीय कुलभूषण उपमन्यु जी,
1: जी
0: गांधीवादी विचारों के नेता थे और पर्यावरण भी थे। मैं बहुत उनके लेख पढ़ता था, बड़े अच्छे अच्छे उनकी किताबें भी होंगी, बहुत उन्होंने पर्यावरण पर किया। फिर सरमौर की किंकरी देवी का नाम आता है, उन्होंने तो बिल्कुल वही चिपको आंदोलन चला दिया बहुगुणा जी वाला, और उन औरतों ने तो फिर दरख्तों को राखी बांधना शुरू कर दी। आप देखिए प्रेम, देखिए पर्यावरण से,
1: यही प्रकृति से प्रेम है और यही सुंदरता है हमारे देश की संस्कृति की भी। और बहुत से बड़े बड़े नाम आपने गिनवा दिए हैं और बहुत सी संस्थाएं और सरकार भी अपने तरीके से काम कर रही है। आज का जो विषय है वो ये है कि हम क्या योगदान दे पा रहे हैं, आपका क्या योगदान रहता है पर्यावरण संरक्षण में, ये बताइए।
0: सर हमारा योगदान है, हमने आज तक जो पौधा लगाया उसको हमने पाल पोस के बड़ा किया।
1: क्या बात है।
0: और मैं पता नहीं, मैं लोग बोलते हैं जी कि आप तो हाथ में गुण होगा, कोई हाथ में गुण नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। दरख्त लगा दो, उसको एक साल पानी देना पड़ता है और उसके बाद उसको ट्री गार्ड वगैरह लगा दो, एक दो साल उसकी करो, अपने आप दरख्त जो उगते हैं। तो मैंने आज तक जितने भी सब पौधे लगाए हैं, और मैंने अभी मैंने दो तीन लगाए, तो जो लोहे का ट्री गार्ड होता है वो 800 रुपए का एक मिला, तो मैं 5 खरीद के वो 5 पौधों में वो भी लगा दिए कि चलो उनको दीमक खा जाती है, लकड़ी वालों को, बाढ़ को दीमक खा जाती है, तो ये आराम से वो पढ़ते रहेंगे अपने।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पौधा लगा तो देते हैं लेकिन बाद में उसकी देखभाल नहीं करते, जिससे वो पौधा पनप नहीं पाता और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है।
0: और संजीव जी एक बात और सुनिए, अभी देखिए जुलाई अगस्त में बड़े बड़े आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे वन महोत्सव के,
1: जी
0: कि 13 करोड़ 20 लाख एक दिन में लगा दिए या एक महीने में लगा दिए। मैं तो बोलता हूँ सरकारें यदि संवेदनशील हों तो एक काम जो है नीचे जो हमारी पंचायत है उस तक छोड़ देना चाहिए। एक पंचायत को बोलो सिर्फ आप 500 पौधे लगाएंगे और फिर वो वार्ड के हिसाब से 50-50, 100-100 पौधे बांट देंगे और उनको बोला जाएगा भाई ये 5-5 पौधे हरि परिवार जो लगाएगा इसकी पूरी रक्षा करेगा, उसमें बाढ़ लगाएगा और उनको पालन पोषण करेगा उनका।
1: जी हाँ बिल्कुल। देखिए
0: उसके रिजल्ट मिलेंगे, हम आंकड़ों पे जाते हैं, हम उस पे नहीं जाते, असलियत क्या है।
1: देखिए पौधा चाहे कोई भी लगाए, सरकार की तरफ से लगे या कोई इंसान लगाए, लेकिन हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य रहता है कि जो भी पौधा लगा है उसका संरक्षण करें, उसे पनपने दें।
0: संरक्षण आजकल सर किसी ने पशु नहीं रखे हैं, बकरियां बिल्कुल नहीं रखी हुई हैं यहाँ हमारे यहाँ, तो किसी ने तो पशुओं का कोई नुकसान नहीं है। हमारे गद्दी भाई आते हैं तो उनकी मजबूरी है, उन्होंने तो परमिट लिए हुए हैं जंगलों के, तो जब तक हम उनको बाड़बंदी नहीं करेंगे तब तक पौधे नहीं पड़ते हो। तो
1: जी वो सब भी जरूरी है। देखिए अगर हमारे कुछ पशुपालक यहाँ आते भी हैं तो उनकी वजह से कितने पौधे पनप पाते हैं आपको मालूम ही है, कितनी अच्छी खाद उनके माध्यम से हमें जंगलों के लिए मिल जाती है वो भी मुफ्त में।
0: नहीं उनको तो हम बोल ही नहीं सकते, और उन्होंने परमिट लिया हुआ है वहाँ चराने का।
1: जी बिल्कुल।
0: तो हमको बाड़बंदी इसकी करनी है और जहां भी है जितना हम कर सकें पौधे पालने से, और सबसे मेन जो इसका मूल है यदि आपने दरख्त पाल लिए, पौधे लगा दिए और उनका पालन पोषण कर दिया तो आपको पानी भी अच्छा भरपूर मिलेगा, बारिश भी होगी और भूमि का जो कसरण है वो भी रुकेगा।
1: जी बिल्कुल। और रतन जी देखिए आप जैसे उम्र दराज जो हमारे श्रोता हैं उनका ये भी दायित्व बनता है, वो किसी तरह से युवाओं को भी प्रेरित करें, वो इस तरह के कार्य करें और पौधे लगाएं, उनका संरक्षण करें और पर्यावरण को बचाएं।
0: नहीं युवा अब आ रहे हैं आगे, युवा और युवा ही अब जिसको आप जेन जेड बोलें या जो भी बोलें, ये जिस काम को हाथ में ले लेते हैं करके छोड़ेंगे, तो सरकारों को भी इनको प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। रतन जी बहुत लंबी बातचीत आपसे हो गई और अब बातचीत को यहाँ विराम देते हैं, सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला। शुक्रिया फोन करने के लिए। जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, कार्यक्रम अभी जारी है, कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे 9:30 पर, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज शिमला में एंटी चिट्टा व पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का हुआ आयोजन। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी को करने होंगे प्रयास। नशे के खिलाफ पुलिस के प्रयासों को भी सराहा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश, नगर निकायों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायक नहीं डाल सकेंगे वोट। और प्रदेश के कई स्थानों पर आज अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर राजधानी शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विजेताओं व प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हिमाचल पुलिस व जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश के सहयोग से एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसको सुबह 6:30 बजे राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में युवा, विद्यार्थी, शिक्षण संस्थान, सरकार विभाग, स्वयंसेवी संगठन, महिला मंडल, खेल संगठन और आम नागरिकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अभियान युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली, फिटनेस, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: इस बीच राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मैराथन के दौरान उपस्थित युवाओं व लोगों को पर्यावरण संरक्षण व नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है और इस धरती माँ के संरक्षण के लिए सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने होंगे। उन्होंने नशे के खिलाफ हिमाचल पुलिस के प्रयासों व युवाओं की भागीदारी की भी सराहना की। इस बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भाजपा प्रदेश भर में एक माह का पौधरोपण अभियान चलाएगी। इस अभियान में जनभागीदारी से हजारों पौधे रोपित किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा के अनुसार इस दौरान विभिन्न जिलों, मंडलों व बूथ स्तर तक पौधरोपण कार्यक्रम के जरिए आम जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा नेतृत्व सहित जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पौधरोपण करेंगे। दूसरी ओर आज प्रदेश भर में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं, महिला युवक मंडल व अन्य लोग पौधरोपण करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। नीरज भारती ने लिखा है कि ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पिछले 3.5 वर्षों के कार्यकाल में पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता पर असंतोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि नीरज भारती के पिता चंद्र कुमार प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत स्थानीय विधायक को संबंधित नगर परिषद या नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के इन आदेशों के बाद विधायक संबंधित नगर परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। न्यायालय ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि प्रदेश के नगर निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा करें। यह चुनाव केवल निर्वाचित पार्षदों की इच्छा और बहुमत के आधार पर ही होगा। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। लाहौल स्पीति जिले की दूरस्थ पीन वैली में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर व आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा इंटरनेशनल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जहां कई इलाकों में ग्रामीण लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, वहीं विद्यालयों में विद्यार्थियों को आत्मरक्षा के उद्देश्य से भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: स्पीति के दूर स्पीन वैली में सेवा इंटरनेशनल द्वारा 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर और आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बहार इन्फोकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से चलाया जा रहा है। कुंगरी गांव में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सगनम के मेडिकल टीम ने ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श और दवाइयाँ उपलब्ध करवाई। शिविर में डॉक्टर तशी दोरजे और फार्मासिस्ट रतन बोस सहित स्थानीय स्वयंसेवकों ने सेवाएं दी। वहीं सगनम और गुलिंग के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसमें 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण ब्लैक बेल्ट कराटे विशेषज्ञ राजेंद्र कुमार ने दिया। सेवा इंटरनेशनल ने बताया कि आने वाले दिनों में मुद तेलिंग और आसपास के अन्य गांवों में भी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव का विकास और जन आकांक्षाओं को पूरा करना उनकी विशेष प्राथमिकता है। ये बात उन्होंने ग्राम पंचायत द्रमण के शिव मंदिर सुभाष नगर परिसर में नव निर्मित शेड के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में जमीनी विकास के लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका सबसे अहम होती है। लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के साथ साथ चंबा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जल स्रोतों की स्वच्छता व संरक्षण को लेकर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया है। इसी कड़ी में पर्यटन नगरी डलहौजी स्थित सुभाष बावली में जल स्रोतों की सफाई के साथ इसके संरक्षण को लेकर लोगों को भी जागरूक किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
3: जल स्रोतों के संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाया गया ये विशेष अभियान काबिले तारीफ है। इस अभियान के साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्कूलों में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों तथा NDPS अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा रही है ताकि युवा पीढ़ी को इससे दूर रखकर शिक्षा, खेल एवं अन्य सकारात्मक गतिविधियों की ओर अग्रसर किया जा सके। ऐसे अभियान समाज में बदलाव लाने के लिए काफी सार्थक साबित होंगे। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं रुककर वर्षा का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में आज अंधड़ बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जबकि चंबा, कांगड़ा और सोलन में येलो अलर्ट जारी किया है। कल 6 जून को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी चलने की आशंका है। मौसम के तेवरों से तापमान में गिरावट आने से निचले व मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं किसान इस बारिश को मक्की की बिजाई के फायदेमंद बता रहे हैं।
4: मेरा नाम भगत राम शर्मा, यही मांझो का निवासी हूँ। हमारे खेतों में नमी हो गई है, बारिश पड़ी है और खेती अच्छी बिजाई कर रहे हैं। आशा है कि और बारिश हो जाएगी 2-4 दिन में तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, जिससे हमारे सब लोगों की खुशी होगी।
0: और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सुर्खी दी है, नगर निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में विधायकों को वोट डालने का अधिकार नहीं। दैनिक भास्कर लिखता है, नगर परिषद नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में विधायक नहीं डाल सकेंगे वोट। पंजाब केसरी ने खबर दी है, हिमाचल में लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जे नियमित करने की नीति तैयार। वहीं दिव्य हिमाचल के शब्द है, रेगुलर होगा छोटे किसानों का भूमि अतिक्रमण, 20 बीघा की अधिकतम सीमा के साथ सरकार की नई पॉलिसी तैयार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज शिमला में एंटी चिट्टा व पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का हुआ आयोजन। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा

0: पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी को करने होंगे प्रयास, नशे के खिलाफ पुलिस के प्रयासों को भी सराहा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व CPS नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश, नगर निकायों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायक नहीं डाल सकेंगे वोट। और प्रदेश के कई स्थानों पर आज अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है जनवाणी कार्यक्रम का शेष भाग। दोस्तों, आज के जनवाणी कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण संरक्षण में आपका क्या योगदान है, ये है विषय आज के कार्यक्रम का। 01892224391 ये है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हेलो,
2: नमस्कार सर जी।
1: जी नमस्कार,
2: मैं जयकरण सराह से।
1: जी जयकरण जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया जी, आपसे बात करने की बहुत तमन्ना थी मेरी।
1: क्या बात है, और आज ये तमन्ना पूरी हो गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं?
2: आवाज है आपकी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: और पर्यावरण के बारे में तो यही कहूंगा मैं कि पेड़ लगाओ, अपने आप को सुरक्षित पाओ।
1: जी, और आप तो प्रकृति की गोद में रहते हैं।
2: जी जी जी,
1: आपके आसपास चाय के बागान
2: हम
1: भी हैं।
2: गांव में रहते हैं ना सर जी, तो पहले ऐसा टाइम था कि बड़े बड़े जो आम होते हैं ना गांव में,
1: जी
2: वो लगाते थे लोग, और कई आम ऐसे हैं कि किन्हीं के लोगों के नाम पड़े हैं, वो आज भी जारी है।
1: अच्छा, लोगों के नाम से वो पेड़ जाने जाते हैं?
2: हाँ जी, वो आप लगाते थे ना खुद, तो उस आदमी का नाम ही जुड़ा होता है उस पेड़ के साथ, और आजकल वो है वो नहीं लगा रहे हैं। और दूसरा मतलब आम के पेड़ हो गए, पीपल का, बड़ का पेड़ हुआ, ये जो प्रजाति ना आजकल बड़ी लुप्त हो जा रही।
1: जी,
2: तो पहले पेड़ लगाते थे हम, थके हारे पेड़ के नीचे बैठते थे, हमें आराम मिलता था।
1: जी बिल्कुल, और देखिए कितना सुकून मिलता था उस वक्त जब पेड़ के नीचे ट्याले पर बैठा जाता था गर्मियों के दिनों में।
2: हाँ जी हाँ जी, तो और ये जो पेड़ होते थे ना छोटे छोटे, उनका गानों में भी वर्णन किया गया कि इस वो बरोटुए दी छाई छाई दो कड़ियां टेले।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत ही मशहूर हिमाचली गाना है। आप थोड़ा तरन्नुम में इसे गा करके सुनाए तो।
2: और कुछ लोग ऐसे हैं जी, जो हमारे ना मतलब विकास हो रहा है ना, चाहे 4 लाइन ही है, कुछ और चीजों का विकास हो रहा है, लोग इस पर भी प्रश्न उठा रहे हैं कि ये पेड़ काटे जा रहे हैं। आप सही तरीके से देखें तो हम एक जगह तो खड़े रह नहीं सकते
1: जी।
2: और जो रोड बन रहे हैं ना, उनके आसपास मतलब पौधे भी लगाए जा रहे हैं, या बीच में जगह छोड़ दी है, कहीं कहीं साइड में छोड़ी है, और बढ़िया बढ़िया फूलदार जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं।
1: जी बिल्कुल, देखिए वक्त के साथ ताल से ताल मिलाकर हमें चलना ही पड़ता है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, है ना?
2: हाँ जी।
1: तो जयकरण जी ये बताइए, आप क्या करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए?
2: काम करता हूँ सर।
1: नहीं, वो तो आप अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या करते हैं?
2: मैं कहना चाहूंगा सर जी कि आगे मौसम बहुत अनुकूल जो पेड़ लगाने का आ रहा है ना।
1: आप भी लगाते हैं पेड़?
2: जी जी जी, लगाता हूँ मैं, और अभी से तैयारी करें क्योंकि खड्डा खोद कर उसमें खाद वगैरह डाल के उनको ढक दें जी अच्छी तरह।
1: जी, और देखिए गांवों में
2: जब हम पेड़ लगाएंगे ना, उसमें तो मतलब वो बड़ी अच्छी जगह जो है वो नरम हो जी, और पेड़ लगाने के अनुकूल हो
1: जी। गाँव में आप रहते हैं, और गाँव में बहुत से प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, बावड़ियां होती हैं, तो है आपके गाँव में कोई इस तरह का?
2: जी जी जी, बहुत सारी हैं। अभी जो गर्मियां पड़ी हैं ना, एक बार कई बार तो ऐसा होता है नल में भी पानी सूख जाते हैं ना, ऊपर के जो साधन पानी आता है ना नल में,
1: जी
2: वो जब सूख जाता है तो हम उनका ही प्रयोग करते हैं।
1: तो उसकी साफ सफाई के लिए आप लोग आगे आते हैं?
2: जी जी, पीने के लिए आज भी हम वही पानी यूज करते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है, वो पानी बिल्कुल प्राकृतिक है और मीठा है, है ना?
2: हाँ जी,
1: और तभी सेहत भी बरकरार रहती है।
2: जी सर जी,
1: जी
2: सर,
1: और कुछ कहना चाहेंगे जयकरण जी?
2: थैंक यू, धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जनवाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते थे लेकिन लगता है संपर्क टूट चुका है। सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध, जब भी हमें फोन करें कृपया नेटवर्क जांच लें, नेटवर्क जांच कर हमसे बात करें जिससे आपकी बात हम तक और हमारे सभी दोस्तों तक ठीक से पहुंच सके। हेलो।
2: हेलो सर जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
2: मैं मुरैना मध्य प्रदेश से अरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ सर जी।
1: जी तोमर साहब, कैसे हैं आप?
2: बहुत अच्छी तरह से सर जी, और पर्यावरण दिवस से सभी को बधाई देना चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल, और आप भी देखिए बधाई के पात्र हैं कि आपने पर्यावरण दिवस के दिन आकाशवाणी धर्मशाला में फोन मिलाया, लेकिन संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से अनुरोध, सभी श्रोताओं से कृपया नेटवर्क जांच कर हमें फोन करें जिससे आपकी बात हम तक और हमारे सभी दोस्तों तक ठीक से पहुंच सके। 01892224391 है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हेलो
2: हेलो
1: हेलो। जी लगता है संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। जब तक कोई अन्य श्रोता हमसे जुड़ते हैं आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हर पत्ते हर बूटे की हिफाजत हमें ही करनी है, तभी पर्यावरण दिवस हम ठीक से मना पाएंगे। 01892 01892224391, यह स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, डायल कीजिए, कीजिए हमसे बात और बताइए पर्यावरण संरक्षण में आपका क्या योगदान रहता है। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
1: नमस्कार सर, मैं विक्रम बोल रहा हूँ जी, बैजनाथ महाकाल से।
0: नमस्कार विक्रम जी,
1: पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयां सर, आपको भी और आपके द्वारा सुन रहे सभी श्रोताओं को भी।

0: पर ये बधाई सर तब तक संपूर्ण नहीं हो पाएगी जब तक हम एक्टिवली अपने पर्यावरण को संभालने में उसे सहेजने में मदद नहीं करेंगे।
1: जी देखिए, बातें सभी बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कमी कहाँ रहती है, कहाँ कमी रह जाती है ये बताइए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, कमी यहाँ पर रह जाती है सर कि देखिए, ये आप सभी को जानते ही हैं कि पर्यावरण दिवस में बड़े सारे पेड़ पौधे प्लांटेशन होगी, ये होगा, बड़ी चर्चाएं होंगी, बड़ा कुछ होगा, धरातल में वही सारा काम। मैं आपको अपनी बताऊं सर, ज्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा, जैसे ही सर हमारा ये जो धार बग्गी और ये सारा एरिया पड़ता है सर, ये पूरा ना इसमें चीड़ के प्लांटेशन है बड़ी ज्यादा
1: जी,
0: और हर गर्मियों में दुनिया भर की आग लगती है सर। तो मैं खुद ही सर लाइव जरूर करता हूँ, लाइव इसलिए करता हूँ, मैक्सिमम लाइव करता हूँ सर, वहां जाके मैं अकेला उठता हूँ, आधी रात को भी दिल करता तो मैं चला जाता हूँ सर आग बुझाने के लिए, लगा रहता हूँ आग बुझाने वहां जाके
1: जी अकेले।
0: और सर लाइव इसलिए करता हूँ कि कुछ लोग देख सकें, उससे थोड़ा प्रभावित हो सकें, और बाई चांस अगर मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो मेरे तक कोई सर्विस पहुंच सके, इसलिए मैं लाइव रहने की कोशिश करता हूँ सर।
1: जी देखिए, ये बहुत जोखिम भरा काम है और हम तो ये चाहेंगे
0: सर, बहुत जोखिम भरा
1: जी, हम ये चाहेंगे कि आप इसके लिए एक ग्रुप बनाइए, अपने जैसे और भी साथी जो है वो इस कार्य के लिए जुड़िए अपने साथ।
0: जी सर, जी जी जी जी जी सर, जुड़े हैं हमारे साथ ना, पर मैं खुद किसी को बोलता नहीं हूँ सर, क्योंकि वॉलंटियरली जिसने चलना हो वो चल सकता है, क्योंकि सर जोखिम बहुत है और कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। मैंने किसी को बोला कि तू चल मेरे साथ, और बाई चांस कोई इंसिडेंट हो जाता सर तो वो सिर पड़ने वाली बात हो जाती है ना सर।
1: जी देखिए, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत भलाई का काम है वनों की रक्षा करना, और इसके लिए हम समय समय पर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित भी करते हैं कि वनों की रक्षा हमें करनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि उन तथ्यों का पता लगाया जाए, उन माध्यमों का पता लगाया जाए कि जिनके कारण ये आग लगाई जाती है या लगती है।
0: लगे रहते हैं सर उसमें भी, और डिपार्टमेंट सारा साथ में होता है, वन विभाग को कॉल जाती है, वो लोग भी साथ में आ जाते हैं। अभी मैं कल परसों का इंसिडेंट सुनाऊं सर, 3-4 दिन पहले यहाँ पे आग लगी और हम किसी प्रोग्राम में थे, और वहां पर मैंने लाइव कर दिया, मैंने कहा देखो जी अभी नव निर्वाचित प्रधानों ने बड़े बड़े वायदे किए हैं, सॉरी मैं बोलना नहीं चाहूंगा सर। और
1: देखिए ऐसा है, सभी अपने अपने तरीके से सेवा का कार्य है ये करते ही रहते हैं, लेकिन हर किसी की, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने तरीके से भी पर्यावरण संरक्षण का कार्य करे।
0: जी नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ सर, मैंने कहा चलो जी चलते हैं सारे और मिलकर उसको बुझाते हैं, पर चलो वो गए नहीं गए बात की कहानी। रात को 6 बजे मैं गया वहां पर सर और आग बुझा रही, वहां पर ना मैंने एक अंडे मुर्गी के ना 6 अंडे 8 अंडे पड़े हुए थे वहां पे
1: जी।
0: और फिर मेरा बड़ा दिल उस पे उदास हुआ, सवेरे फिर गया उसको देखने, मैंने कहा मुर्गी बैठी हुई यहाँ पे कि नहीं, और शाम को फिर गया पर मुर्गी वहां पर नहीं आई, जिसका मतलब या तो वो जल गई या अभी वो मतलब उसमें बैठी नहीं थी तो वो आई नहीं। तो फिर 2 दिन के बाद उसको मैं उठा के लाया सर, घर में इंक्यूबेटर बनाया है और उसपे उन अंडों को फिर से वो मतलब उसको जर्मिनेशन के लिए रखा हुआ है सर। अब देखते हैं 10-15 दिनों में अगर मुर्गे बच्चे बाहर आते हैं तो थोड़ा सा पाल के फिर उनको जंगल में छोड़ देंगे सर।
1: जी, और तो, देखिए ना कितनी ही तरह की जो जंगली जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं वनों में लगती हुई आग के कारण।
0: मैं आपके माध्यम से सर ये पूछना चाहूंगा, और कुछ लोग अगर सुन भी रहे हो तो इस पर खास ध्यान दें कि सर ये हिमाचल में चीड़ क्यों आ गई, ये क्या दिक्कत हो गई, इसने तो पूरे जंगल राख कर दिए सर, ये तो सिरदर्दी बन गई है। देखिए अगर इस बार हमने
1: देखिए ऐसा है कि पेड़ पौधे चाहे कोई भी हैं वो हमें ऑक्सीजन देने का काम तो करते ही हैं, और बड़ी बात ये है कि जो भी हानि होती है, जो भी नुकसान होता है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेदार होते हैं।
0: हाँ जी
1: जी, तो कोशिश ये करिए कि हम उन लोगों तक भी पहुंचे जो इस तरह के कृत्य करते हैं और उन्हें सजा दिलवाएं, है ना
0: सर। यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी आपकी बात पे रोकना चाहूंगा सर, एक्चुअली होता क्या कि इस बार हमने आग लगाने से रोक दी, देखिए कंट्रोल एनवायरनमेंट में वो आग लगाना है और वो ये पत्तियां जलानी है, ये सारा तो प्रोसेस चलता रहता है, कुछ लोग करते हैं, डिपार्टमेंट भी अपने एंड से कुछ कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो कंट्रोल एनवायरनमेंट करनी होती है, पर पंगा क्या है सर, जैसे हमने 2-3 साल ये प्रोसेस किया, आग लगने नहीं दी सर, तो चीड़ की पत्तियां इतनी ज्यादा डेंस वो वहां पे इकट्ठी हो गई, फिर जब एक बार आग लगी ना सर तो वो बुझने वाली आग।
1: जी देखिए ये चीड़ की जो पत्तियां हैं आजकल इनका तो बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, बहुत से उत्पाद इनसे बनाए जा रहे हैं, आपको शायद मालूम ही होगा जगह जगह पर आजकल काउंटर्स लगे होते हैं और स्पेशली वहां पर हाईलाइट होता है, लिखा होता है कि चीड़ की पत्तियों से निर्मित ये उत्पाद हैं, और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं विदेशों तक भी जा रहे हैं।
0: जा रहा है।

0: विक्रम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग। जी दोस्तों, आप भी हमें फोन कर सकते हैं 01892224391। यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरिविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ सर जी।
0: जी तोमर साहब बोलिए।
1: सर जी, आज पर्यावरण दिवस पर कुछ पंक्तियाँ बोलूंगा, फिर अपनी भूमिका पर्यावरण संरक्षण में क्या मैं बताऊंगा।
0: क्या बात है, जल्दी से बोलिए।
1: आओ मिलकर पर्यावरण दिवस मनाए, वन उपवन के फूलों से ये धरा सजाए, हरी भरी वसुधा वो बागों से चहुंओर फैले हरियाली, स्वच्छ सलिलो सरिताओं में जीवन में आए खुशहाली, जैविक विधि से अन्न आकर प्रदूषित होने से धरा बचाए, हरे भरे वृक्षों को ना काटे, ये पृथ्वी का श्रृंगार है, सब कुछ देते पेड़ हमें मानवता के पालनहार है, पत्थर मारने पर भी फल देते इनका ऋणी ये संसार है, पर्यावरण का संरक्षण करें, अतिदोहन से इन्हें बचाएं, स्वच्छ हमारा घर आंगन हो, स्वच्छ अपना देश प्रदेश, गांव गली सब स्वच्छ रखें हम, स्वच्छ अपना सारा परिवेश, मेण बंधन करें हम मिलकर, ये जान खेतों की फसलों जलेन खेतों की फसलों के अवशेष, माया नगरी की चकाचौंध में मंत्र मुग्ध हो ना जाएं, आओ मिलकर पर्यावरण दिवस मनाएं। सर जी, अपनी भूमिका के बारे में बताऊंगा मैं।
0: जी तोमर साहब, आपने बहुत अच्छी पंक्तियां सुनाई हैं, क्या आपने एक स्वयं लिखी हैं?
1: जी सर जी, मैं स्वयं लिखता हूँ, समसामयिक लिखता हूँ, गिरंदर सिंह ठाकुर मुझे अच्छी तरह परिचित हैं।
0: जी सिर्फ वही नहीं, हमारे सभी श्रोता भी आपसे परिचित हैं अच्छे से।
1: जी सर जी, तो अब मैं अपनी भूमिका बताऊं सर जी।
0: जी बताइए।
1: मेरी दिनचर्या प्रातः सुबह 5 बजे खड़ा होता हूँ, 2 घंटे गांव गली में झाड़ू लगाता हूँ, मंदिरों में स्कूलों में 12 वर्ष हो गए मुझे शिकर्त करते, प्रति वर्ष एक पेड़ लगाता हूँ, उसकी परवरिश करता हूँ, खेतों में फसलों के अवशेष को जलाता हूँ, उसे रोकता हूँ, नस्तम में जलाता हूँ, जलने देता हूँ, वो हमेशा कम्पोस्ट खाद का प्रयोग करता हूँ या हरी खाद का, रासायनिक खादों का कम प्रयोग करता हूँ, और वृक्ष तो बिल्कुल अपने वर्ष भर काटता ही नहीं, अन्य किसी को भी समझाता हूँ, मान जाते लोग, इतनी अपनी भूमिका है पर्यावरण संरक्षण।
0: क्या बात है, देखिए स्वच्छता से आप जुड़े हैं, स्वच्छता अभियान से, और साथ ही साथ वृक्ष भी आप लगाते हैं, कितने वृक्ष अब तक लगा चुके हैं?
1: 8-10 वृक्ष लगा चुके सर, एक वृक्ष प्रतिवर्ष लगाते, उसकी 2 सहजन के, 2 बरगद के है, और 1 नीम का वृक्ष है, 2 कनेर के है, सर लगा चुके हैं।
0: जी और देखिए, इतनी अच्छी पंक्तियां सुनाकर आपने प्रेरित भी किया है हमारे सभी श्रोताओं को कि वो भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें।
1: जी सर
0: जी, तोमर साहब और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस सर यही कहना चाहेंगे, हर आदमी का कर्तव्य बनता फर्ज बनता कि वृक्षों को काटे ना अंधाधुंध, और एक वृक्ष कम से कम हर साल लगा, उसकी परवरिश करें, इसी तरह हम पर्यावरण को सुधार सकते हैं सर जी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। जुड़ी रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।

0: जी हाँ दोस्तों, आपका और हमारा साथ जन्म जन्म का है और यूं ही ये साथ चलता रहे, यही दुआ है। हेलो
1: तो नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए।
1: मैं प्रमोद माजू बोल रहा हूँ पठानकोट से सर।
0: जी प्रमोद जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एनवायरमेंटल डे की आपकी बहुत बहुत बधाई हो सबको।
0: जी आपको भी शुभकामनाएं। और देखिए, ये दिन तो तभी सफल हो सकता है जब आप पर्यावरण के लिए कुछ करें।
1: मैं एक शॉप चलाता हूँ, अपना AMPM स्टोर है पठानकोट में, उसके आगे मेरे 7 फुट by 70 फुट का एक गवर्नमेंट का जो पार्टीशन होती है ना, उसमें मैंने मेंटेन किया गार्डन अपना। उसमें 8 पेड़ नीम के लगाया है, आम लगाया है, पपीता लगाया है और कीम लगाया, और उसको मैं अभी पानी दे के निकला हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: फ्लावरिंग है, लोग आके अप्रिशिएट करते हैं, मैं काफी अच्छा किया मैंने।
0: तो लोग आपसे सीखते भी हैं और इस तरह के काम करते हैं फिर पेड़ पौधे लगाने के।
1: हाँ जी हाँ जी, और आम लगाया, अमरूद लगाया, चींब लगाया, पपीते लगाए हैं, नीम के 4 पेड़ लगाए, उनको चलाया मैंने।
0: अच्छा प्रमोद जी, ये बताइए, जब आप कभी फ्री होते हैं, कभी खाली होते हैं, तो क्या इन पेड़ पौधों के साथ अपना वक्त बिताते हैं?
1: बिल्कुल, शाम सवेरे दोनों साइड में, दोनों टाइम मैं अपना कंटिन्यू रखता हूँ, घंटा घंटा देता हूँ मॉर्निंग में और शाम को।
0: जी, लेकिन इसके अलावा आपको वक्त नहीं मिल पाता?
1: ना, शाम को रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, बाकी शाम सवेरे सैर सूर कर लेते हैं, वैसे ऐसे ही है। और इवन तक मैं डलॉजी भी मेंटेन किया थोड़ा सा अपना।
0: जी,
1: डलॉजी से भी अपना थोड़ा किचन गार्डन।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, पेड़ पौधे लगाना बहुत पुण्य का काम होता है और पेड़ पौधे आपको मालूम ही है कि हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी और भी बहुत सी जरूरतों को पूरा करते हैं।
1: लगाते उसको मेंटेन करना सबसे बड़ा वो काम है। लगा तो सब देते हैं, उसको मेंटेन करो सब अच्छा, वो
0: है। जी बिल्कुल, और ये काम आप बखूबी करते हैं।
1: शुक्र है उस परमात्मा का लगा हुआ साइड।
0: चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे प्रमोद जी?
1: बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है
0: जी। शुक्रिया फोन करने के लिए, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।

तो दोस्तों ये था आज का जनवाणी कार्यक्रम। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह। अब अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां।

गीतों का कारवां कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और श्रोताओं, आज मैं हूं आपके साथ रीना। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म हम हैं राही प्यार के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। ये खूबसूरत सा संगीत है नदीम श्रवण का, गीतकार है सब।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना सुनिए। श्रोताओं के सुझावों और शिकायतों से संबंधित कार्यक्रम आप और हम इस बार रिकॉर्डिंग पर आधारित रहेगा। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग के लिए आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। यदि आप हमारे प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में कोई सुझाव देना चाहते हैं या अपनी शिकायत एवं प्रतिक्रिया साझा करना चाहते हैं तो आज यानी 5 जून 2026 शुक्रवार को दोपहर 1:15 से 1:45 बजे

के बीच हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए आपको मिलाना होगा नंबर 01892224391। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रमों को और अधिक रोचक, उपयोगी तथा श्रोताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में सहायता करते हैं। तो याद रखिए, आज दोपहर 1:15 से 1:45 तक कार्यक्रम आप और हम की रिकॉर्डिंग के लिए हमें अवश्य कॉल करें 01892224391 पर। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। गीतों का कारवां कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म सुहाग से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
0: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत अब आपको सुनवा रहे हैं अमित कुमार और सपना मुखर्जी की आवाजों में। फिल्म का नाम है त्रिदेव।

श्रोताओं, ये थी हमारे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल

रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का पहला हिमाचली गीत आपको सुनवा रहे हैं शक्तिचंद डोगरा व साथियों की आवाज में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति करनैल राणा की आवाज में।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: श्रोताओं, अब एक सूचना सुनिए। इस रविवार दिनांक 7 जून 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा बच्चों में कुपोषण, कारण, लक्षण और बचाव से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न। स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर प्रदीप अत्री, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टांडा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला के FM 103.4 MHz पर सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। रविवार दिनांक 7 जून 2026, समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारा फोन नंबर है 01892224391। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 01892224391। फोन करना ना भूलें। रविवार दिनांक 7 जून 2026, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। पहाड़ों के सुर की अगली प्रस्तुति कुशल कुमार की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर प्रातः के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर राजधानी शिमला में एंटी चिट्टा व स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस मैराथन को

0: झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विजेताओं व प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हिमाचल पुलिस व जनगणना कार्य निदेशालय हिमाचल प्रदेश के सहयोग से एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसको सुबह 6:30 बजे राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में युवा विद्यार्थी शिक्षण संस्थान सरकार विभाग स्वयंसेवी संगठन महिला मंडल खेल संगठन और आम नागरिकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। अभियान युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली फिटनेस अनुशासन पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त जीवन के लिए प्रेरित करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: इस बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने मैराथन के दौरान उपस्थित युवाओं व लोगों को पर्यावरण संरक्षण व नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है और इस धरती माँ के संरक्षण के लिए सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने होंगे। उन्होंने नशे के खिलाफ हिमाचल पुलिस के प्रयासों व युवाओं की भागीदारी की भी सराहना की।
2: विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। आज हमें ये समझना चाहिए पृथ्वी को हमने माँ माना और अगर माँ है तो हम हैं। उसके अस्तित्व के कारण से ही हम सभी यहाँ पर हैं। हमारे सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब किस प्रकार से अपनी मातृभूमि और माँ की रक्षा करें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं की रक्षा करें। दूसरा, बढ़ते हुए जो नशे बचाने के लिए बच्चों ने और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं इसके लिए सभी ऑफिसर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयास के कारण से ऐसा संभव हो सका।
0: इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
3: विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें।
0: पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भाजपा प्रदेश भर में एक माह का पौधरोपण अभियान चलाएगी। इस अभियान में जनभागीदारी से हजारों पौधे रोपे जाएंगे। प्रदेश भाजपा के अनुसार इस दौरान विभिन्न जिलों मंडलों व बूथ स्तर तक पौधरोपण कार्यक्रम के जरिए आम जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा नेतृत्व सहित जनप्रतिनिधि व पदाधिकारी आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान पौधरोपण करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीपीएस नीरज भारती ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। नीरज भारती ने लिखा है कि ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वे हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पिछले 3.5 वर्षों के कार्यकाल में पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता पर असंतोष व्यक्त किया। गौरतलब है कि नीरज भारती के पिता चंद्र कुमार प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत स्थानीय विधायक को संबंधित नगर परिषद या नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के इन आदेशों के बाद विधायक संबंधित नगर परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। न्यायालय ने राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि प्रदेश के नगर निकायों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा करे। यह चुनाव केवल निर्वाचित पार्षदों की इच्छा और बहुमत के आधार पर ही होगा। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। इसी के साथ ये प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 11:05 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम जय हिंद गीत माला। देशभक्ति गीतों पर हमारा ये आधारित कार्यक्रम है और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।
5: तेरी धूल से बढ़के।
4: गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत दिया है अर्को ने।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना सुनिए। श्रोताओं के सुझावों और शिकायतों से संबंधित कार्यक्रम आप और हम इस बार रिकॉर्डिंग पर आधारित रहेगा। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग के लिए आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। यदि आप हमारे प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में कोई सुझाव देना चाहते हैं या

अपनी शिकायत एवं प्रतिक्रिया साझा करना चाहते हैं तो आज यानी 5 जून 2026 शुक्रवार को दोपहर 1:15 से 1:45 तक हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए आपको मिलाना होगा नंबर 01892224391। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रमों को और अधिक रोचक, उपयोगी तथा श्रोताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में सहायता करते हैं। तो याद रखिए, आज दोपहर 1:15 से 1:45 तक कार्यक्रम आप और हम की रिकॉर्डिंग के लिए हमें अवश्य कॉल करें 01892224391 पर। हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: देशभक्ति गीतों पर आधारित हमारे कार्यक्रम जय हिंद गीतमाला आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म LOC कारगिल से ये देशभक्ति गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, गीत गाया है सोनू निगम ने।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म सरफरोश से ये देशभक्ति गीत, जतिन ललित के संगीत निर्देशन में। गीत के लिए आवाजें दी हैं सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ ने। इसके बोल इसरार अंसारी ने लिखे हैं।

तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
3: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कॉमिक गाँव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गाँव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
3: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख

0: तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी,
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: खास
3: ऐलान।
4: शांत शांत,
5: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
6: हाँ हाँ महाराज बताइए,
5: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
6: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
5: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
7: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
5: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
1: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
5: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।

0: आप बहुत कृपा।
1: महाराज की जय हो।
2: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
3: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
4: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
3: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
4: महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
3: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
4: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे।
3: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
4: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
5: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
6: हुआ? मुझे भी नकली मिला।
5: क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली?
6: नकली कैसे हो गया?
5: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
7: महाराज की जय। महाराज की जय। महाराज की जय।
3: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
4: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ ले। महाराज
3: कहिए। मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
4: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज।
3: क्या? और कोई शंका?
4: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
3: ठहरिए, मैं समझाता हूं। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
7: महाराज की
8: जय।
7: महाराज की
8: जय।
7: महाराज की
8: जय।
3: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
9: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
8: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां

माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: सैनिक साथियों जय हिंद। आज मैं हूं आप सबके साथ रीना और कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म दिल चले के इस देशभक्ति गीत के साथ।
1: शाम तुझे पता है
0: गीत के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं और इसे गाया है कुमार सानू और आदित्य नारायण ने। संगीत अनु मलिक का है।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म खुदा गवाह से। गायक कलाकार है मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णा मूर्ति।

श्रोताओं कार्यक्रम संबंधी एक आवश्यक सूचना सुनिए। श्रोताओं के सुझावों और शिकायतों से संबंधित कार्यक्रम आप और हम इस बार रिकॉर्डिंग पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग के लिए आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। यदि आप हमारे प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में कोई सुझाव देना चाहते हैं या अपनी शिकायत एवं प्रतिक्रिया साझा करना चाहते हैं तो आज यानी 5 जून 2026 शुक्रवार को दोपहर 1:15 से 1:45 तक हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए आपको मिलाना होगा हमारे स्टूडियो का नंबर 01892224391। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रमों को और अधिक रोचक, उपयोगी तथा श्रोताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में सहायता करते हैं। तो याद रखिए, आज दोपहर 1:15 से 1:45 तक कार्यक्रम आप और हम की रिकॉर्डिंग के लिए हमें अवश्य कॉल करें 01892224391 पर। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय

0: मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमलका से ये गीत, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं और गीत के लिए संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत एक बार फिर से आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म हीरो से। गायक कलाकार हैं मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न होता है। रीना को दीजिए अनुमति। सैनिक साथियों, जय हिंद।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

0: हर आंगन को अपनी खुशियों से महकाए रखना, ये सुंदर जीवन मिला है तो अपनी पहचान बनाए रखना। यूं तो बहुत सी मुश्किलें आएंगी रास्ते में हमारे, लेकिन ज़रूरी है हर मुश्किलों से निकलकर अपनी उड़ान बनाए रखना। तो अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूं अपनी सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम उड़ान में। मेरी ये पंक्तियां समर्पित हैं उन सभी महिलाओं के लिए और एक ऐसी महिला के लिए जो आज हमारे आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिन्होंने इस समाज में अपनी एक सुंदर पहचान बनाई है। आप सुन रहे हैं उड़ान, वह मंच जहां हम मिलते हैं उन महिलाओं से जिन्होंने अपने कर्म, संघर्ष और उपलब्धियों से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आज की हमारी विशेष अतिथि हैं शिवानी नेगी गुरंग जी, जिन्होंने युवाओं के सशक्तिकरण, उनकी प्रतिभाओं को दिशा देने और हिमाचल की समृद्ध संस्कृति एवं लोक परंपराओं के संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि उद्देश्य स्पष्ट हों और इरादे मजबूत हों तो व्यक्ति अपने साथ साथ पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है। आइए जानते हैं उनकी प्रेरणादायी यात्रा, उनके संघर्ष, उनकी सफलताओं और उस जुनून के बारे में जिसने उन्हें युवाओं और संस्कृति के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। स्वागत करते हैं हमारी विशिष्ट अतिथि शिवानी नेगी गुरंग जी का। तो सबसे पहले तो शिवानी जी, आपका आकाशवाणी धर्मशाला में हार्दिक स्वागत है और आज जैसा कि विश्व पर्यावरण दिवस है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी सभी श्रोता सखियों को और शिवानी जी आपको भी। तो सबसे पहले तो शिवानी जी, ये हम जानना चाहेंगे कि आप पहले तो अपनी प्रेरणादायी यात्रा की जो कहानी है वो हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए।
1: धन्यवाद मीनाक्षी जी और आकाशवाणी धर्मशाला का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं जितेंद्र पाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो कि प्रोग्राम हेड है यहाँ पर। और रही प्रेरणा, तो मैं सबसे पहले बात बोलूँ कि मैं कोई ऐसी प्रेरणा स्रोत नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक कर्मठ महिला हूँ जिसको मैं बोल सकती हूँ कि मुझे काम करना अच्छा लगता है। और एक बात आपने बोली संघर्ष, तो शायद मैंने अपनी लाइफ में संघर्ष नहीं देखा है क्योंकि मैं संघर्ष वर्ड अपने लाइफ में लाना ही नहीं चाहती हूँ। वट एवर आई डू मैं अपने लिए करती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। और आप उस काम को करने के लिए जो मेहनत करते हो वो संघर्ष नहीं होता, वो शायद आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है कि यू आर डूइंग समथिंग वेल।
0: जी, तो आपके जीवन का वे कौन सा क्षण था जिसने आपको समाज और युवाओं के लिए एक विशेष प्रेरणा दी?
1: मैं सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत खुले परिवेश में पली पढ़ी हूँ और हमारे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ओपन माइंडेड थे। मैं अपने स्कूल टाइम से टॉपर रही हूँ, मैं 10th तक टॉपर रही हूँ, स्कॉलरशिप होल्डर रही हूँ और एक्स्ट्रा को करिकुलम में हम लोग बहुत एक्टिव रहे हैं। तो पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोले कि सिर्फ तुम पढ़ाई करो, हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें प्रेशराइज़ किया ही नहीं है। हम लोग अपने आप ही पढ़ने में रुचि रखते थे, अपने आप ही एक्स्ट्रा को करिकुलम में। तो मैं DAV जो अभी आपका धर्मशाला में है, तो पहले आर्य समाज स्कूल के नाम से जाना जाता था, तो मेरी 5वीं तक की जो शिक्षा है वहीं पर हुई है। तो हम लोगों को ना शुरू से ही वैसे संस्कार मिले हैं, स्कूल से ही। हम संडे को जो थे वो उसमें जाते थे, अपने हवन में जाते थे, तो हमें पूरे मंत्रास आते थे, पूरे नियम आते थे। तो हम लोग उन संस्कारों में जमे पले हैं। और एक्स्ट्रा कोकरिकुलम में हमारे सांस्कृतिक गतिविधियां, जैसे बाल सभा होती थी हमारे सैटरडे में, तो हम लोग वो चीज़ें करते थे। तो जहाँ से हमें जो वो बूस्टअप मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता चलता है, लीडरशिप क्वालिटीज आती चलती है आप में ऑटोमेटिकली, है ना
0: जी। शिवानी जी, तो अक्सर जो युवा हैं वो दिशा की तलाश में रहते हैं, आपके अनुसार आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
1: मैं आपके पहले क्वेश्चन का भी थोड़ा सा इसमें कनेक्ट करना चाहूँगी, जो आपने बोला कि मुझे दिशा कहाँ से मिली या कुछ। तो मैं इनिशियली जब ग्रेजुएशन की थी तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी सिलेक्ट हो गई थी जो दिल्ली में है, मंडी हाउस में। और वो इसीलिए कि हम लोग जो हमारे भाषा विभाग, संस्कृति विभाग है, उसके साथ शुरू से ही हम लोग +1 में थी मैं, तो तब से प्रोग्राम्स करते हैं। फिर नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है हमारी एक एजेंसी, कल्चरल एजेंसी है जो कि नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स करवाती है, हम उनसे भी जुड़े हुए थे। तो वो तो हम सब शोके करते थे। उसके बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में गई, बट आई लॉस्ट माई हस्बैंड वेरी अर्ली। तो एट दैट टाइम मेरी फैमिली में, जैसे आपने भी अपने बारे में मुझे थोड़ा पहले बताया था कि आप भी किसी ऐसे दौर से गुजरी हैं जहां आपको तनाव रहा है ज़िंदगी में, तो मैं उस टाइम में डायलमा में रही, तो मुझे कुछ लग नहीं रहा था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगी आगे। तो मेरी सिस्टर ने एक ही चीज़ बोली कि अब अपना जो जीवन है वो किसी और के लिए सोच, कि आपको कुछ करना है लाइफ में। तो आई कनेक्ट विद मैनी NGOs और मैंने बहुत कुछ सीखा करते गए समाज के लिए, जो भी हम लोग कर पाए। लेकिन 2016 में मैंने कम बैक किया, जो हम पहले कर रहे थे वो प्रोफेशनली इतने स्ट्रांगली नहीं कर रहे थे कल्चरल एक्टिविटीज़, लेकिन 2016 में मैंने जब कम बैक किया तो वो यूथ में कुछ लोग जो बहुत भटके हुए थे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जहाँ पे कई बच्चियाँ नहीं आना चाहती हैं इस फील्ड में, संस्कृति को हम बोलते तो संरक्षण देना या कुछ करना, लेकिन उसके साथ हमें जो जूझना पड़ता है, हमें बहुत सारी अप एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारे उसमें चैलेंजेस होते हैं। तो उनको बढ़ावा देने के लिए एक दो बच्चे हैं जिनको मेरे को लगा कि नहीं, इनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, तो मैंने कमबैक पर्सनली उस लेवल पे किया।
0: तो अच्छा, आपने युवाओं के साथ लंबे समय तक काम किया है, युवाओं में आपको सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या दिखाई देती है?
1: देखो, युवा जो है कच्चे घड़े की तरह है ना, हम जैसे ढालेंगे वैसे ढलेगा। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे को जो है वो इतने सारे युवाओं से प्यार मिलता है, वो इतने शेयरिंग है मेरे साथ, शायद अपनी फैमिली के साथ भी इतने शेयरिंग नहीं, उनके लाइफ के स्ट्रगल्स, उनके पेरेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स है घर में, क्या उनकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है कभी परेशानियों में, तो वो बहुत ओपन अप है मेरे साथ। हम लोग, मेरी एक पेरेंटल घर में, हम बोलते हैं बोर्ड, एक पुराना जो है हॉल है, हम लोग आज भी, हम लोग कुछ बच्चे जो हैं वो मेरे इकट्ठे होंगे, तो मैंने उनको कलाकार कम और अपना बच्चा ज़्यादा माना है उन सबको। तो वो जो है, जैसे हम उनको ढालेंगे, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में ऐसी सब जो है कूल परिस्थितियां और वो बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत बहुत सारे परेशानियां हैं, लेकिन वो सब मिलके जो हैं वो एकजुट होके हंसी खेल मजाक में और अपने कल्चर को बढ़ावा देते हैं, अपने टैलेंट को निखार रहे हैं। तो एक छत के नीचे जब वो इकट्ठे होते हैं ना, तो वो लोग खुद चैनलाइज्ड हो जाते हैं। तो युवाओं में बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी एनर्जी है, उनको चैनलाइज करना हम जैसे लोगों की ड्यूटी है। अपनी आजीविका कमाते हुए अगर हम समाज में 1-2% भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते हैं यूथ के लिए, ये किसी भी दुखी मन के लिए है, किसी को जैसा भी सहारा चाहिए, किसी को मनोबल की जरूरत है, किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, किसी को फिजिकली हमारी प्रेजेंस से अगर वो लगता है मॉरल सपोर्ट आती है कि कोई बुजुर्ग गया उनके घर में कोई नहीं, आप चार बात अच्छे से कर लो, तो मेरी अपनी जैसी प्रवृत्ति है वैसे ही वो मेरे साथ जो यूथ जुड़ता है वो भी उसी प्रवृत्ति का बनता चलता है। और मैं तो मानती हूँ कि मैंने अभी तक मेरे ग्रुप में, मेरे साथ जितने भी युवा जुड़ता है, वो कभी भी नेगेटिव थॉट्स की साइड नहीं जाता है।
0: जी, तो आज वही है ना कि आज सोशल मीडिया के दौर में युवाओं का जो ध्यान है वो बहुत जल्दी भटक जाता है, ऐसे में शिवानी जी आप उनको ऊर्जा, मतलब उनकी ऊर्जा को कहीं सही दिशा कैसे देती हैं?
1: मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी, युवा ही नहीं है, इसमें बहुत सारी एल्डर्स भी हैं जो कि हाँ, वो हर वर्ग के लोग जो है, हर चीज का मेरिट्स डिमेरिट्स है, है ना जी? आपका टीवी देख लो, सोशल मीडिया देख लो, या कोई भी, कोई बोलता है सीरियल्स से ऐसा इफेक्ट पड़ता है, बट इट ऑल डिपेंड्स व्हाट आई सपोज कि आप अपने में क्या ग्रहण करना चाहते हो, वो आपकी अपनी पर्सनालिटी पे डेवलप करता है। बट यस, वी कैन नॉट डिनाई कि मेजर ऑफ द जो सोशल मीडिया का इफेक्ट है, दैट इज नेगेटिव। लोग अपने को फेमस करने के लिए, अभी मैं कुछ लोगों को देखती हूँ कि वो पहले तो कुछ भी उटपटांग हरकतें करके, वी आर नोबडी टू इंटरफेयर देम, लेकिन हम अपना एक व्यू रख रहे हैं कि वो कुछ भी हरकतें करके पहले फेमस हो जाते हैं, फिर बाद में वो लगते हैं कि नहीं हम अब अच्छा कंटेंट भी दे, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड वे। लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, मैं युवाओं को ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम खुद कलाकार हैं मैम, तो मैं अपने को एक वीक पॉइंट मानती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर इतनी एक्टिव नहीं हूँ, तो फेसबुक पे भी थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन ये बहुत एक बोलते सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल अगर हम इसको अच्छे से चैनलाइज करें तो, क्योंकि इसी उसी के थ्रू जो है आज की डेट में मैं खुद ऑडिशंस भी लेती हूँ मैम। कांगड़ा वैली कार्निवल की मैं कोऑर्डिनेटर होती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कल्चरल कोऑर्डिनेटर। ऑडिशंस लेते हैं हम, प्रोग्राम वो करवाते हैं, लेकिन हमारा क्राइटेरिया जैसे हम कई बार कोई नाम रिकमेंड करते हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक ही क्वेश्चन आता है कि मैम हम पे ना RTI आ जाते हैं, हमें ये पूछते हैं कि आपने किस बेस पर लिया है। तो वो ये नहीं देखेंगे कि सच में वो टैलेंटेड है, वो ये देखेंगे उसका कितने व्यूअर्स हैं YouTube पे। हालांकि ये कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों के लिए एक मतलब मैं बोलती हूँ कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं हो सकता, उतनी टेक्निक्स नहीं आ सकती हैं, लेकिन जो दिखा वही बिका वाली बात है। और कुछ लोग जो हैं बहुत फेमस हुए हैं, जैसे हम अगर बोले तो हमारे हिमाचली किंग जो हैं नाटी किंग कुलदीप शर्मा सर, उन्होंने हमें इंटरनेशनल लेवल की ख्याति प्राप्त करवाई है कलाकारों को, हिमाचल की संस्कृति को। उनको ब्रिटिश एम्बेसडर से अवार्ड मिले, तो वो लोग कहीं ना कहीं यूट्यूब पे छाए, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे छाए, तभी जाके इतनी बड़ी पहचान बनती है। मेहनत तो थी, लेकिन साथ साथ में सोशल मीडिया को मैं एक नेगेटिव पार्ट नहीं बोलती हूँ, मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अच्छे कंटेंट को दोगे डेफिनेटली लोग देखते हैं। ये एक मिथ है कि नहीं जी कुछ उटपटांग करेंगे या कुछ अनएथिकल सी चीजें अगर आप प्रस्तुत करते हैं और वो उसको लोग ज्यादा पसंद करते, वो टेम्परेरी बेस पे होता है।
0: तो एक बहुत बढ़िया जो हम कह सकते हैं शिवानी जी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
0: अगर हमें हुनर है और सोशल मीडिया पर हम उसको दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका,
1: मैं तो ये बोलूंगी कि जिनमें हुनर है, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, वो वाली बात है आजकल। तो आप सोशल मीडिया पर आइए और अपनी कला को प्रदर्शित कीजिए, डेफिनेटली लोग आपको फॉलो करते हैं।
0: जी, तो शिवानी जी और भी बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मनोरंजन अपनी सखियों का करवाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ। तो आइए हम भी सुनते हैं साथ में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
2: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
2: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
2: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
3: गीत और विज्ञापनों के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम कार्यक्रम उड़ान में, और आज हमारे धर्मशाला स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शिवानी नेगी गुरंग जी, जिन्होंने इस समाज में अपनी एक ख़ास पहचान बनाई है। तो बात करते हैं शिवानी जी, अब जानना चाहेंगे कि आपने अपने समाज में क्या उपलब्धियां हासिल की, आपकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम चाहेंगे।
4: मेरी उपलब्धि सिर्फ यही है कि मैं यूथ के साथ काम करती हूँ, यूथ से बहुत कुछ सीख रही हूँ और हम एक दूसरे को जो है मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं हूँ कांगड़ा लोक कला मंच धर्मशाला, जो हमारा सांस्कृतिक संस्था है, उसकी प्रेजिडेंट हूँ। ये इसकी शुरुआत जो है मेरे से बड़ी सिस्टर हैं, जो अभी डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं लास्ट ईयर, उन्होंने शुरुआत की थी। और हमारा मकसद यही है कि अपने फोक एंड आर्ट को प्रमोट करना। तो भूखे पेट क्रांति नहीं होती मीनाक्षी जी, तो हम लोगों का जो है वो बहुत अच्छा जो संरक्षण है वो होता है सरकारी, जो हमारे भाषा संस्कृति विभाग हैं उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों में हमें प्रस्तुतियां देने का मौका मिलता है। नॉर्दर्न कल्चर सेंटर की तरफ से हम लोग काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में प्रोग्राम्स करते हैं, और बाय गॉड्स ग्रेस की कांगड़ा लोक कला मंच धर्मशाला का जो झमाकड़ा है वो लंदन में अक्टूबर 1990 में लंदन और जर्मनी में भी इसकी जो है प्रस्तुतियां दे चुका है, जिसका पूरा पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगी हमारे गुरु डॉक्टर गौतम व्यथी सर, जिन्होंने झमाकड़ा की शुरुआत की और उन्होंने इसका मंचन जो है अपना उत्सव वगैरह में कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ करवाया, और हम कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आते रहते थे। तो भाषा एवं संस्कृति विभाग की तरफ से हिमाचल टूरिज्म वालों ने जो ये प्रोग्राम करवाया था, और उसमें हमारे तब मुख्यमंत्री होते थे श्री शांता कुमार जी, उनके प्रयासों से हम लोगों को जो है अपनी संस्कृति का वहाँ प्रदर्शन करने का मौका मिला। और कांगड़ा लोक कला मंच धर्मशाला सिर्फ संस्कृति के साथ ही नहीं काम कर रहा है, मेरा यूथ जो वो हॉस्पिटैलिटी में जाता है, जैसे अभी आईपीएल हुआ है तो मैं 3 साल से आईपीएल में भी काम कर रही हूँ, जिसमें हमारी इस बार 46 हॉस्टेस थी, उसमें भी गर्ल्स पावर की बात करूँ मैं तो वो काफ़ी लड़कियाँ वहाँ पर अच्छे प्लेटफॉर्म पर गई है और उनको एक अच्छा ऑनरेरियम मिलता है, अपनी अच्छी पॉकेट मनी अर्न कर सकती हैं उससे। और रही बात मेरी और लड़कियां जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे अपने क्षेत्रों में काम कर रही हैं, और हम अभी भी जो है मैम हम बहुत ब्लेस्ड हैं, मैं बोलती प्रभु की बहुत कृपा है कि कांगड़ा लोक कला मंच धर्मशाला की जो टीम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना जो है नाम दर्ज करवा के आई है। लास्ट टू लास्ट ईयर जो था वो कर्तव्य पथ पे जो है संगीत नाटक अकेडमी इसकी नोडल एजेंसी थी, और सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का तरफ से जो था ये एक प्रोग्राम किया जाता है, पूरा महीना हम वहीं होते हैं, और हमारा 25 और 26 जनवरी को जो था इसका मंचन होता है। तो जो 25 जनवरी को हुआ था हमारा वो यशाय 24 जनवरी को वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक जो है प्रस्तुति हुई थी, जिसमें 5,000+ जो थे वो सारे आर्टिस्ट थे ट्राइबल और फोक के, तो जिसमें से हमारी भी भागीदारी रही है, और हिमाचल के 95 आर्टिस्ट थे जिनको मैंने हेड किया था।
3: बढ़िया। देखिए इतनी महान उपलब्धि, तो जाहिर सी बात है जब आपने ऐसी उपलब्धियां हासिल की तो इनका बहुत चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ा।
4: बिल्कुल मीनाक्षी जी, बहुत सारे हर्डल्स है। पहले तो मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, हम जितना मर्जी महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर लो, सॉरी टू से दीज आर इन होर्डिंग्स, दीज आर इन प्रोजेक्ट्स, दीज आर ऑन पेपर्स। मैं ओपनली बोलना चाहूंगी कि ये चीजें पता नहीं कहाँ पर होती हैं। मैं ग्राउंड में काम करती हूँ, मुझे बड़े सारे लोग बोलते हैं ऐसे एनजीओज में करो वो करो वो करो, लेकिन ग्राउंड पे जिन बच्चों के साथ मैं जुड़ी हूँ उनके लिए हमें खुद चुनौतियों भरा जो है वो सफ़र करना पड़ता है। मैं सरकार से विनती करना चाहूंगी, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से विनती करना चाहूंगी, जितना भी कलाकारों के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो डायरेक्ट फायदा उन बच्चों तक पहुँचना चाहिए विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ सम इन्फ्लुएंशियल पीपल, कि मैं बोलूँ मेरी सिफारिश है जी मैं कर लूँ मैं ये कर लूँ। मेरा ये रहा है कि एक चीज़ को तो देखो, हार्डवर्क का कोई अल्टरनेट नहीं है। मैं खुद ये बिलीव करती हूँ, मैं अपने बच्चों में भी यही इनकल्टिकेट करती हूँ कि मेहनत, डिसिप्लिन और मैनर्स, संस्कार, अगर ये तीनों चीज़ों के साथ आप चलते हो तो लेटर और सूनर आपको उपलब्धि मिलती मिलती है। और चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन चलो अभी जितना हम उड़ान भर सकते थे उतना भर तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश जारी और करते रहेंगे कोशिश अपनी जो है।
3: तो क्या शिवानी जी कभी ऐसा समय आया जब लगा कि राह कठिन है और उस समय आपने स्वयं को संभाला हो?
4: मैम एक्चुअली मैं अपने लिए तो आई नहीं हूँ, बिकॉज आई वॉज अर्निंग वेरी वेल। मैंने अपनी जॉब की है, जॉब के बाद मैंने जब जॉब छोड़ी है अपने फैमिली सर्कमस्टांसिस की वजह से, तो मैंने अपना एक बुटीक स्टार्ट किया था एंड दैट वॉज रनिंग वेरी सक्सेसफुली। और जब मैंने 16 में कम बैक किया है तो वो भी मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली करती रही, क्योंकि मेरे पास अगर पैसा ना होता तो मैं इतनी सारी टीम का सर्वाइवल कैसे करती हूँ, नहीं कर पाती। अर्निंग्स तो अब धीरे धीरे आना शुरू होती है, तो आपको अपनी टीम बनानी है, टीम का सर्वाइवल के लिए उनको प्रैक्टिस पे बुलाती हूँ, घर में रखना होता है, खाना खिलाना होता है, उनका किराया देना होता है, ये बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। तो मेरे को कभी नहीं आया कि मैं ये राह छोड़ दूं। मेरे को फ्रस्ट्रेशन जरूर होती है कि जब हम इतना अच्छा कर रहे हैं और हमें तब भी बिना सिफारिश के कहीं पे भी बड़ी स्टेज नहीं मिल पाती, कहीं कहीं मिलती है। मैं हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स है जहां पर हमारी लियाकत को जो है, हमारे टैलेंट को जो है वो परखा जाता है और अच्छे से हमें बुलाया जाता है, लेकिन और जगह बहुत ज्यादा स्ट्रगल है जिसके लिए, लेकिन आई विल कंटिन्यू माय स्ट्रगल, आई विल कंटिन्यू माई जर्नी। मैं कभी भी हताश नहीं होती हूँ। और एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी, मैं सिर्फ संस्कृति के साथ ही नहीं है, मतलब मैं आर्टिजन्स के साथ भी काम करती हूँ, मैं फीचर कास्ट डिज़ाइनर्स भी हूँ यहाँ के, जो बॉलीवुड के सीरियल्स, जी जी। मैं अब कल परसों भी मुझे जितेंद्र जी पूछे थे मैम आप क्या करते हैं, मैं ना मैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नथिंग, मेरे को स्टेगनेंसी पॉइंट कहीं पर भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जिस भी फील्ड में हम बच्चों को प्लेटफॉर्म दिलवा सकें हमें उसके लिए कार्यरत होना चाहिए। और बॉलीवुड के जो सीरियल्स और मूवीज़ हैं मैम, उसके जो धर्मशाला सराउंडिंग्स में होती है, डलहौजी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के भी हों, तो वो तकरीबन मैं, मेरे लाइन प्रोड्यूसर हैं पंकज जी, पंकज नाहल जी, तो हमने बहुत सारी मूवीज़ में और सीरियल्स में यहाँ के यूथ को भी और एडल्ट को भी काम दिया है। और रिसेंटली अभी भी हम एक मूवी कम्प्लीट करके हटे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरे ब्लैक एंड वाइट के हमारे उदयवीर पठानिया भैया है, वो मेरा कॉलेज जूनियर भी, मेरा इंटरव्यू भी लिया था, वो बार बार यही रोना रोते हैं कि सच्चाई है कि यूथ कहाँ जाए, यूथ के लिए जॉब्स नहीं है। तो मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि अपने टैलेंट को निखारो, आप पढ़ाई में हो तो पढ़ाई में भी अगर आप मेहनत करते हो तो एक मजदूर का बच्चा भी IAS बन रहा है, तो डोंट गो फॉर नेगेटिव थिंग्स। ठीक है वो चैलेंजेस हर किसी के लिए, लेकिन जो एक

0: गर्ल्स हैं, मेरी कंपनी उन लोगों के साथ है,
1: जी
0: बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मेरे लिए आइडियल हैं। मैंने अभी दो चार नाम आपको ऑफ लाइन भी बताए हैं, वो उनके मैंने आपको नाम मेंशन भी किए हैं। मैं चाहूँगी कि उनके भी आगे आप इंटरव्यू करें और वो अपने बारे में बताएं। और हाँ, मुझे कई बार आता है, गौरव सम्मान के लिए भी आता है कि महिला दिवस के ऊपर कि आपको मैम हम नॉमिनेट कर रहे हैं, आप अपना बायोडाटा भेजो या कुछ। मैंने एक बार अवार्ड लिया है जो मैंने आई रिस्पेक्ट दोज डिग्निटरीज जो मुझे इस काबिल मानते हैं, लेकिन अब मैं मेरे को ऐसे लगता है कि वो अवार्ड्स हमें नहीं होने चाहिए। वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड है ना, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कई अनसंग हीरोइंस हैं हमारी जो पर्दे के पीछे छुपी हैं, हम उनको आगे लाना चाहते हैं। बहुत सारी मैं प्रधान महिलाओं को जानती हूँ जो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत सारी मैं वुमेन हैं जो टेलरिंग का काम करके अपने घर को बहुत अच्छे सुचारू रूप से चला रही हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज जो घर में ट्यूशंस पढ़ा के कर रही हैं, आर्टिजन्स हैं। मेरी एक मंडी से फ्रेंड है ईशा जी, वो मैम क्या नहीं करती, स्टिचिंग वो करती हैं, संगीत सदन वो चलाती हैं, मतलब बच्चों के साथ भी काम कर रही हैं और महिलाओं के साथ भी काम कर रही हैं।
1: तो बहुत बढ़िया शिवानी जी, कार्यक्रम उड़ान के जरिए आपने सच में नई उड़ान दी है हम सभी महिलाओं के सपनों को। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और जाहिर सी बात है कि आज हमारी सभी श्रोता सखियों को भी अच्छा लगा होगा आपको सुनकर। बहुत ही प्रेरणादायक सफर आपका रहा है, आपने ये सीख दी है कि चाहे जितनी भी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़े, कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हमारा इरादा पक्का और लक्ष्य सामने हो तो हमें रुकना नहीं है बल्कि सफलता हासिल करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी गुरंग जी का जो आज हमसे रूबरू हुई। तो चलिए कार्यक्रम के आखिर में साथ में मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

इसी गीत की पंक्तियों के साथ समय हो गया आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया विकास पठानिया ने और प्रस्तुतकर्ता रहे जितेंद्र पाल सिंह। तो मुझे यानी मीनाक्षी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उड़ान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब आप पहले सुनेंगे हिंदी में समाचार और 1 बजे
1: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण

0: खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में BSF के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसल कर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़क कर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today to dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary health care across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at the Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. The Reserve Bank of India has kept interest rates unchanged for the second time in a row in the current financial year. Announcing the second bi-monthly monetary policy for the current fiscal, RBI Governor Sanjay Malhotra today said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain short-term lending rate or repo rate at 5.25% with a neutral stance. RBI has lowered GDP growth projection to 6.6% from 6.9% earlier for the current fiscal. RBI also increased CPI inflation target to 5.1% from 4.6% for the current financial year.
3: Let me at the very outset emphasize that the Indian economy entered this episode of global turbulence with much better fundamentals than in previous similar episodes.
2: Industry body ASSOCHAM has said the RBI's decision to keep the repo rate unchanged at 5.25% will strengthen growth and business sentiments. Secretary General ASSOCHAM Saurabh Sanyal said the decision reflects a balanced approach towards supporting economic growth while ensuring inflation remains within the target range. The centre has granted tax exemption to foreign institutional investors on capital gains and interest income arising from investments in government securities. The government has promulgated the Income Tax Amendment Ordinance 2026 in this regard. The Union Finance Ministry said this step will align the taxation on government securities with many comparable jurisdictions. The exemption will be applicable from the 1st of April this year. BJP President Nitin Naveen has accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu Party State Chief K. Annamalai from the primary membership of the party. Annamalai had submitted his resignation to the BJP President recently. World Environment Day is being celebrated across the globe today. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi has said, initiatives like Ek Ped Maa Ke Naam have made significant contributions towards adding nearly 1.1 lakh hectares of forest every year. In a series of posts on social media, Mr. Modi remarked that this day serves to reaffirm the commitment to protecting the environment and furthering sustainable growth. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal stressed the need for greater awareness on environmental protection and expanding green cover across the country. The minister offered prayers at the Sri Venkateshwara Swami temple in Tirumala and later planted a sapling under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign on the occasion of World Environment Day.
4: Prime Minister Narendra Modi has encouraged us to plant one tree in the name of our mother, Ek Ped Maa Ke Naam. It is truly a divine blessing for me that I could plant a tree in my mother's name in the Tirumala Balaji Hill.
2: Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav, along with Delhi Chief Minister Rekha Gupta, today inaugurated 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi on the occasion of World Environment Day. Prime Minister Narendra Modi has expressed happiness that the Jayaprakash Narayan Bird Sanctuary Surhatal in Balia, Uttar Pradesh has been designated as India's 100th Ramsar site. The Prime Minister has said India's digital infrastructure journey is gathering remarkable momentum. In a social media post, Mr. Modi informed that Air Trunk has announced plans to invest around 3 lakh crore rupees in India and develop 5 gigawatt of data center capacity. Benchmark domestic equity indices slipped into negative territory during afternoon trade. Today, the Sensex lost 86 points to 74,274, while the Nifty dropped 43 points to 23,374 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
6: हमने चुना था वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुमराह फिल्म के गाने में इस कविता से कौन सा शब्द आ रहा है और साथ में आपको बूझना है कि कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना।

गुमराह फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ें। हमने आपसे पूछा था कौन है दो कलाकार जो खूबसूरत वादियों में गा रहे हैं ये गाना, सुनील दत्त और माला सिन्हा। तकरीबन सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफ़र में पहाड़ों नदियों के गीतों की महफिल है, मुझे एक गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली का पसंद आ रहा है, वो अगर आप सुनवा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी ये कविता बहुत ही सुंदर मर्मस्पर्शी है, आपने पहाड़ों हवा बारिश और फूलों की भाषा में एक निर्झर सी आत्मा को उभारा है, नाजुक मुक्त और अनंत उम्मीदों से भरी। हमारी वसुंधरा का प्रतिबिंब पहाड़ों वाली लड़की के माध्यम से प्रकृति के हर एक रूप, उसके गीतों, हवा के सरसराहट, नदियों की चंचलता को जीवंत कर दिया है। ज़रा ये तो बताइए कि आप बात पर्यावरण की कर रहे हैं अगर, तो पर्यावरण की बात जब आती है तो आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं? इस आज के इस प्रोग्राम के टिप्पणी में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर ये भी आप लिख सकते हैं कि आप निजी स्तर पर क्या करते हैं। जैसे हाल ही में अभी जब सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ थी 2 जून को, तो जब हिमानी शिवपुरी जी, जानी मानी अदाकारा हिमानी जी आई थी, तो उनके हाथों विविध भारती के परिसर में पौधारोपण किया गया था। तो इस तरह से हम निजी स्तर पर चाहें तो रोज़ एक पौधा रोप सकते हैं। तो अगर एक एक पौधा हम सब ने रोपा तो कितने सारे पौधे हो जाएंगे, ज़रा गणना कीजिए। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और श्रोताओं की टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज मैं कोच्ची में हूँ, बादलों का आनंद ले रहा हूँ, हरियाली बिना बादलों के संभव नहीं। मुंबई में था तो पार्क के पेड़ पौधे आसमान की तरफ नजरें उठाए प्रकृति से मानो गुहार लगा रही थी कि हमारे दुखों का अंत कब होगा, मेघों की गर्जना कब सुनाई देगी, ऐसा लग रहा था मानो वो बेदम से हो गए हैं। पत्तों की हरीतिमा खत्म सी हो रही है, पेड़ों के डंठलों में सीधे खड़े रहने की ताकत नहीं है। कोच्ची में चारों तरफ पेड़ झूम झूम कर बादलों का स्वागत कर रहे हैं। सचमुच यहाँ हम मुंबई में कोई पौधा रोपते हैं तो बस 2 महीने या मुश्किल से 3 महीने बाद वो मुरझाने लगता है, क्योंकि मिट्टी हमें सही नहीं मिल पाती है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, माली काका को बुलाते हैं और पौधे नए लगवाते हैं, उनसे मिट्टी नई बदलवाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? अगर करते हैं तो ज़रूर बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत प्रकृति से जुड़ी, सुंदर नज़ारे, पहाड़, पौधे, नदी, झरने, खुली वादियाँ, आसमान, बादल, बरसात, फूल, धरती, जंगल, पशु पक्षी, प्रेम गीत, प्रेम का दर्द, सुबह की पहली किरण, शाम की सिंदूरी, वातावरण वाली आवाज़, मीठी आवाज़। तो आपने गाने कौन से बताए? गाने तो बताए नहीं, गाने भी तो बताते चलिए। जैसे अभी हमने जो गाना सुनवाया गुमराह फिल्म का, हवाएं थीं और फिजाएं थीं और इसके प्यार था, प्यार शब्द भी आया है इस कविता में। तो अब जो अगला गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, ज़रा उसमें ढूंढिए कि कविता में कौन सा शब्द आया था, वो कविता और गाना मैच हो रहा है कि नहीं। आज और कल फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार और संगीतकार का नाम आपको पूछना है।

0: ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: आज और कल फिल्म का गाना था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। बहुत आसान सवाल था और सभी श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के सुरीले सफ़र में जहां एक पहाड़ी लड़की वादियों में घूमती, झरनों में नहाती, फूलों की घाटी में समा जाती है, उसके गीत उन वादियों में गूंज रहे हैं। वो एक प्रेमी की तलाश में है जो एक पहाड़न के दिल को समझे, उसके जज्बात को समझे, वो अपना ले तमाम परदेसियों की तरह छोड़कर चला ना जाए। इस बात से कि परदेसी की तरह छोड़कर चला ना जाए, फिल्म जब जब फूल खिले याद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के इस कार्यक्रम में प्रकृति की बातें होंगी, सब कुछ है, प्रकृति भी है, प्यार है, दर्द का राग है, कविता एक बार फिर से पढ़ लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मौसम पर आधारित है आज का कार्यक्रम, मानसून की आमद होने वाली है, केरल से आना शुरू हो गया है, आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लिस्ट के सभी गाने बजने वाले हैं आज, और इसलिए मिलते हैं 1 बजे, भाई शुरू हो चुका है कार्यक्रम और देखते हैं कि आप सबकी पसंद और हमारी पसंद मिलती जुलती है। वैसे अगर आप कुछ गाने हमें सुझाएं तो हम आप वाले गाने भी बजा सकते हैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे श्रोताओं की वो पसंद होनी चाहिए। बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी लिस्ट भेजी है। एक ने लिखा है, नीले पर्वतों की धारा, दिल का भंवर करे पुकार, मैंने कहा फूलों से, वगैरह वगैरह। तो देखते चलिए कि आप वाले गाने इसमें शामिल हैं या नहीं, और हाँ, शब्द भी बताते चलिए कि इस शब्द से अभी कौन सा, किस शब्द से कौन सा गाना बजा। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें प्रकृति सुंदर हवा देती है, ठंडी छांव देती है, फूल देती है, जीवन जीने का आधार देती है, इसलिए जब मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रही है। तो मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो, पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने जीवन और अपने कल को सुरक्षित रखने का सबसे सुंदर प्रयास है। बिल्कुल सही फरमाया, और इसी बहाने आप उन पुराने दिनों को भी याद करते चलिए जो जब बड़े बड़े बाग होते थे, गांव में अभी भी हैं, और उन बागों में तरह तरह के पेड़ हुआ करते थे, फूलों की वादी होती थी, फूलों की घाटी, पेड़ में आम के पेड़, जामुन के पेड़, और वो कैथा, और जो बहुत सारे ग्रामीण फल होते थे जिनके नाम भी हम आज भूल चुके हैं। तो जो आम जामुन के पेड़ ख़ास तौर से जाते थे, आप पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लेते थे या ढेला मार के फेंकते थे, टूटकर आम गिरता था, तो बाप दादे के लगाए हुए वो पेड़ के आम खाते रहते हैं। तो कभी सोचा है कि आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको याद करे जिस तरह आप अपने दादा नाना को याद करते हैं। चलिए, याद करते रहिए, और गानों से जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो डिटेल्स भी याद करते चलिए। फिल्म 2x4 बताइए, किसकी है आवाज़, किसका है संगीत और किसका है गीत।

0: दो दूनी चार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था स्वर किसका है, संगीत किसका है, गीत किसका है। किशोर कुमार की आवाज़, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत है। और कौन से शब्द के लिए ये गाना सुनवाए ये भी ज़रा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि इस गीत के गीतकार गुलजार हैं और ये मेरा पसंदीदा गाना है, अभिनेता किशोर कुमार है और बहुत पसंद है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपको देखकर फेसबुक पेज पर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इतनी बड़ी इबारत उसमें इतना कुछ समाया हुआ है कि इसके लिए एक घंटे का समय बहुत कम पड़ जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्यारी रेडियो सखी कैसे निभाती हैं। प्रोग्राम तो प्यारा होने वाला है क्योंकि एक तो आप और भी बहुत सारी बातें लिखिए भाई, तारीफ के अलावा आप वो बातें लिखिए जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। और आप, हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई पौधा रोपा है या पौधे की देखभाल आप करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, पर्यावरण के लिए आप निजी स्तर पर क्या कुछ करते हैं। जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, नदी के किनारे, समंदर के किनारे जाते हैं तो वहाँ एक खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं और एक दो रैपर वहीं पर फेंक के चले आते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो पानी है, नदी का पानी है, इसमें जाकर वो इकट्ठा हो रहा है। यहाँ तक कि समंदर की लहरों के साथ बहुत सारा कचरा आता है। जब हम मुंबई में किसी बीच पर जाते हैं या किसी भी समंदर के किनारे कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जब पैरों में पॉलीथीन अटकता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो बस ऐसे ही सोचिए कि वो जो पानी है समंदर या नदी का, उन्हें भी बुरा लगता होगा। तो साफ़ सफाई का ख्याल भी रखें। फ़िलहाल सुने ये गाना।
1: ये रातें, ये मौसम।

दिल्ली का ठग फिल्म का गाना आशा भोसले, किशोर कुमार की आवाजें, एसएच बिहारी के बोल, रवि का संगीत। अब बहुत सारे श्रोताओं ने यही बात लिखी है, अब गानों के बोल भी आए हैं श्रोताओं की ओर से, और ज़्यादातर श्रोताओं ने ये बात लिखी कि आज प्रकृति की बातें होंगी, आज की इबारत से समझ में आ रहा है। भाई अपने अनुभव साझा कीजिए, पर्यावरण से जुड़े हुए गाने साझा कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की भीगी भागी सी, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने पंछी बनूं उड़ती फिरूं ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, हुस्न पहाड़ों का, और भी गानों की लंबी फहरिस्त भेजी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने बड़ी सुंदर कविता लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता लंबी है लेकिन बड़ी प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि घर को पृथ्वी का मित्र बनाएंगे, जल बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कचरा कम करेंगे, बच्चों को प्रकृति से जोड़ेंगे, उपभोग की बजाय संतुलन का जीवन अपनाएंगे, क्योंकि अंततः पृथ्वी को बचाना किसी दूरस्थ अभियान का विषय नहीं है। एक श्रोता कहते हैं कि हम चाहे जितनी भौतिक दुनिया में जी लें लेकिन सुकून, शांति, शक्ति और ठहराव हमें प्रकृति के पास जाने पर ही मिलता है। बिल्कुल सही फरमाया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मुझे लगता है कि प्रकृति से बढ़कर सच्चा दोस्त कोई नहीं। ये हमें शुद्ध हवा देती है, ठंडी छांव, सुंदर फूल देती है और जीवन जीने का आधार भी। इसलिए जब भी मैं किसी पेड़ को देखती हूँ तो लगता है कि वो बिना कुछ कहे हमें जीने का तरीका सिखा रहा है। देते रहो, मुस्कुराते रहो, दूसरों के काम आते रहो। पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है सामूहिक रूप से। चलिए अब गीत फिल्म का गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। अब गीतकार संगीतकार का नाम तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फेनिल झरना है, सुंदर कुदरत के नज़ारे हैं, बताइए कलाकारों के नाम, हीरो हीरोइन।

0: फिनिल झरने सुंदर कुदरती नज़ारों के बीच गा रहे हैं ये गाना राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर्दे पर। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं दिखा। एक श्रोता ने लिखा है कि खेतों को काटकर उस ज़मीन पर मकान बनाए जा रहे हैं जिससे मानव और पशु पक्षी दोनों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। और बहुत सारे श्रोता अब गानों के बोल लिख रहे हैं शब्द ढूंढ ढूंढ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें तो जुल्फ शब्द भी है लेकिन उसके गाने नहीं लिखे हैं, जुल्फ वाले गाने कौन से, ज़रा वो भी तो बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि धरती का श्रृंगार, पेड़ पौधे, नदी तालाब ही तो हैं, इन्हें बचाने की बजाय इनका दोहन हो रहा है। मेरे दरवाजे पर नीम और जामुन के पेड़ बड़े पेड़ हैं। गांव के 10-20 लोग हमेशा दरवाजे पर आकर बैठते हैं और जो जामुन में फल आते हैं तो हम लोग जामुन खाने तोड़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नीम के पेड़ पर झूले भी तो डलते होंगे, अब सावन जब आएगा, जब सावन के आने पर झूले पड़ेंगे, झूले पर फिर कजरी गाई जाएगी। वो भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई पेड़ है जिस पेड़ पर झूले डाले जाते हैं, बता सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई बात। चलिए अब सुनते हैं ये गाना, फिल्म है तेरे घर के सामने, बताइए कौन है इसमें कलाकार।
1: प्यार करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
0: गीतकार का नाम भी बताइए जरा, संगीतकार का नाम भी, कौन है हीरो।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोलते सचिन देवबर्मन का संगीत था और तीनों सवाल के जवाब श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही आए हैं। और श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के लिए इबारत में काल्पनिक पहाड़ी युवती का आधार पर प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरी गई है, जहां नीले अंबर संग अटखेलियां करती, पर्वतों कलकल करती, अनवरत बहती झरनों संग सुंदर वसुंधरा की खूबसूरती का बखान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बरसों पहले यहां पेड़ थे फल फूलों से लदे हुए, कई टहनियां थीं जो जिस पर झूले बंधे हुए थे, सब के सब कहां खो गए, लगता है लोग बहुत बड़े हो गए। क्या बात है, ये सवाल तो खुद से ही पूछना चाहिए कि ये सारे पेड़ पौधे कहां हमने कतर दिए, और अगर कट गए वो पेड़ तो हमने लगाए क्यों नहीं। ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और हरियाली धरती पर कायम रहेगी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति की गोद में जाना किसे नहीं अच्छा लगता, वो जहाँ पहाड़ हो, जंगल हो, नदी हो, वन्य जीवों की अटखेलियाँ हो, प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं होता, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर प्रकृति के करीब अवश्य जाएं। लेकिन ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इससे दूर जाना पड़ेगा, तब आप प्रकृति की गोद में बैठ सकते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल उठाकर देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं है, या फिर खिड़की खोलकर शुद्ध हवा लेते हैं, या फिर अपने गमले में लगे पौधों से बतियाते हैं, या फिर सोचते हैं कि हम भी ज़रा थोड़ी क्यारी में पौधों की संख्या बढ़ा दें। चलिए ये सवाल खुद से पूछिए और अब सुनिए सेहरा फिल्म का ये गाना। किस लिए ये गाना बजाया, कौन सा शब्द है इबारत में, जरा ढूंढिए और बताइए हमें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। संगीतकार का नाम जरा बताइए, कौन है संगीतकार।

सेहरा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, रामलाल का संगीत था। हमने संगीतकार का नाम पूछा था, कुछ श्रोताओं ने गलत बताया है, कुछ श्रोताओं ने सही बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि प्रकृति हमें न केवल भौतिक संसाधन देती है बल्कि मानसिक शांति और आरोग्य भी देती है। प्रकृति के साथ संवाद करना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत दृष्टिपात करने की एक क्षमता प्रदान करता है। हम प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुधा पहाड़ी लड़की का सौंदर्य सादगी, प्राकृतिक परिवेश और संघर्ष का एक जीवंत मिश्रण होता है। इनकी तुलना अक्सर खिलते हुए बुरांश के फूलों, कलकल बहती नदियों और पहाड़ों की स्वच्छ हवाओं से की जाती है। उनके रूप सौंदर्य में कृत्रिमता नहीं बल्कि प्रकृति की सहजता होती है। पर्वतीय बालाओं का पहनावा भी प्रकृति की गोद से जुड़ा हुआ होता है। रंग बिरंगे परिधान जो पहाड़ों के बदलते मौसम के अनुकूल होते हैं, इनका सौंदर्य केवल शारीरिक न होकर बल्कि परिश्रमी और संघर्षशील स्वभाव का प्रतिबिंब होता है। और आपकी इबारत से हमने इस चित्र को महसूस किया। चलिए अब आगे बढ़ें और सुने आह फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार संगीतकार का नाम ज़रा बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई ख़ास याद है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अपनी उदासी और अपना दर्द हम जोड़ लेते हैं गानों के साथ, रेडियो के साथ, विविध भारती के साथ। बहुत सारे श्रोता ये कहते हैं।

आ फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन थी। और ये हमने आपसे सवाल भी पूछा था और साथ में हमने कलाकारों के नाम भी पूछे थे कि इन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना, राज कपूर और नरगिस। श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जो गाने हमें समझ में आए हैं आपकी इबारत से, वो है झूमे रे नीला अंबर, झूमे रे धरती और बारिश की बूंदें बरसने लगी की गाना, और नील गगन की छाँव में पंछी बन उड़ जाता है। और एक गाना है एक सुनहरी शाम थी, आओ प्यार करें फिल्म का नाम, और प्यासी हिरनी बन बन धाए, ये वाला गाना भी लिखा है जो बहुत दिनों बाद इसका जिक्र आया है। और भी बहुत सारे गाने लिखे जिनमें से कुछ गाने हम आपको सुनवा चुके और कुछ गाने हमारे इस प्लेलिस्ट में हैं, लेकिन शायद वो गाने हम सुनवा नहीं पाएंगे क्योंकि एक गाना अभी और बाकी है। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यावरण दिवस है, हमें गांव, नदियां, नाले सब कुछ स्वस्थ रखना चाहिए, पर्यावरण और पर्यटन दोनों हमें इनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, लेकिन आज जहां लोग पर्यटन को जाते हैं वहां के पर्यावरण को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। आज के सुरीले सफ़र में रेडियो सखी ने नदियां, पहाड़ इन सब का जिक्र छेड़ा है। अब देखना सुनना है कि इसमें मनोरंजन कितना होता है और संदेश कितना होता है, तो आप बताइए क्या था। हमें लगता है कि संदेश और मनोरंजन का सम्मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। सुनिए कि प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: गाने में हीरो हैं जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था। नाम बताइए जरा और हीरोइन का नाम भी बताइए। हीरो और हीरोइन का नाम आपको बूझना है।
1: तेरे बिन जी लगे ना अकेले।

0: मातरम बोलने पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अगर यह पाबंदी तोड़ी गई तो पूरा अधिवेशन रद्द करवा देने की धमकी भी उसने दी। पूरे शहर में एक बड़ी गोरखा पलटन तैनात कर दी। एक दिन पहले ही नियोजित अध्यक्ष अब्दुल रसूल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, भूपेंद्रनाथ बसु और हिरेंद्रनाथ दत्त नाव से बारिसाल आए। वंदे मातरम पर पाबंदी के कारण प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत शांतिपूर्वक किया।
1: वंदे मातरम पर पाबंदी यानी लड़ाई से पहले ही हाथों से हथियार छीन लेने जैसा था। युवा तो बेहद क्रोधित हो गए, मगर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कानून के जानकार होने के कारण उन्होंने युवकों को शांत किया। स्वयं कृष्ण कुमार मित्र सचिंद्रनाथ बोस भी बहुत नाराज हुए और वे बोले,
2: वंदे मातरम पर पाबंदी है तो हम इस सम्मेलन में भाग ही नहीं लेंगे।
1: अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष तो बोले,
3: मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, चाहे इसके लिए सिर कट जाए तो भी चलेगा, इस सिर की कीमत वंदे मातरम से बड़ी नहीं है।
1: बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि काली प्रसन्न विशारद आदि मान्यवर भी बारिसाल पहुंच चुके थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को समझाया। वे बोले,
4: जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सम्मेलन स्थल पर यह पाबंदी नहीं है। सम्मेलन सुचारू रूप से होने के लिए यहां के नेताओं ने अगर प्रशासन को वचन दिया है तो हम सभी को उसका पालन करना चाहिए।
0: परंतु ये सब तूफान से पहले की शांति थी। 14 अप्रैल का सूरज निकला और वंदे मातरम के बिल्ले लगाए हुए प्रतिनिधि, हजारों लोग जुलूस के रूप में राय बहादुर की हवेली से सभा स्थल की ओर निकले। माहौल का तनाव कुछ हद तक दूर हुआ। जुलूस में वंदे मातरम शब्दों पर पाबंदी होने के बावजूद यह पाबंदी जानबूझकर तोड़नी है ऐसा सभी ने तय किया था। पुलिस लाठीचार्ज या गोलीबारी करेगी, शायद रक्तपात भी होगा। इसका एहसास होने के उपरांत लोग निडर होकर सड़कों पर उतरे थे।
1: आम लोगों से लेकर लोकप्रिय नेताओं तक सभी एक ही भावना से जुलूस में शामिल हुए। इस अधिवेशन के नियोजित अध्यक्ष बैरिस्टर अब्दुल रसूल सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस जुलूस के आगे पैदल चल रहे थे। जुलूस में युवकों ने उत्साहपूर्वक वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए, मगर पहले से ही जो तय था उसके अनुसार फुल्लर के आदेश पर गोरखा पलटन ने निहत्ते भीड़ पर हमला कर दिया।
0: इस हमले के लिए फुल्लर ने उन्हें 6 फुट लंबी एक मोटी लाठी दी थी। यह रेगुलेशन लाठी अंग्रेजों के बारिसाल में दमन का प्रतीक बन गई। दोपहर 2 बजे यह जुलूस निकला और यह जुलूस ठीक से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही जुलूस के पिछले हिस्से की तरफ से फुल्लर की सेना ने हमला कर दिया। बहुत कठोरता से इस लाठी के वार आंदोलनकारियों पर होने लगे। लाठी की मार के साथ वंदे मातरम का घोष और भी बड़ा होता गया। उसके साथ ही मागो जाए जन जीवन चले यह गीत भी लोग ऊंचे स्वर में गा रहे थे।
1: पुलिस के निर्दय लाठीचार्ज से फणीन्द्रनाथ बनर्जी, चित्रंजन गुह ठाकुर, अरविंद बाबू, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ दत्त कोई भी नहीं बच सका। सबका शरीर लहूलुहान हो गया। पुलिस अधिकारी कैंप खुद लाठीचार्ज में सबसे आगे था। कृष्ण कुमार मित्र ने कैंप से कहा,
5: आप अपनी पुलिस को रोकिए, नहीं तो आपके सामने इससे भी कठिन चुनौतियां खड़ी होंगी। अपनी पुलिस को रोकना आपका कर्तव्य है।

0: कैंप ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया,
1: मेरा ड्यूटी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके सलाह का जरूरत नहीं है।
0: पर कुल मिलाकर घटना की गंभीरता समझकर उन्होंने लाठी चार्ज बंद किया और आसमान में बस दो ही शब्दों की गूंज बार बार आती रही।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 31वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की।

0: रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदमत द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुण, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
0: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और ATM में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने RBI के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
4: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ में जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सब का एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
5: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड टू द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे एस एन माँ का नाम से एक पेड़ लगाएंगे।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
6: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ हैं उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमेरिका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
7: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं।
8: लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
9: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत वासना फिल्म के गाने से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी के बोल।

0: शैलेंद्र का लिखा गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म थी गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ई बो। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था, फिल्म थी ताजमहल। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त जीवन विषय पर आयोजित मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में हिमाचल सहित पड़ोसी राज्यों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्य, विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांगजन भी बड़ी संख्या में इस आयोजन का हिस्सा बने। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध वायु से समृद्ध राज्य है। उन्होंने भावी पीढ़ियों के हित में प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर और सौंदर्य के संरक्षण पर विशेष बल दिया। राज्यपाल ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचने के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की प्रशंसा की। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रिज मैदान पर आयोजित मिनी मैराथन रन फॉर अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड अ चिट्टा फ्री लाइफ के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर कड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जहाँ 5 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से बहती है, उनका ख्याल रखना है, उनकी सफाई का ख्याल रखना है, जंगल उगाना है और जागरूक होना है, यही हमारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारा देश है। चिट्टा की बात मैं आपको करना चाहूंगा। हमारी सरकार को जो नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ चंडीगढ़ है, उसने जो हमारी प्लानिंग है, योजना है, उसको भी अप्रिशिएट किया। पहली बार चिट्टा को पंचायत स्तर पर मार्किंग की गई है। जो यहाँ ज्यादा चिट्टा वाले हैं या नशा करने वाले, उसको रेड कैटेगरी में, येलो कैटेगरी और कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है।
0: पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर खालसा टैक्स के तनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे खालसा टैक्स नाका को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उधर लाहौल स्पीति जिला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तांदी बांध संघर्ष समिति ने कोकसर में प्रस्तावित चिनाब ब्यास लिंक परियोजना के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। समिति के अध्यक्ष विनोद लारजे ने कहा कि सुरंग निर्माण और ब्लास्टिंग से जल स्रोतों, ग्लेशियरों व स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं उपाध्यक्ष अरुण राणा ने ब्यास नदी में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं का हवाला देते हुए सरकार से परियोजना पर पुनर्विचार की मांग की है।
2: नदी का पानी है, ये इसको डाइवर्ट करके ये ब्यास नदी में मिलाने की योजना चल रही है, लेकिन ये जो यहाँ की बिल्कुल जो है हमारी फ्रेजाइल इकोलॉजी है, ये पूरा ये चंद्रा रिवर आगे ये जो चनाब बन के ये आगे पाकिस्तान तक जाती है, लेकिन ये पूरा बेसिन जो है बहुत ही फ्रेजाइल इकोलॉजी वाला है। इसके गंभीर पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये परियोजना केंद्र सरकार को इस पर फिर से गंभीरता से विचार करना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 7 जून को 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा राज्यभर में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के दौरान पार्टी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। बिंदल ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शिमला में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोटों का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्तर पर है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। पिछले लंबे समय से अध्यापन के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण से जुड़े चंबा जिला के शिक्षक युद्धवीर टंडन और हिंग राज चिराग ने इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। इनके प्रयासों से भगवान नामक एक साझा काव्य संकलन प्रकाशित किया गया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश प्रदेश और जिला चंबा के कई महान कवियों के मन के उद्गार प्रकाशित किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद अब प्रस्तुत है सामयिक चर्चा, जिसका विषय है विश्व पर्यावरण दिवस। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का।
4: विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें प्रकृति तथा पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। पर्यावरण केवल हमारे चारों ओर

0: भूमि और अनुकूल जलवायु मानव सभ्यता के विकास की आधारशिला हैं। आज जब दुनिया तेजी से औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और तकनीकी विकास की ओर बढ़ रही है, तब पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई, जैव विविधता का हर और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन मानवता के सामने गंभीर चुनौतियां बनकर उभरे हैं। इन चुनौतियों से निपटने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरण संरक्षण को वैश्विक आंदोलन का स्वरूप देने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया और वर्ष 1973 से इसे नियमित रूप से मनाया जाने लगा। तब से ये दिवस विश्व के 150 से अधिक देशों में विभिन्न कार्यक्रमों, जन जागरूकता अभियानों, वृक्षारोपण गतिविधियों, पर्यावरण रैलियों और संगोष्ठियों के माध्यम से मनाया जाता है। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता पर्यावरणीय संतुलन पर निर्भर करती है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं। नदियां, झीलें और जलस्रोत जीवन के लिए आवश्यक जल उपलब्ध कराते हैं। वन्य जीव और वनस्पतियां पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि पर्यावरण असंतुलित हो जाए तो इसका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। आज दुनिया के अनेक देशों में प्रदूषण के कारण श्वसन रोग, हृदय संबंधी समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। वायु प्रदूषण के कारण लाखों लोगों की समय से पहले मृत्यु हो रही है। जल प्रदूषण नदियों और जल स्रोतों को दूषित कर रहा है, जिससे पीने योग्य जल की उपलब्धता कम होती जा रही है। प्लास्टिक कचरा धरती और समुद्र दोनों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। समुद्री जीव प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। औद्योगिक गतिविधियों और जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं असामान्य वर्षा और बाढ़ आ रही है। हिमालय सहित विश्व के अनेक ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे भविष्य में जल संकट और समुद्र स्तर पर बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में भी वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों में पर्यावरण संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की आवश्यकता बन गया है। वनों की कटाई भी पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या है। विकास परियोजनाओं, सड़क निर्माण, खनन और शहरी विस्तार के कारण बड़े पैमाने पर जंगल नष्ट हो रहे हैं। वन न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं बल्कि वर्षा चक्र को बनाए रखने और मिट्टी के कटाव को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगलों के नष्ट होने से वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहा है और अनेक प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं।
1: प्रभा शर्मा से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, जिसका विषय था विश्व पर्यावरण दिवस। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का काम काज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ, आकाशवाणी के सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं
1: हाँ,
0: आप?
1: पढ़ाई तो खत्म है, मेरे कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी, 10वीं
0: अच्छा,
1: पास।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो
0: हाँ
1: उनकी याद में गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं,
0: जी
1: मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ प्यारा सा।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप तो।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में कम निकलना।
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो तब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो आप
1: आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है, मैम आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को ही आता है 9 बजे। छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही हैं और कौन से
1: मैं
0: शहर से?
1: रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही हैं उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप
1: जी
0: क्या करती हैं?
1: मैं मैम हाउस वाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी और एक बेटा है। अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी हैं ना?
1: जी जी मैम, अभी 2-3 महीने हुए हैं।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं,
0: आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है और शाम की टाइम तो हम रोज घूमने जाते हैं। मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की,
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत
1: हाँ
0: बहुत ही
1: बिल्कुल,
0: अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: इसलिए मैम अच्छा लगता है उनके साथ। और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो अब टेंशन फ्री है थोड़े से।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की
1: जी
0: सास
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा
1: जी,
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी, तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप, तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: वो तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सबसे पहले, सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
0: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह से मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिस्तर संगीत सविता, भूले बिस्तर गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
0: ये अच्छी चीज है।
1: हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सबने।
0: अरे वाह,
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पीआर जो है जबलपुर का है
0: जी,
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समय हमारी जीवन देते हैं। जवाब
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना सुनूंगी गागू साइड खान का, नाचू तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सरगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
1: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपका बच्चा?
1: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओहो, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
1: वो ज्यादा नहीं कर पाती पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
1: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
1: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
1: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपनी मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
1: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
1: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती है, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
1: बीमारी सही कर दे डांस,
0: बिल्कुल
1: म्यूजिक तो ऐसी चीज
0: है। जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
1: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत।
0: जी तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं रत्ना बोल रही हूँ।
0: हाँ,
1: रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा रत्ना जी बोल रही हैं, कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ,
0: जी
1: मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है।
0: जी और वैसे तो हाउस वाइफ क्यों है यार, पर गर्व से कही हाउस वाइफ है क्योंकि हाउस वाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके।
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके पर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए
0: बिल्कुल।
1: जो है।
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे हैं, बहू है, पोती है
0: बहुत
1: छोटी
0: बढ़िया
1: सी
0: तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से तो बताइए जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी, बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है। मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा आपने
1: और
0: लगा रखे हैं?
1: जी हाँ, लगा रखे हैं। और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी
0: अरे वाह, बहुत
1: रखते
0: बहुत
1: हैं।
0: अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से
1: हाँ
0: दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत
1: जी
0: अच्छी
1: जी
0: बात है ये।
1: जी
0: और साथ
1: चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है।
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती हैं, अपनी खुशियां देती हैं ना
1: खुश
0: तो
1: होती हैं,
0: बिल्कुल
1: सब आती हैं, सब खेलती
0: जी,
1: हैं, तो
0: जब
1: बड़ा
0: वो
1: अच्छा लगता
0: चहचहाती हैं तो हमारे आंगन में एकदम खुशियां बिखर जाती हैं, है ना?
1: है। जी जी जी
0: तो अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है। मैं
0: तो आप कहाँ से हैं?
1: चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ मैडम,
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको
1: मुझे
0: बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा
1: जी
0: लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है। मुझे
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: जाग्वार फिल्म में का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है, तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं उड़ीसा गंजाम जिला से बोल रही हूँ
0: जी। आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियाँ हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है तो?
1: मुझे सिलाई आती है तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।
0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या है ना, हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है, लेकिन आपने उस चीज़ को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: खुशी हो रही है कि आज सखी सहेली पर मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों के बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 में है।
0: अच्छा अच्छा
1: कुछ हैप्पी बर्थडे की गीत सुनाई देंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करें। जी, तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं, तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: वो जो सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा?
1: हजारों साल।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े, और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एफएम बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। साय के 4 बजे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस, माँ ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि माँ ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हाँ, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर, शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती हैं तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कह कर गई हैं पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकी अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर, कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज़्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूँ। संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफ़ी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, भावना हंसकर कहने लगी। बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है। सबसे पहले मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी, फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किरायेदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई, जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ, और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं, और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज़ आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी। रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आईं, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थीं। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुनूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ, आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में, संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा, और दोनों खिलखिला पड़े।

आसमान।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थी, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया, ठीक है तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी, कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेटकर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना। साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आगे देखो तो रघुपति साहेब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप
0: बिटवा। है ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
4: किया इनमें सड़क, बिजली और उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आज हजीरा का दौरा किया और औद्योगिक तथा अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमन भी जाएंगे। असम मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्री परिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने आज घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। भारत के यात्री वाहन बाजार में मई में लगभग 44 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज आय पर पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह की आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक

0: नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: After a detailed assessment,
2: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सूरत में विकास परियोजनाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, केम छो बदा अने आपलो सूरत मजा माने तू शू लई आयो जो भाई दोस्त सरस में जानू चित्र बनाई देते हैं। जरा SP जना लोको आप भाई कहीं भेंट आप मांगे थे।
0: अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद शिकायत निवारण के लिए 70,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जापान में पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Statistics and Programme Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. The real GDP is estimated to attain a level of over 323 lakh crore rupees in 2025-26 against the first revised estimate of GDP for 2024-25 of over 299 lakh crore rupees. Union Home Minister Amit Shah said that Prime Minister Narendra Modi is working with the goal of building a developed India by 2047. Addressing the Prahari Sammelan at the Lankamura border outpost along the India-Bangladesh international border in Tripura today, the Home Minister emphasized that making the nation safe and secure is absolutely essential before achieving a complete development to systematically counter all forms of cross-border smuggling and infiltration. Mr. Shah announced that the Union Government is finalizing the Smart Border Project, which will shift traditional border management towards a synchronized, tech-driven framework. On World Environment Day, Vice President C.P. Radhakrishnan said that trees play a vital role in bringing rainfall, improving air quality, reducing atmospheric carbon, and maintaining the ecological balance. In a video message, Vice President Mr. Radhakrishnan called upon every citizen to plant at least one tree near their home or at a suitable location. Prime Minister Narendra Modi extended his best wishes to everyone on World Environment Day, saying initiatives like Ek Ped Maa Ke Naam have made significant contribution towards adding nearly 1.1 lakh hectares of forest every year. In a series of posts on social media, Mr. Modi remarked that this day serves to reaffirm the commitment to protecting the environment and furthering sustainable growth. Nominations for the Padma Awards 2027 will remain open till the 31st of next month. Ministry of Home Affairs has said that the nominations and recommendations for Padma Awards, which started on the 15th of March, will only be received online on the Rashtriya Puraskar portal. In men's under-18 Asia Cup hockey tournament, the semi-final match between India and Pakistan is underway at Kakamighara Hockey Stadium in Japan. In the women's under-18 Asia Cup, the Indian team lost in penalty shootouts to China in the semi-finals today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं एक रेडियो रिपोर्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर।
2: विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज धर्मशाला में महात्मा गांधी स्मृति वाटिका में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोष्ठी और रैली इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहा। कार्यक्रम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, व्यापार मंडल धर्मशाला के सदस्यों, विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं, वरिष्ठ नागरिकों और आम जनमानस ने हिस्सा लिया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: सर्वप्रथम हम यहाँ स्मृति वाटिका में बैठे हुए हैं। हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति सर्वप्रथम अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, जहां पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, अर्थात सुंदर जलधारा को देने वाली, स्वादिष्ट एवं मधुर फलों को प्रदान करने वाली, शीतल एवं सुगंधित पवन को बहाने वाली, हरियाली से भरपूर हमारी ये धरती, हमारी ये वसुंधरा, इसको हम शत शत नमन करते हैं, क्योंकि धरा से ही हमारे प्रत्येक कार्य आरंभ होते हैं। ये धरती नहीं, धरती माता है, जो कि हमें हर प्रकार का आशीर्वाद प्रातःकालीन से लेकर के सांध्यकालीन तक हमें ये प्रदान करती है, अपनी सुरक्षा में हमें रखती है। और भी कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, अर्थात जननी जन्मभूमि जो है वो हमें स्वर्ग से भी बढ़कर के प्यारी लगती है। हम इसका कोटिशा धन्यवाद करते हैं कि हमें इस धरती माता ने यहाँ पर कदम रखने के लिए शरण दी है।

0: उपस्थित बुद्धिजीवी मनीषी एवं विद्वान साथियों, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्रगण एवं उनके अध्यापक वर्ग व सभी विद्वान साथियों का यहाँ गांधी स्मृति वाटिका के अंदर हम स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून है। 5 जून हर वर्ष आकर के कहता है, हर बार यही, संघर्षों से मिलता है जीने का अधिकार। विश्व पर्यावरण दिवस में आप सभी यहाँ आए हुए हैं। पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से हमारा, 5 तत्वों से मिला हुआ ये पर्यावरण। यदि हम पर्यावरण हमारा एक सुरक्षा कवच है, यदि इस सुरक्षा कवच को हम हटा देंगे तो मानव जीवन भी समाप्त हो जाएगा। जीवन 2 शब्दों के मेल से बना है, जी। जी का अर्थ है प्राण, प्राण, और वन का अर्थ है जंगल, वनस्पतियां, अंतरिक्ष इत्यादि, जल, वायु, अग्नि, ये सभी इसी में समाहित हो जाते हैं। तो जीवन जो है वो हमारे पर्यावरण से अधिक संबंधित है। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारे जीवन का कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम देखते हैं सुबह प्रातःकालीन हम उठते हैं और उठते ही सबसे पहले धरती माँ की वंदना करते हैं, उसके पश्चात जल की ओर देखते हैं। जल हमारे देवता हैं, जल को किसी प्रकार से बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल पी करके ही हमारा शरीर स्वस्थ और संगठित रहता है। जल पीने से ही हमारी आंखें खुलती हैं। जल को किसी प्रकार से हमें व्यर्थ नहीं बहाना है, जल की प्रत्येक बूंद की हमें हर प्रकार से सुरक्षा करनी है, ताकि ये जल जो है वो हम पी करके, जल वास्तव में अमर है, ये अमृत तो है, अमर इस अमृत तो जल को पी करके ही हम जीवन यापन कर रहे हैं। कहा भी गया है, सागर चरण पखारे, गंगा शीश नवावे, 100-100 बार मेरी धरती माँ नमन करूँ मैं 100-100 बार। तो जल जो है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।
1: सबसे पहले मैं डॉक्टर अंजन कालिया जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और उनका जो सहयोग है पर्यावरण से रिलेटेड, जो उनका सहयोग है उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत समय से पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं। और गांधी स्मृति वाटिका में पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर साल यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो यहाँ स्कूल से बहुत से बच्चे आए हुए हैं, साथ में जितने भी यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन और जो भी पर्यावरण से संबंध रखते हैं, जिनका बहुत ही अच्छा नाता जुड़ा हुआ है पर्यावरण से, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस 2026 मनाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और स्वागत करता हूँ। तो हमारे को एनवायरनमेंट डे यहाँ पे बिना बच्चों के सहयोग से थोड़ा अधूरा है, क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे आने वाले जनरेशन है, इनको पता होना चाहिए कि हमारा पर्यावरण इस समय किन समस्याओं से जूझ रहा है, क्या क्या हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसमें प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रदूषण जैसे कि आपका जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, हमारी जो सॉइल प्रदूषण है जिसको हम, जैसे आपका नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, तो जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सब बच्चे आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट आए हुए हैं, जो कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत समय से वो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। उनकी बातें सुनना और उनकी बातों को अमल में लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए, ना केवल बच्चों के लिए बल्कि सभी बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, यंग जनरेशन है, सबके लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। शुद्ध वायु जो है वो उपलब्ध करवानी है, ताकि आगे की जनरेशन जो है वो सर्वाइव कर सके।
2: सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कालिया जी को साधु भाव देना चाहूँगा और धन्यवाद भी करूँगा कि हर वर्ष 15-20 वर्षों से वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और ये पर्यावरण के ही अपने समय में प्रोफेसर भी रहे हैं, और इनका इसके प्रति जो लगाव है वो बहुत ही स्मरणीय है। मैं प्रेसिडेंट जनचेतना, आपको सबसे पहले तो मैं

0: ये बताता हूँ कि जनचेतना है क्या। जनचेतना आपके शहर धर्मशाला में एक संस्था है जो कि 20-22 वर्षों से आपकी सेवा जो है वो धर्मशाला में कर रही है। जनचेतना धर्मशाला में जो ये आपका पर्यावरण का आज का उद्देश्य है 5 जून का, उसी उद्देश्य को लेकर हम धर्मशाला के शहर में इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के सुविधाएं या जो कठिनाइयां लोगों को आती हैं उसका ही हम विभाग और उनसे संबंधित अधिकारियों से मिलकर वो काम करते हैं जिससे कि लोगों को उससे राहत मिले। जैसे कि आप जानते हैं कि धर्मशाला शहर जो है वो स्मार्ट सिटी शहर है और ये भी आपकी पर्यावरण के लिए ही स्मार्ट सिटी जो है वो बनाया गया है कि यहाँ जो भी काम हो वो पर्यावरण की दृष्टि से यानी कि पर्यावरण को नुकसान दिए बिना ही किया जा सके। इस संस्था का उद्देश्य अभी यही रहता है कि हम पर्यावरण का आगे कैसे इसका जो है वो संरक्षण करें। इस तरह के वक्तव्य और इस तरह की गोष्ठियाँ, इस तरह के प्रवचन अगर हम अपने आने वाली जनरेशन के साथ नहीं करेंगे तो पर्यावरण को बचाने के लिए हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि हमारे इस तरह की संगोष्ठियाँ, इस तरह के प्रवचन, इस तरह के कार्यक्रम जो है वो होने चाहिए। पेड़ लगाने के लिए कह देते हैं कि हमने पर्यावरण बचा लिया, अब पेड़ लगाया, पेड़ लगाने के बाद फोटो फाटो खंजाए और उसको अखबारों में डाल दिया और पर्यावरण हो गया। उसके बाद ये पता नहीं है कि ये जो पेड़ लगाया था वो रहा भी है कि नहीं रहा है। सिर्फ पेड़ लगाने से ही पर्यावरण को नहीं बचा सकते हैं, हमें अपने खुद जो है इसका आत्म मंथन करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं।
1: मंच पर बैठे हुए सभी गणमान्य जन, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मेरे सामने बैठे हुए सभी स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों और वहाँ उनके साथ आए हुए अध्यापक सभी का इस सभा में आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आप अभी छोटे बच्चे हो, आने वाला भविष्य हो, आप इस पर्यावरण को समझो और इसको बचाओ। सबसे पहली बात है कि आपने स्वच्छता का ध्यान देना है। अगर वातावरण स्वच्छ होगा तो हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो हिमाचल है, हमारी जो धर्मशाला है, ये स्वच्छ होगी। पर्यावरण का यही मतलब नहीं है कि पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ, नहीं। पेड़ लगाना है तो उसका संरक्षण भी करना है, उसको देखना भी है कि वो बढ़ रहा है कि नहीं। पेड़ होंगे तो अच्छा वातावरण होगा, जल होगा, अच्छी हम सांस ले सकते हैं।
2: इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण की बात कही और अपनी प्रस्तुतियां दी।
3: जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, इंसान सब कुछ काट रहा है, छील छील के खाल जमीन की टुकड़ा टुकड़ा बांट रहा है। आज मैं केवल एक भाषण देने नहीं बल्कि आप लोगों को देश की सच्चाई दिखाने, जिम्मेदारी जगाने और चेतावनी देने के लिए खड़ी हूँ। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदी नहीं है। पर्यावरण हमारा जीवन है, यह हमारे दिलों में बसा है, हमारी धड़कनों में है, हमारे हर पल पल में है। जब हम सुबह उठकर ताज़ी हवा लेते हैं, जब हम हरे भरे पेड़ों के छाँव में सुकून महसूस करते हैं, यह सभी पर्यावरण की देन है। लेकिन सुनो सुनो सुनो, आज यह पर्यावरण खतरे में है और सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं, हम मनुष्यों से ही है। हम पेड़ों को काट रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि जो पेड़ जलाएगा वह खुद जल जाएगा, जो प्रकृति बचाएगा वही कल देख पाएगा। ना रुलाओ इस धरती माँ को, सुन लो इसकी पुकार, वरना नहीं देख पाओगे तुम कोई भी त्यौहार। अगर आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करे कि माँ पापा वो हरे भरे पेड़ पौधे कहाँ है, वह स्वच्छ नीला आसमान कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे आप? क्या कहेंगे कि आपने अपनी सुविधाओं के लिए उनका भविष्य छीन लिया? आज प्रकृति हमसे कोई विनती नहीं कर रही, बस थोड़ी सी गुजारिश कर रही है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। पर हम क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ा रहे हैं और फिर कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है। अगर हम आने वाले समय में ना समझें तो एक ऐसा समय होगा जहां भयंकर बाढ़, सूखा, बीमारियां और शायद एक ऐसा जीवन होगा जहां इंसान तो होगा मगर रहने के लिए प्रकृति का होना असंभव है। हम हमेशा शिकायत करते हैं कि सरकार को यह करना चाहिए, सरकार को वह करना चाहिए, मगर हम क्यों भूल जाते हैं कि हम ही सरकार हैं, हम ही सरकार हैं और बदलाव भी हम ही हैं। तो इसीलिए आज मैं आप सभी से ये वादा लेना चाहती हूँ कि जब भी आप एक पेड़ देखेंगे उसे केवल एक पेड़ नहीं अपना जीवन समझेंगे। जब भी आप पानी की बूंद बचाएंगे आप पानी की बूंद नहीं अपना भविष्य बचा रहे होंगे।
4: पेड़ लगाओ, शुद्ध हवा पाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। पेड़ लगाओ, शुद्ध हवा पाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।
5: पर्यावरण का रखे ध्यान,
6: पर्यावरण का रखे ध्यान,
5: तभी बनेगा देश महान,
6: तभी बनेगा देश महान।
5: पर्यावरण का रखे ध्यान,
6: पर्यावरण का रखे ध्यान,
5: तभी बनेगा देश महान,
6: तभी बनेगा देश महान।
5: धन्यवाद।
7: नमस्कार, मेरा नाम आराध्या राजपूत है और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक नारा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब तक रहेगी प्रकृति की शान,
6: जब तक रहेगी प्रकृति की शान,
7: जब तक रहेगी प्रकृति की शान,
6: जब तक रहेगी प्रकृति की शान,
7: तब तक सुरक्षित रहेगी हमारी जान,
6: तब तक सुरक्षित रहेगी हमारी जान।
7: धन्यवाद।
8: नमस्कार, मेरा नाम परीक्षा ठाकुर है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं आप सभी के समक्ष एक नारा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धरती माँ की सुनेंगे पुकार, मौसम में लाएंगे सुधार,
6: प्रकृति की गोद से ही सजेगा
8: आने वाले कल का सुंदर संसार। प्रकृति की सीख को अपनाना है, जलवायु को संभालना है, आने वाली पीढ़ी के हित में एक सुरक्षित भविष्य बनाना है,
6: एक सुरक्षित भविष्य बनाना है।
8: धन्यवाद।
9: सुप्रभात, मैं विनायक कक्षा 6 का छात्र आज आप सबके समक्ष एक स्लोगन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कटते रहे जो यूं पेड़ धरा के, कटते रहे जो यूं पेड़ धरा के, तस्वीर कुछ अजीब सी होगी, तस्वीर कुछ अजीब सी होगी। निकलोगे अगर दूर सफर पर कहीं, निकलोगे अगर दूर सफर पे कहीं, एक छांव तक नसीब नहीं होगी, एक छांव तक नसीब नहीं होगी। धन्यवाद।
10: छोटा संदेश बड़ा बदलाव, प्रकृति को बचाना सिर्फ फर्ज नहीं पहचान है, प्रकृति को बचाना सिर्फ फर्ज नहीं पहचान है, इसी में ही आने वाली पीढ़ियों का सम्मान है, इसी में ही आने वाली पीढ़ियों का सम्मान है। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे गांधी स्मृति वाटिका धर्मशाला में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। स्वर संजीव कुमार, संकलन उज्जवल कुमार, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से प्रसारित किया गया।
11: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण दिवस पर एक रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं और अब समय है कार्यक्रम युवा मंच का।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। युवा साथियों, हाजिर हैं कार्यक्रम युवा मंच के साथ और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। युवा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन हमारी होती है फिल्मी गपशप। हाँ जी, और इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज है 5 जून और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। युवा साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका पहला उत्सव 1973 में केवल एक पृथ्वी विषय के साथ आयोजित किया गया था। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक विशिष्ट पर्यावरणीय विषय का चयन करता है और एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक वैश्विक मेजबान देश को नामित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, सतत उपभोग और वन्य जीव अपराध जैसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। यह हमारे ग्रह की रक्षा और पुनः स्थापन के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करने और वैश्विक प्रयासों को एकजुट करने का एक सशक्त मंच है।

0: युवा साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। युवा साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज 5 जून है और 5 जून का ये दिन मनाया जा रहा है पर्यावरण दिवस पर। जी हाँ, पर्यावरण आज प्रदूषित होता जा रहा है और हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम सभी इस पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि धरती बहस नहीं करती, समझौता नहीं करती, वह संकेत भेजती है। बढ़ता समुद्र स्तर, भयंकर जंगल की आग, लू, पिघलते ग्लेशियर, ये सभी हमें ये संकेत दे रहे हैं कि हमारी जो धरती है उसको खतरा है और हमें उसे उस खतरे से बचाना है। और हम इस खतरे से अपनी धरती को किस तरह से बचा सकते हैं? हम बचा सकते हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखकर, पर्यावरण को एक नई अच्छे साफ सफाई देकर, पर्यावरण को प्रदूषित ना करके और पर्यावरण में नए नए पौधा रोपण करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। और भी बातें हम आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे ये संदेश।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
2: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
2: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
2: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम है युवा मंच और आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। युवा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है शुक्रवार और शुक्रवार को हम लगाते हैं आपसे फिल्मी गपशप। जी हाँ, आज के दिन आपको हम बताते हैं कि कौन सी फिल्में आने वाली हैं 2026 में और जून के महीने में। जी हाँ युवा साथियों, 2026 में कई बड़ी हिंदी फिल्में आने वाली हैं, जिनमें कॉकटेल 2, वेलकम टू द जंगल और मैं वापस आऊँगा काफ़ी चर्चा में हैं। शाहिद कपूर, कीर्ति सैनन और रश्मिका मदाना की कॉकटेल 2 का फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच, और आज के इस कार्यक्रम में हम लगा रहे हैं आपसे फिल्मी गपशप। युवा साथियों, जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि नई रिलीज फिल्में बहुत सारी आने वाली हैं, उनमें से कुछ और हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे, जिनमें से है जवानी तो इश्क होना है, ये है वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर की जो फिल्म आने वाली है बहुत ही जल्द जून के महीने में। इसके साथ साथ बंदर अनुराग कश्यप की ये फिल्म है और इसमें भूमिका निभा रहे हैं बॉबी देओल, ये भी फिल्म जून के महीने में भी आ सकती है आपकी टीवी स्क्रीन्स पर। इसके साथ साथ माँ बहन माधुरी दीक्षित और तृप्ति दामिनी की अभिनीत ये फिल्म है और मैं वापस आऊँगा ये फिल्म है दिलजीत दोसांझ की, जो बहुत जल्द आपकी टीवी स्क्रीन्स पर दिखने वाली है। तो और भी आपसे फिल्मी गपशप हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। युवा साथियों, अब और आपसे थोड़ी सी फिल्मी गपशप लगा लेते हैं और आपको बताते हैं कि रणवीर सिंह का धमाका अभी भी जारी है। जी हाँ, रणवीर की एक्शन फिल्म धुरंधर द रिवेंज अब भी काफ़ी चर्चा में है। फिल्म की पॉपुलरिटी और स्ट्रीमिंग को लेकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त डिस्कशन चल रहा है। इस फिल्म को देखने के लिए सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और फिल्म को बहुत ही अच्छे जो है रिव्यू भी मिल रहे हैं। तो और भी हम इस संबंध में आपसे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे किसान व बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी। 6:35 का समय रहेगा कार्यक्रम मौजा ग्राइंडिया का। सात बजकर 10 पर विशेष कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 8:00 केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की दिशा में उठाए गए अभूतपूर्व कदम विषय पर आकाशवाणी शिमला से ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 8:30 पर प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष में सेवानिवृत्त सूचना जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक श्री मेलाराम शर्मा से एक भेंट वार्ता भी आकाशवाणी शिमला से ही रिले की जाएगी। 10:00 चिट्टा मुक्त जीवन और स्वच्छ पर्यावरण पर रिज शिमला में आयोजित मिनी मैराथन समारोह की रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। 9:15 पर आप सुनेंगे एक ही फिल्म के क्रम में फिल्म संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे कारवां सुरों का और 10:30 पर पुरानी फिल्मों से गीत सुनिए चित्रपट संगीत में। 8:00 में प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रम और अब आपको नजर डलवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली से रिले होने वाले कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी शिमला से 6:07:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:00 को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: ना, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर, स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त जीवन विषय पर आयोजित मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध वायु से समृद्ध राज्य है और विकास कभी भी पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त समाज ही उज्जवल भविष्य की आधारशिला है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। आज हमें ये समझना चाहिए, पृथ्वी को हमने माँ माना और अगर माँ है तो हम हैं। उसके अस्तित्व के कारण से ही हम सभी यहाँ पर हैं। हमारे सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब किस प्रकार से अपनी मातृभूमि और माँ की रक्षा करें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, की रक्षा करें। दूसरा, बढ़ते हुए जो नशे बचाने के लिए बच्चों ने और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं इसके लिए सभी ऑफिसर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयास के कारण से ऐसा संभव हो सका।
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में सभी वर्गों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे उत्तर भारत को स्वच्छ जल और शुद्ध वायु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस कारण इसे लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी से पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आग्रह भी किया।
2: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। साफ पानी, शुद्ध हवा, हमारे जंगल और नदियाँ हमारे जीवन का आधार है। इसलिए कुदरत के इन अनमोल उपहारों को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह मिशन सिर्फ एक दिन तक ही न सीमित रहे, बल्कि पर्यावरण की रक्षा हम सबकी जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, पानी बचाए और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। प्रकृति की रक्षा यानी हमारी स्वयं की सुरक्षा है।
0: इस बीच मुख्यमंत्री ने ओक ओवर शिमला में चिनार वृक्षारोपण अभियान के पहले चरण का शुभारंभ भी किया। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में हुए स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा को मिले भारी जन समर्थन से कांग्रेस की राजनीतिक विदाई यात्रा शुरू हो चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से अब छुटकारा चाहती है और आने वाले समय में ये जन आक्रोश और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस इन चुनावों में अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय जनता के फैसले को ही छोटा साबित करने की कोशिश कर रही है। चंबा जिला में जनगणना 2026 के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए लगभग 1400 अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। चंबा के उपायुक्त व जिला जनगणना अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने जिले के सभी नागरिकों से जनगणना के दौरान सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं व जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ पात्र व्यक्तियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके।
3: जिला चंबा में दो भागों के अंदर जनगणना हमारी होगी। जो फर्स्ट फेज है सितंबर के अंदर, वहाँ पे जो हमारे सर्द इलाके हैं जिसमें लगभग 1050 रेवेन्यू विलेजेस आते हैं, वो कवर किए जाएंगे, और जो हमारे बाकी विलेजेस हैं दे विल बी कवर्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी अलोंग विद रेस्ट ऑफ द स्टेट। मेरा निवेदन रहेगा जिला चंबा के सभी वासियों से कि आप हमारी पूरी टीम का इसमें सहयोग करें, सही जानकारी अपने एन्यूमरेटर को दें। तो अगर हम सही से इन्फॉर्मेशन देंगे, सही जानकारी भरेंगे, तो बेटर प्लानिंग हमारा देश कर पाएगा।
0: राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल, समावेशी व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अन्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल विकास प्राथमिकताओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। समझौते में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई भैन जो सारिया श्रोतियों जो संझ दी सा बेला टियाले ते किसान मित्र दी दो हाथ जोड़ी के राम राम कने किसान साथियों अज चंचलो जी मेरे सोगी हैं चंचलो जी राम राम
1: राम राम किसान मित्र जी कने प्यारे प्यारे किसान भाइयों जो मेरी तरफा ते भी प्यार भरी नमस्ते राम राम
0: जी। तो सबसे पहले तो अहाँ दे सारे जितने भी स्रोत हैं अहाँ जो सुना करते हैं तेना सारे जो पर्यावरण दिवस दियाँ ढेर सारिया जड़ियाँ सह शुभकामनाएं हैं ना।
1: हाँ जी
0: कारण देखा अज अहाँ भी टियाले पर बड़ी धूमधाम कन्ने अहाँ पर्यावरण दिवस अज इतू अहाँ मनाया मना करते हैं ना कने पर्यावरण के उपर भी अहाँ तुहां कने बड़िया सारिया जड़ी से गल्लबात अहाँ तुहां कने जड़िया सांझा अज अहाँ करनिया ने कि अज अहाँ पर्यावरण दिवस का जड़ा मनाने का एक अहाँ का एक मेन उद्देश्य जड़ा से क्या है ना।
1: हाँ जी पर सारे ते पहले दिखा किसान मित्र जी हाँ अपने किसान भाइयों ने जड़ी गल करनी है सह कृषि कार्य च आधुनिक तकनीकों का तकनीक का उपयोग
0: जी। हाँ जी
1: तो

0: जड़े से ड्रोन का प्रयोग अपने खेतों से जड़ा सा छिड़काव करने वास्ते करा दे,
1: हाँ जी
0: ता इस ने ड्रोन की सहायता ने होना दे किसान भाइयों का समय भी बची जाता, कने सोगी सोगी खेतों की निगरानी भी हो जाती ना।
1: हाँ जी
0: क्योंकि पहले चलो किसान भाई खेतों च दवाई का छिड़काव करते थे, तो तेना जो एक एकड़ च दवाई का छिड़काव करने वास्ते लगभग 3 घंटे जड़े से लगी आते
1: हाँ
0: थे,
1: जी हाँ जी जी
0: पर हुण ड्रोन की सहायता ने एक काम जड़ा सा 10 मिनट च पूरा हो जाता, कने जड़ी किसानों की सेहत है इस पर भी इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पाता। कने इस दे सोगी गल की जाए ड्रिप सिंचाई दी, तां इस दी सहायता ने भी 70% पानी दी बचत हुंदी है, कने बूंद बूंद पानी जड़ा है से सीधे पौधे दी जड़ा च लगदा, जिसने पैदावार भी जड़ी से अच्छी हुंदी है,
1: जी
0: खासकर टमाटर शिमला मिर्च जो काफ़ी फायदा जड़ा सा इस आधुनिक तकनीक ने हुंदा है। कने इस दे बाद गल की जाए मोबाइल ऐप दी, तां हुण किसान भाइयां जो मौसम दी जानकारी मेघदूत ऐप च 5 दिन पहले ही मिली जाती है कि बरखा होनी है, कि मौसम साफ होना या फिर लू वगैरह चलनी, तां किसान भाई जन से पहले ही सुचेत हो जाते हैं। इस दे सोगी किसान सुविधा ऐप दे माध्यम ने मंडी दा भाव, बीज दी किस्म, कने बीमारी दी ये फोटो भेजी के किसान भाई जड़े से घरे बैठी के इसे कृषि विशेषज्ञ ते सलाह जड़े से ले लेंदे हैं। गल की जाए पोली हाउस दी, तां पोली हाउस च किसान भाई दिसंबर च शिमला मिर्च उगाई करी मुनाफा ले सकते हैं, कने हिमाचल सरकार जड़ी से इस पर 85% तक का अनुदान भी दिंदी है।
1: जी बड़ी बांकी जानकारी चंचलो जी तो अहाँ के सुनने तक बड़ी पुजाई है। देखो अहाँ के जड़े किसान हैं से अजकल नवी नवी जितनी भी तकनीक वो कर दी
0: आधुनिक तकनीक, हाँ
1: उन्हें
0: जी
1: अपने खेतों में अपना दे ना, जी तो दसिया कि ड्रोन करने ही सारा काम हो करता है, जी कोई रसायन का छिड़काव करना है कहना, हूँ तक घर बैठे ही अहाँ के किसान ड्रोने ने दिख लेंगे कि अहाँ के खेतों में कोई कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ करता है ना,
0: हाँ जी
1: जाने की जरूरत भी नहीं जी घर से, जी ड्रोन छड़िया कहना इस पूरा पता तो नहीं, घर बैठे लगी जाता कि कोई जुआड़ तो नहीं होगा, कोई जंगली जानवर खेतर तो नहीं आई है ना, तो
0: हाँ
1: देखा कितनी आसानी जड़ी से हूँ अहाँ के किसान साथियों जो खेती बिच भी हुई हो है, तां औला औला दिखा और मतियां सारियां जड़ियां आधुनिक तकनीकां अहाँ ताइयां जड़ियां से और आई जानी है कहना, हाँ जो चाहिए कि जड़ी भी नोइया नोइया ये तकनीक वो कर दी है ना जो वहाँ जरूर अपना ना।
0: बिल्कुल, कने इस ड्रोन की सुविधा का एक फायदा ये भी है अहां किसान भाइयों वास्ते कि चल अहां किसान भाई रसायनिक खादा का छिड़काव अपने खेतों से करते तो इसका तिना की सेहत पर भी इसका प्रभाव पाता था ना, तो
1: जी
0: हुण ड्रोन आने ते अहां किसान भाइयों की सेहत भी जी है सै ठीक रहनी, कने ज़्यादा तो ज़्यादा काम तिना अपनी खेती च करने।
1: जी ता सुनते न एक जड़ा सा लोकगीत, कहने लोकगीत के बाद फिर सुननी है एक अहम भेंट वार्ता।
0: जी

0: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नोई ते नोई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे ओ अहां दे कृषि विज्ञानिका द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियां सोकी कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच एक उन्नत किसान अज अहां दे टियाले पर आए होए ने, करदे ने इना कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी,
0: जी अपना नाम दस्सा।
1: अश्विनी कुमार जी।
0: जी अश्विनी जी, घर कुतुन तुहां दे?
1: घर जी मेरे
0: पशु पालक भाइयें या अहां दे किसान साथियें जो तिन्हां दे व्यवसाय कन्ने कोई जड़ा सा तिन्हां जो जड़ा सा जानदा कन अपने इलाके विच तिन्हां अपने इसी कम्मे कन्ने तिन्हां अपनी एक पहचान जड़ी से बनाई हो ना। किन्नी बकरियां पालियां तुहां?
1: भाजी पिछली बार मेरा थोड़ा फार्म तैयार नहीं होया हां, तो मेरी कुछ बकरियां मर गई 5-7, पर मैं बीमा वगैरह कराया था, मैं बची गया।
0: अच्छा,
1: पर इस बार फिर हुई 20 की बकरियां।
0: अच्छा,
1: बकरियां घट है ते बकरे ज्यादा है। तोता परी?
0: तोता परी।
1: हां जी, बीटल।
0: बीटल है ना। हां जी, लंबे कन्न वाली है कि छोटे वाली?
1: हां जी, लंबे कन्न वाली।
0: हां, एक ता हुंदे नहीं है छोटे कन्न वाली, इने कन किन दे लंबे लंबे कन्न हुंदे
1: ने भाई जी? लंबे कन्न वाली दूध भी 2-2.5 किलो दी।
0: कुतो ले लई है ये?
1: ए भाई जी, इने शौक पैदा होया है कि टोकरी वाले ते लिया है बकरा।
0: अच्छा,
1: फिर एक बकरी ले है ता अगे फिर शौक ही बद्दा गया।
0: जड़े मोटरसाइकिल पर बच्चियां लेके चले हुंदे बेचना पंजाब कन बाहरी राज्यों ते चलो हुंदे ने बेचना।
1: हां जी, फिर शौक बनदा गया फिर हुन जाई तैयार हुई है।
0: यानी कि एक छेलू लिया है शुरू चना?
1: हां, एक बकरी ले
0: कने एक बकरी ले ही है ना। घर च गांदे बकरियां की बन्नी हट दे
1: बेला मैं ता चगाई भी लेना कने ज्यादा घरे दे समान लेंदे
0: कि छड़ दे बणियो कि घरे दाना पानी पाना
1: देना घरे दाना नेड़ा तेड़ा छड़ लेंदे थोड़ी देर ना, बाकी घरे समान लेंदे। लेडी जी मेरी घरे वाली समान लेंदे, बच्चे समान लेंदे।
0: अच्छा,
1: मैं और भी काम कर लेना करना।
0: अच्छा अच्छा, हां जी। तोहां जिक्र कीता कि बकरी 1.5 ते 2-2 किलो तक दूध दिंदी है ना?
1: हां जी हां जी।
0: ते जिए बच्चियां दी गल कीती जाए ता कितने बच्चे दे दिंदी है जिए बकरी?
1: 2 बच्चे दिंदी जी
0: लगभग,
1: साले दे 2 वार सुणा ना,
0: कई वार 3 भी दे दिंदियां ना।
1: 3 भी दे दिंदियां जिहड़ियां अपनियां लोकल बकरियां देसी हुंदियां ना, दूध घट हुंदा उहनां थल्ले।
0: हां, कने देखे जाए तो तिना जो थोड़ा चंगाने का भी बड़ा
1: मुश्किल हो जाता है, दूध पूरा नहीं होता
0: है। कई बार तो पता भी नहीं लगता कोई चुंगी जाता है, कोई भुखा ही रही जाता है। इससे 2 ठीक ना ना?
1: हाँ जी हाँ जी, 2 बच्चे बढ़िया।
0: अच्छा,
1: बकरी बड़ी नस्ल की हो ना, जब बीटल नस्ल की हो तो 2 बच्चे बड़े बढ़िया पड़ जाते।
0: तो इस तरह जी जिक्र किया जाए तो जी ब्रीडर वगैरह तो रखिया?
1: ब्रीडर भाई जी इस टाइम मेरा 1 क्विंटल तो ऊपर है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: 1 क्विंटल दा जड़ा सा छेलू है तो हां बाद जड़ा ब्रीडर तो हां रखिया ना?
1: हाँ जी हाँ जी, घर दा तैयार कीता मैं आज 15 महीने तो।
0: जी ये जिक्र किया जाए तो जैसे जी एडा बड़ा तो हां छेलू पाले या इतना बड़ा ब्रीडर है, तो सच दला खाना पीना दा खान पान लग गया कि बकरियां सोगी है?
1: बकरियां सोगी खवांदे उसी, पर वो सीजन दे ना जिद्दां ऋतु मां चेंज होनी है, अलग अलग खाना खवाना पंदा ना।
0: अच्छा,
1: एक जिया खाना नहीं खवाना पंदा ना, जिद्दां गर्मी है गर्मी च अलग सर्दी च अलग।
0: तो जो काफी टाइम हुई है बकरियां पालदे था, कितने की बड़े बड़े बकरे जड़े से तो? हां
1: भाई जी, पहले इस बकरे दा प्यो बेचया हां मैं 50 किलो दा होया।
0: अच्छा,
1: मीट 50 किलो है ओदे च?
0: हां,
1: मतलब क्विंटल दा हो गया हा। ए बकरा या एक इस टाइम 1 क्विंटल 30 किलो दा है जिंदा।
0: अच्छा,
1: 70 किलो मीट है दे।
0: हां जी हां, तो जीका जिया इतना बड़ा जलू बकरा जिये बेचना था, खरीदार मिल जंदे?
1: खरीदार मिल जंदे भाई जी।
0: ये लोकल एक ही कुछ बाहर भेज जंदे?
1: लोकल भाई जंदे अपने बंदे,
0: क्योंकि ये तो कुछ बड़े स्तर पर ही जिया कुछ बड़े बाजारा विच ही है, जितु मांग होदी कट्टे जाना ना।
1: हां जी, ना नौकरी
0: नहीं जंदे, मांस फिर बिकना भी चाहिदा ना।
1: हां जी,
0: इस टाइम कितने बकरे ना?
1: इस टाइम भाई जी 12 बकरे ना।
0: खरे बड़े बड़े होयो?
1: हां जी हां जी।
0: इना दा क्या खुराक क्या पांदे तो? हां जी, गोड़ पारनी
1: भाई जी, इन की सोयाबीन पानी, जौ पाने, फिर चने
0: रोज ही पाने?
1: रोज ही पांदे चने, मां
0: ये सब पीती होंदे या दड़ी
1: मिक्स कर लेने पी लेने, फिर इदे च सोडा पाना, नमक पाना, फिर गुड़ पाना, फिर इदा मिक्स करके ना फिर खवाना नहीं।
0: अच्छा, मिक्स करके तो हां इन सारी चीजें जो कुछ इया कि ड्रम में?
1: हां, एक ड्रम च पाई लेने
0: कट्ठे करके। हां जी, फिर 10-15 दिन खवांदे रहे ना?
1: हां, फिर तो पाई के महीना पर खवांदे रहे जितना मर्जी, दोबारा फिर बनाई ले।
0: कितना के दाना पाना पौंदा है वजन हिसाब से करना?
1: भाई ये बड़ी नस्ल के बकरे होंदे ना, उतना ही खांदे अपने हिसाब दा, थोड़ा ही खाना ना।
0: अच्छा,
1: अपने आप ही हट जांदे साइड च। अपनियां जड़ियां लोकल बकरियां नहीं, तां जब तक पेट फुल ना फट ना जाए तक खानी रहनी है।
0: अच्छा,
1: ये नहीं है, ये बड़े अरमान ना खाते, थोड़ा खाते, इन्हें ना खाना है उतने 100 ग्राम 200 ग्राम।
0: ते प्यागा पानी खराब की संजा
1: शामी सवेरे खराब कर दी
0: है और दे टाइम में?
1: हां शामी बस।
0: हाँ कहने ऐसा मन नहीं जाता ना कि जियां अनाज वगैरह खुआई के बकरियां जियां पानी पूनी पियाने दा परहेज होंदा ना।
1: अपने आप कई बार पी भी लैनी है ना
0: हाँ
1: तो फिर खराब कर दा।
0: बाकी जियां नमक वगैरह कियां दिंदे इसी चीज
1: नमक
0: अलग
1: इहदे च मिक्स कर देना।
0: अलग तीन देना ना।
1: नहीं, इहदे च मिक्स कर दा। 40 किलो है ना,
0: हाँ
1: जिदा 40 किलो दा गाला होया तुहाडा,
0: हाँ जी
1: तां उहदे च कोई 2 किलो पाइता नमक। हाँ,
0: अच्छा
1: फिर
0: अच्छा
1: सोडा पाइता भी थोड़ा, 200 ग्राम सोडा है, पचाई जांदा ना फिर।
0: का इन्हें राती भी तुहां को पांदे
1: राती नहीं पांदे, दिने पांदे।
0: जड़ा चुगे आए है ना
1: हाँ जी हाँ जी
0: चुगी लिया बना पेट भरी लिया ना।
1: हाँ, जड़ा दिन खाई ले वही।
0: बाकी ने रहने ताइया क्या बनाया जी
1: रहने
0: हाँ
1: ताई भाई जी, इन्हें ना अजय पूरा मेरा जगाड़ नहीं होया, ये बताना है। मैं थोड़ा ही है, मैं एक बनाया जिदा बरामदा पर वगैरह बनाया बाहर ते अंदर रात नू उड़ने ताई, तो ज्यादा हूं मैं बधाने ले बैठा,
0: हाँ
1: बधाना है वो जिदा ना बदे जाना तो उदा बधाई जाना। फिर
0: खुली हवादार जेड़ा चाहिए बहने
1: फिर
0: ने।
1: हाँ बाहर हवादार चाहिए ना।
0: हाँ कहना बाकी जियां जिसी बोलते ना बकरी जड़ी है ये 22 प्रकार दी जड़ी बूटियां खांदी है ना। कहना 22 प्रकार दिया जेड़े सह बीमारियां इस दुध जेड़ा सा दूर भगांदा है ना।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो जियां तुहां दस्या है इतना दुध होंदा दुध भी तुहां बेचिया।
1: दुध बेचते नहीं जी,
0: अच्छा अच्छा
1: बच्चे पै जाना, पर जरूरत पै जाए पई जाए, जिया पई कोई बीमार शमार हुए ले
0: हाँ
1: जाते हो।
0: हाँ चलो ये भी आपसी जियां भाईचारा भी
1: हाँ
0: होंदा है ना।
1: भाईचारे च ले जाते
0: कहना
1: बंदे।
0: अगर को उसकी जरूरत है ता ही बेचारे को कोई उम्मीद
1: हाँ
0: करी
1: जी हाँ
0: आए
1: जी,
0: होंदा ना कि अश्विनी हो रहा जेड़ा सा दुध मिल
1: दुध
0: सकता
1: मिली जाता है।
0: है ना। बकरी पालन का काम तो हाँ करा कर दे इस विच जियां कदी कोई परेशानी वगैरह भी होंदी जी कोई बीमार बमूर तो नहीं हो
1: बीमार
0: जाती।
1: वगैरह होनी है विच, पर मेरा सर्कल थोड़ा ठीक है स्टार्टिंग दे विच ही।
0: हाँ जी
1: अपने जेडे अरस दे डॉक्टर है ना,
0: हाँ
1: डॉक्टर ते डॉक्टरनी वगैरह बहुत अच्छी हैं, उन्होंने पहले ही बीमा वगैरह करते हैं।
0: एक बकरी का क्या बीमे हिसाब होंदा
1: एक बकरिया वो देंदे है 5,000 रुपया,
0: कहना फीस कितनी लेंदे है बीमे करने टाइम में
1: फीस 150 रुपया
0: साले
1: लेंदे
0: दी।
1: साले दी। उन्होंने 150 रुपया कट्टिया मेरे सारिया बकरियां का, 10
0: अच्छा
1: बकरियां बीमा किया,
0: अच्छा
1: तो वो मेरिया मरिया भी तो पैसे देते मैं
0: चलो
1: उन्होंने।
0: थोड़े बहुत मिली ये है
1: हाँ
0: ना। बाकी जी घरेलू स्तर पर ही कुछ ऐसा आई जा तो हम आपको भी लगा लेते हो ना टीके वगैरह है ना
1: हूँ तो थोड़ा नॉलेज भी हुई है ना,
0: है ना।
1: ज्यादा तो कांगड़े दे भी तुम्हें पता भी 100 बूटियां है, बंदा घिसदा पिटदा रहता तो फिर पता लग जाता
0: हाँ
1: क्या
0: जी
1: खुआना
0: हाँ
1: क्या नहीं खुआना
0: बिल्कुल हाँ जी हाँ
1: मौसम के हिसाब ने। नए
0: अच्छा
1: नए बंदे के तो मुश्किल हो जाते ना,
0: हाँ जी
1: धीरे धीरे धीरे पता लग जाता ये बीमारी चलनी है, ये बीमारी चलनी है, तो फिर 50 दवाइयां घर निकल जानी है।
0: हाँ। बाकी कोई बकरी और कोई खास तो नहीं कोई चीज कोई खुआने वाला होता जी जिससे तो पाचन शक्ति वगैरह बनी रहा है ना।
1: नहीं, ज्यादा नहीं कुछ भी।
0: अच्छा ये है कि बढ़िया देना था घा पट्ठा जड़ा से
1: हाँ
0: होना
1: घा पट्ठा साफ सुथरी जगह हुए।
0: बहने इतने है ना
1: हाँ जी हाँ जी,
0: कहना पीने पानी खूब
1: पानी
0: जड़ा
1: पीने साफ हुए।
0: जी। तो हाँ जिक्र किया कि इस वेले जड़ा तो हाँ वाल है ब्रीडर है सह क्वांटल दे लगभग ये इसकी ज्यादा है
1: इससे
0: ना
1: ज्यादा है
0: सत्या मारा वगैरह तो नहीं
1: नहीं
0: पौंदा।
1: पौंदा हमारा, वो तो बड़ा शरीफ है,
0: अच्छा
1: तुम बैठी जाओ पाओ ऊपर कुछ नहीं
0: अच्छा
1: बोलता,
0: हाँ तो इतना जियां जिसे बोलते हैं ताकतवर
1: बहुत
0: जैसे
1: ताकतवर है,
0: माड़ा मोटा था सा जियां
1: मारदा नहीं।
0: बंदा वे भी अंग वाला नहीं चली पोना ना।
1: हाँ बैठी जंदे बंदे, मैं ही बैठी जंदा।
0: अच्छा
1: हाँ
0: तो इसी ब्रीडर दिखने था बड़े दूर दूर दे जड़े सा हाँ पशु
1: हाँ
0: पालक भाई होंदे होने
1: हाँ
0: हैं।
1: बंदे होंगे दूर, सलाह भी लेंदे बंदे जड़े
0: अच्छा
1: पालते हैं, सलाह भी लेंदे कि
0: हाँ
1: कियां रखनियां बकरियां क्या करना, तो सलाह तो देना पौंदी फिर।
0: देखा ये अपने अनुभव होंगे जितने यहाँ कुछ ये बंड के
1: वही
0: ताई
1: ना।
0: कुछ की भला होना है
1: हाँ जी हाँ जी, कोई बच्चा लेके जाता जो कुछ लेके जाता तो 50 बारी पूछता यार मैं क्या खवा, फिर फोन दे भी पूछते भाई
0: हाँ
1: हूं क्या खवा हूं क्या खवा, तो
0: अच्छा
1: दसना तो पौंदा।
0: छोटा बच्चा अगर कोनी जिये पालने वास्ता लेना था कितने दिन तो दे जी थोड़ी तो दी बकरी सुई पई है पली आप दिन वाले तो
1: भाई ये
0: हाँ।
1: बच्चा कम से कम 4 महीने चाहिए, 3 महीने
0: अच्छा
1: तो दूध पींदा ही है बच्चा, 3-4 महीने,
0: हाँ
1: फिर माँ का दूध नहीं मिलेगा तो फिर वो बच्चा ग्रोथ भी कितना करेगा, बिना दूध तो गर्मी आई जानी अंदर,
0: हाँ जी हाँ
1: फिर डॉक्टर को लेना तो
0: ओबरे
1: फिर
0: दूध नहीं है ना
1: नहीं फर्क पौंदा ना।
0: मतलब ऐसा डाल ही खाना पैरू लगी पवे है ना
1: भाई जी माँ का दूध ना 100 बीमारियां मारता है।
0: बिल्कुल हाँ जी हाँ ठीक लगे तो हाँ जी यानी कि डाली खाना अगर हाँ छेलू पैरू लगी पवे
1: हाँ जी हाँ जी
0: इससे बाद अगर हाँ चाह तो खरीद सकते हैं ना
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो किन्ना किन्ने तक आई जाता अगर कोई लेना हुआ तो हाँ ते
1: चार
0: या
1: महीने तक बच्चा ऑटोमेटिक 10-12 हज़ार का हो जाता, 10-12 हज़ार का बच्चा हो जाता, 4 महीने का बच्चा 15-16 किलो तो हो जाता,
0: यानी कि ये
1: फिर
0: तो फिर वजन दे पैसे
1: वजन
0: हुए
1: दे
0: है
1: पैसे हो
0: ना
1: ना।
0: बाकी नहीं हुए है
1: इस तो
0: ना।
1: छोटा बच्चा कोई पाले भी है ना तो पढ़ना नहीं, उन टाइम ज्यादा लगना, जिन्ना बच्चा बन गया होगा ना बनी ही होगा थोड़ा, तो फिर वो अगे ग्रोथ ज्यादा होनी होगी, जो माँ का दूध देने मिलेगा तो फिर बच्चे ने चलना भी कहीं।
0: जियां तो हाँ जल अपना जियां जल भी तो हाँ अपना कोई जियां बकरी बेची है या छेलू बेचे है या सही है चिदा भार दा अंदाजा इन्हें लगांदे
1: लगी
0: अंदा
1: जाता बाहर
0: कि कोई
1: दंदा,
0: तोलने तालने दा भी आया कुछ।
1: नहीं लगी जाता बाहर दंदा अंदाजा ना,
0: हाँ
1: पता लगी जाता। आहां भी है ना फोना भी दिखते रहने ना,
0: हाँ
1: तो फोना भी दिखते रहने, तो सब फोना दे विच ना बड़े बड़े फार्मा विच सब
0: हाँ
1: मीटर दे कन्ना नाप दे, छेनू में लंबाई चौड़ाई
0: अच्छा
1: नापी के ना ना।
0: फीते ना
1: हाँ फीते ना पूरा पूरा दस देना, तो एक
0: हाँ
1: दो बार अही भी नापिया तो पूरा पूरा ही आंदा।
0: अच्छा
1: हाँ जी,
0: यानी कि लंबाई नापनी की हाइट।
1: आ लंबाई नापनी ते पिछले हिस्से दी गोलाई
0: अच्छा,
1: पूरा पूरा
0: यानी
1: आई
0: कि
1: जाता।
0: फिर तो हमारी की है
1: हाँ
0: ना।
1: जी, हाँ जी,
0: हाँ दिखा, ये भी तो हाँ बड़ी अच्छी गल जेड़ी सा दसी
1: चलो
0: है।
1: पूरा पूरा आई जाता।
0: हाँ, केवल नहीं भी पता लगता, ठगी भी आंदे
1: हाँ जी,
0: के
1: हाँ
0: ही है
1: जी,
0: ना। नहीं कुनी आके दो ठार किट्ठे बेचे ना, चार कई बारी मजबूरी विच बेचना भी पौंदे है
1: हाँ
0: ना,
1: जी,
0: पैसे धेले दी चलो तंगी आई जाती है। यानी कि सा ठगो नहीं तो सब इं जागरूक हो जान तो तेना जो जरा सा पूरा पता लगी जाना ना।
1: हाँ जी, हाँ जी, फीता मारना ना, फीते दे पूरा आ जाता, 1 किलो 2 किलो वजन घटता वधदा है,
0: अच्छा
1: बाकी नहीं वधदा। हाँ
0: अच्छा
1: जी,
0: जी अश्वनी जी, अहां दे जेड़े नौजवान युवा साथी है ना, उन जे तो हां जेड़ा सा क्या संदेश देना चाहेंगे कि सभी किया अपना काम कार करी कि अपना रोजगार चलाई पान।
1: भाई जी, मैं तो यो बोलना कि मैं भी बाहर नौकरी की,
0: अच्छा
1: 15-16 साल नौकरी की बाहर, मशीन चलांदा हमें जेसीबी,
0: अच्छा
1: फिर दूजे वाल काम करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। अपना घर बंदा काम करे ना,
0: हाँ जी
1: उस काम दे कन्ने साढ़े घर दे बिजी हो जाते,
0: हाँ जी
1: बच्चे बिजी, जिन्ने च 5 मैंबर तो 5 मैंबर हेल्प कर दे एक दूजे की,
0: हाँ जी
1: तो काम वही करो जेड़ा घर बैठ के हो जाए मिल के, तो काफी फायदा मेरे को दिखाई दिया ना।
0: हाँ जी
1: घर में बैठ के खेती बाड़ी करनी वो अच्छा है, बाहर भटकने से,
0: हाँ जी
1: फैक्ट्रियों में लगने से सबसे अच्छा है घर में काम करना।
0: अश्विनी जी, अपने खेती बाड़ी के अनुभव तो हाँ अहाँ करना साझा किए, तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। किसान भाइयों, तो इस ते बाद गल करनी है कांगड़ा सब्जी मंडी दे थोक भाव दे बारे च। तो सारे ते पहले गल कीती जाए आलू दी, तो अज आलू रिया 8 ते 12 रुपए प्रति किलो,
0: जी
2: प्याज रिया 24 ते 25, टमाटर 16 ते 18, लहसुन रिया अज 120 ते 130 रुपए प्रति किलो, अदरक भी अज 120 ते 130 रुपए किलो ही रिया कांगड़ा सब्जी मंडी च। कने गल कीती जाए शिमला मिर्च दी, तो शिमला मिर्च रही अज 40 ते 45, अरबी रही 30 ते 32,
0: हाँ
2: कन्ने
0: जी,
2: खीरा रहा 16 ते 30, मटर 60 ते 65, फुलगोभी रही 35 ते 40, बंद गोभी 12 ते 14, बैंगन 25 ते 26, कद्दू रहा अज 12 ते 14, मूली 15 ते 20, टिंडा रहा अज 18 ते 20, पालक 25 ते 30, हरी मिर्च 35 ते 40, कन्ने धनिया रहा अज 75 ते 80 रुपए प्रति किलो।
0: जी
2: कन्ने अज गल की जाए तोरी दी, तो अज तोरी रही 25 ते 30, भिंडी रही 22 ते 25, घीया 15 ते 25, कटहल 50 ते 55, करेला 18 ते 25, फ्रांस बीन 80 ते 100, गाजर 25 ते 30, मशरूम रही अज 150 ते 160 रुपए प्रति किलो। कन्ने गल की जाए फलां दी, तो सेब रहा 120 ते 140 रुपए प्रति किलो, केला रहा प्रति दर्जन 40 ते 50, अनार 120 ते 130, अनानास 40 ते 50, अमरूद 90 ते 100, मौसमी भी अज कांगड़ा सब्जी मंडी च 90 ते 100 रुपए प्रति किलो ही रही, पपीता रहा अज 40 ते 45, खरबूजा 20 ते 30, कन्ने नींबू रहा अज 70 ते 80 रुपए प्रति किलो।
0: जी, तो ये तो थे किसान साथियों कांगड़ा सब्जी मंडी दे थोक भाव। कने दिखा अगर अहाँ जो भाव पता होंगे ना, तो अहाँ जो अहाँ घर बैठे अहाँ जो ये पता लग सकता कि अहाँ कुछ मंडी विच जड़ा सा अपना उत्पादन भेजना है ना।
2: हाँ जी
0: अजकल किसान जागरूक है, कने तेना जो घर बैठे पता लगा करता कि इस मंडी विच ये भाव चल रहा, उतो ये भाव है। कने किसान पूरी तरह जड़ा सा जिसी अहाँ बोलते ना, तेने कोई बंधन नहीं है, जितों तेने ठीक लगा वो तो जाए किसे अपने उत्पादन जो बेची सकते हैं।
2: जी कन्ने इस दे बाद दिखा किसान मित्र जी, किसान भाइयों का हाँ थकावट भी दूर करनी होंगी, तिना का तनाव भी घटाना होंगे। कन्ने बोलते हैं
0: हाँ
2: कि जेडे हाँ दे लोक गीत होंगे, हाँ दे जेडे गीत संगीत ऐसा तनाव जो भी घटाते, कन्ने थकावट जो भी घटाते,
0: जी,
2: तो इस करके हाँ फिरी ते चलना एक प्यारे दे लोक गीत की तरफ, कन्ने सुनना है लोक गीत।
0: जी।

किसान भाइयों इस प्यारे दे लोकगीत दे कन्ने ही किसान वाणी कार्यक्रम होने तू मुका दा जाने ते पहले दस दिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिया बिपिन कुमार कार्यक्रम प्रस्तुति जतिंदर पाल सिंह कन्ने होना दुनिया दे अनुमति। अच्छा जी।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:35 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां।

0: एक बार फिर ते सारें दा आहा कार्यक्रम दे विच स्वागत करदे हन। कार्यक्रम मैं मौजां ग्राइंदियां कने टियाले पर मैं किसान मित्र कने मेरे सोगी हन चंचलो जी।
1: जी किसान मित्र जी, तुहां जो एक बार फिर ते प्यार भरी नमस्ते राम राम करने प्यारे प्यारे किसान भाइयां जो भी नमस्ते राम राम करने फिर ते किसान भाइयां दा टियाले पर स्वागत है
0: जी। कार्यक्रम मैं मौजां ग्राइंदियां गल्लां बातां भी आहा दे ग्राइंदियां खेत खलिहान दियां होणियां हन कने सोगी जड़ा आज खास जड़ा आज दा दिहाड़ा है असें दिखा आज अहां सारे ही किसान साथियां सारे श्रोतियां सारे अहां मिली जुली के जड़ा सा पर्यावरण दिवस जड़ा सा मनाया है ना।
1: हां जी,
0: कने दिखा पर्यावरण दिवस जो मनाने दा एक मेन जड़ा सी हम बोलदे ना मुख्य उद्देश्य यही है कि अहां दी जड़ी प्रकृति माता है ना उसा दी गोद जड़ी है हमेशा हरी भरी रहे ना।
1: जी तो बिल्कुल ठीक बोले कह कि अगर पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा अच्छा रहेगा हरिया भरिया रहेगा ता ही यहाँ जड़े से जीवन जी सकते हैं।
0: हाँ जी जी दिखा चंचलो जी पर्यावरण अहां तोहां लोकां दा सारे दा सांझा बर्तन है ना।
1: हाँ जी,
0: ये कोई बोले कि ये कल्ले बंदे दा काम है ऐसा नहीं है। हाँ जो सारे जो मिली के प्रयास करना पौने कने पर्यावरण च बढ़ी चढ़ी के अहां जो अपना योगदान देना पौना ता ही अहां अपने आस पड़ोस जो अपने ग्रां जो अपनी पंचायत जो जड़ा सा एक बिल्कुल हरा भरा जिसी अहां बोलदे ना शुद्ध बनाई सकदे हन।
1: हाँ जी तो बिल्कुल ठीक बोले कने अहां जड़ा पर्यावरण है तिसदी सुरक्षा इक्की दिन च नहीं करी सकदे ना।
0: हाँ।
1: अहां जो आदत बनाना पौनी कने सारे जो सारे हां मिली जुली के अगर पर्यावरण संरक्षण करगे ता ही पर्यावरण जड़ा सा हरा भरा हो सकदा। कने ये पर्यावरण संरक्षण की गल इक्की दिन की नहीं है, अहां जो रोज अपनी आदत जड़ी से बनाई लैना चाहिए। कने साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कने खूब सारे पेड़ पौधे लगाना चाहिए, कने पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्या होंगी तिना सारे दे निदान करने की कोशिश जड़ी से करना चाहिए।
0: हाँ दिखा इतु अहां ही नहीं जिसकी अहां बोलिए ना कि पूरे विश्व बिच जड़ा सा 5 जून जो जड़ा सा पर्यावरण दिवस जड़ा सा मनाया जाता है ना।
1: हाँ जी,
0: दिखा कितने बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसकी अहां बोलते राष्ट्र स्तर पर जड़ा सा ये जड़ा सा दिन मनाया जाता है। कने इन इस दिन जो मनाने का जिन्हें कि हाँ पहले दस्या कि उद्देश्य यही है कि अहां अपने जड़े से जड़े जल जंगल कने जमीन अहां कि जड़े से बचाने ना ना।
1: जी
0: हुन दिखा हुन अग्गे हुन आने वाला जड़ा मौसम है से बरसात दा ता इस बीच भी दिखा काफ़ी स्तर पर जड़ा से पौधा रोपण अभियान चलते हैं चाहे वह अहां दे विभाग जो वन विभाग द्वारा होन या कोई और विभाग द्वारा होन अहां दे बागवान साथी अपने निजी तौर पर भी बड़ा सारा पौधा रोपण करते हैं बगीचे लगाते हैं तो हाँ जो भी चाहिए कि अहां जिन्हें पेड़ जो अगर अहां कट्टा करते हैं ना दिखा चंचलो जी कुसा बारी पेड़ कटना भी पड़ते हैं दिखा कुछ जियां अजकल जियां जमीना भी इतनियां नहीं मिला करदियां ना कुछ घर बनाना कुछ घराल बनानी या कुछ कुछ जियां विकास कार्य कोई करना कुछ सड़क रस्ता ही बनाना है ना तो पेड़ कटना भी पौंदे लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हाँ एक पेड़ कट्टा करते हैं तो अहां की कोशिश होनी चाहिए कि अहां तीसरा जगह 5 नए पेड़ भी लगान।
1: जी तो हाँ बिल्कुल ठीक बोले कने इस दे सोगी दिखा पर्यावरण जो बचाने वास्ते यहाँ पेड़ पौधे तो लगाई सकते कने सोगी सोगी हाँ दे जेड़े जीव जंतु हैं तिना जो भी हाँ जो जड़ा सा तिना जो भी तिना दी सुरक्षा करना भी रक्षा करना भी अहाँ का फर्ज बनता क्योंकि जीव जंतु भी अहाँ दे पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। कने इस दे सोगी जियाँ कि अहाँ पर्यावरण दिवस की गल करा दे तो हाँ दिखते न किसान मित्र जी की जगह जगह दिखा कूड़ेदान लगे हुए है ना।
0: हाँ
1: कूड़ेदान तो लगी गई पर हाँ जालू भी देखते नहीं तो सह कूड़ा कूड़ेदान तो होंगे ही नहीं है अके हाँ, बखे पे होंगे ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी ऐसा जड़ा सह नहीं करना कि अपने घरे का जियाँ कूड़ा कठेरिया या अपने आंगने च सोत दिती अपने गेटे बाहर कढ़िया कने कुछ किसी होर सीधा सट्टिया है ना।
1: हाँ जी
0: ऐसा नहीं करना जितना भी कूड़ा करकट है उसका उचित निपटारा करना है। कोई भी दिखा बाहर ते अहां दे ग्राएं विच कोई दिखा इतने सारे हुण अहां गल करिए अपने हिमाचल दी जिला कांगड़ा दी या पूरे हिमाचल दी ता दिखा कितने सारे देसी कने विदेशी पर्यटक इतों घूमने वास्ते आए हो ना।
1: जी
0: तो जलू तिना भी दिखा जलू अहां दे ग्रां विच अहां दे इलाके विच आना अहां दे जिहड़े मेहमान होंदे ने तिना दिखना भी दिखा कितना सुंदर जिहड़ा सा अहां दा ग्रां है ना। कहना अगर हम चों पा खलारा पाया होगा जगह जगह कूड़े के ढेर होंगे तो तिना आई की भी क्या दिखाना ने।
1: जी तो बिल्कुल ठीक बोलिया कहने दिखा आज जी 5 जून है ता पर्यावरण दिवस है ता मैं तो बोल दी कि हाँ जो हर दिन जड़े से पर्यावरण दिवस के रूप च ही मनाना चाहिए ना कहने हाँ जो अपनी आदत बनाई लैना चाहिए साफ सफाई की कहने पर्यावरण जो जड़ा से बिल्कुल साफ सुथरा कहने संजोई के रखना चाहिए कहने पर्यावरण दे सोगी सोगी दिखा हाँ जो अपने पानी की बचत भी करना चाहिए बिजली की बचत भी करना चाहिए कहने जियाँ कि तुम बोलिया कि हाँ जो पेड़ पौधे लगाना चाहिए चाहिए कहने हाँ दे किसान भाई तो वैसे भी हम दिखा बरसात का मौसम आया तो हाँ दे किसान बागवान भाई जो अपने आमदनी वास्ते हाँ, भी पेड़ पौधे लगाते हैं ना
0: लगाते हाँ जी दिखा एक जो पेड़ है यहाँ जो कुछ ना कुछ जरूर दे के जाता है ना चाहे वह इमारती लकड़ी आए पेड़ दिखा कितने महंगे बिका करते हैं या अहाँ के घाय पतराए आला कोई रुख बूटा है या औषधी कुछ दे जियाँ गुण है ना औषधी जड़ी बूटियां आला कोई पौधा है अगर कुछ भी नहीं है तो दिखा फिर भी एक पेड़ है हाँ जो जड़ा सह अगर से सुखी भी आंदा फिर भी हाँ जो सह ईंधन दे रूप च दिखा कितना मददगार साबित होता है ना
1: हाँ जी
0: कुल मिलाई के बोल सकते एक पेड़ जड़ा सह अहाँ ताइया इतना लाभकारी है कि सह हाँ जो अपने
1: जीने मरने दुनी
0: हाँ,
1: च कम होंदा
0: काम
1: है ना?
0: आंदा हाँ तो खूब सारे पेड़ पौधे लगा कने दिखा हूँ भूमि कटाव जो रोकने जो पेड़ा ते जड़ा सा बड़ा अहां दा सहयोगी कौन हो सकता
1: जी
0: ता जितना ज्यादा हो सकता उतना ज्यादा पौधा रोपण करा पूरे जड़ा विश्व स्तर पर जियां अहां पर्यावरण दिवस जो मना करते हैं ना कहना अहाँ टियाले के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जल भी अहाँ कुछ कोई जन्मदिन होंदा या कुछ कोई होर कोई त्यौहार उत्सव है जल अहाँ कुछ महंगे महंगे उपहार देंगे हैं ना उसकी जगह अगर हाँ एक पौधा अगर तेना जो भेंट स्वरूप दिन था एक दिखा कितनी शानदार एक याद बननी है ना।
1: जी तो बिल्कुल ठीक बोलिया कने दिखा किसान मित्र जी हाँ किसान भाई ने गल्ला बातें तो होर भी करनी है न, पर सारे ते पहले सुनना है प्यारा दया लोक गीत पर तू तिस ते पहले सुनी लेंदे ने के सुने
0: जी

करना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: किसान भाइयों ता ए सुनिया तो हाँ बरसा कटोच दी आवाज च प्यारे दिया लोक गीत कने इस दे बाद हाँ गल करनी है हिमाचल प्रदेश दे कृषि जलवायु क्षेत्र दे बारे च।
1: जी
0: ते किसान भाइयों अपनी विविध भौगोलिक बनावट कने ऊंचाई दे आधार पर हिमाचल प्रदेश जो मुख्य रूप से चार प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र च विभाजित किया गया है।
1: हाँ जी
0: इन क्षेत्र दी जलवायु तापमान कने मिट्टी दे अनुसार ही इत्थों दी कृषि कने बागवानी जिहड़ी से तय की जाती है। तो हाँ सारे तो पहले गल करन ता उपोषण कटिबंधीय उप पर्वतीय कने निचले क्षेत्र दी ता इत्थों दी ऊंचाई जड़ी सह समुद्र तल ते 350 ते 650 मीटर या फिर लगभग 100 मीटर तक है। गल की जाए इत्थों दे क्षेत्र दी ता इस च ऊना बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा सोलन कने सिरमौर दे निचले हिस्से घाटी क्षेत्र जड़े से शामिल हैं। इत्थों जड़ा सा चावल गेहूँ मक्का गन्ना दलहन तिलहन मौसमी सब्जियां कने अम्ब लीची कने नींबू प्रजाति दे फलां दी पैदावार जड़ी सै बड़ी अच्छी हुंदी है। इस दे सोगी मध्य पर्वतीय उप आद्र क्षेत्र की गल की जाए तो इसकी ऊंचाई जड़ी सै समुद्र तल ते 651 ते 1800 मीटर तक है। कने गल की जाए क्षेत्र की तो मंडी शिमला सोलन सिरमौर चंबा कने कुल्लू दे मध्यवर्ती इलाके इस शामिल हैं। इत्थों की जलवायु हल्की शीतोषण कने नम है कने राज्य का सारे ते बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र मनिया जाता है। इत्थों जड़े से गेहूँ मक्का जौ धान दालां सेब नाशपति पलम खुवानी कने नकदी फसलां बेमौसमी सब्जियां कने अदरक काफ़ी मात्रा च उगाए जाते हैं।
1: जी तो इस पर जड़ी सह गलबात लिए और भी यहाँ इस विषय पर करनी है लेकिन पहला सुन लेंगे लोक गीत है ना।
0: हाँ जी पर लोक गीत पहले सुनना है।
1: सुनिया
0: जी
1: जी

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: किसान भाइयों जी, यहाँ की हाँ गल कर देते हिमाचल प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र दी ता हुण हाँ गल करनी है उच्चे पर्वतीय नम क्षेत्र दी।
1: जी
0: तो किसान भाइयों इत्थू दी जिहड़ी ऊंचाई है सै समुद्र तल ते 1801 ते लई करी 2500 मीटर तक, कने कुछ एक जगह पर ऊंचाई 3250 मीटर तक है।
1: हाँ जी
0: गल की जाए इत्थू दे क्षेत्र दी ता उपरी शिमला जियां कि रोहड़ू जुब्बल कुल्लू कने चंबा दे कुछ एक हिस्से इत्थू शामिल हन। कने इत्थू दी जलवायु समशीतोषण गीली आर्द्र जलवायु है। कने इत्थू मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले सेब बीज आलू शीतोषण सब्जियां जियां कि मटर पत्ता गोभी कने जो दी खेती जड़ी से कीती जांदी है।
1: हाँ जी
0: कने गल की जाए शुष्क समशीतोषण कने शीत मरुस्थल दी ता इत्थू दी ऊंचाई जड़ी से समुद्र तल ते 2200 मीटर ते लई करी 3600 मीटर तक है, या फिर इससे ज़्यादा भी जड़ी से ऊंचाई हो सकती है।
1: हाँ जी
0: गल की जाए इतों के क्षेत्र की तो लाहौल स्पीति किन्नौर कने भरमौर चंबा दे कुछ एक इलाके इसके अंतर्गत आते हैं। कने इतों की जलवायु ज़्यादा ठंडी शुष्क कने सर्दियाँ इत बड़ी ज़्यादा जड़ियाँ से पौंदियाँ। कने बरखा जड़ी से इतों बिल्कुल ही घट होंगी है। फसलों की गल की जाए तो सीमित कृषि के कारण इतों मुख्य तौर पर जौ कुट्टू मटर कने कठोर किस्म के फल जिया कि सेब कने बादाम उगाए जाते हैं। कने इस दे अलावा पशु पालन याक भेड़ बकरी इतों के किसानों का मुख्य व्यवसाय है।
1: जी हाँ जी कुल मिलाई के ये बोल सकते हैं कि भूगोलिक स्थितियां के अनुसार अलग अलग प्रकार की जी जलवायु है ना,
0: जी
1: कने तो उसी हिसाबे कने अहां दे किसान जड़ा सा उसी जो दिखते हुए जड़ा सा तिना जड़ा किस्म उगाते हैं खेतों में सही अनाज उगाते हैं, कने उस हिसाबे की सह जी किस्म लगाते हैं ना।
0: जी कने उस हिसाबे ने ही जरा पशु पालन भी करते हैं।
1: जी तो फिर ते जड़ा सा सुनते हैं एक लोक गीत
0: जी, पर तिसते पहले फिर ते सुनी लेंदे ने एक
1: संदेश। जी
2: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
3: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

किसान साथियों, इसी लोकगीत कन्ने कार्यक्रम का समय इथों ही संपन्न होने जो है तकनीकी सहयोग आहें दिता विपिन कुमार सोगी अंकित धीमान कन्ने कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह उन हंज दुनी दिया अनुमति।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी और लोगों का जीवन बेहतर होगा। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक

0: चार नाइजीरिया, एक लाइबेरिया, तीन किर्गिस्तान, एक उज्बेकिस्तान, एक बांग्लादेश, एक कांगो और एक इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक रही है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर रखा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% रहने का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत को SU-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल करना चाहता है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मेगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today. Addressing a public gathering on the occasion, Prime Minister Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy.
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Prime Minister is scheduled to visit Daman later today to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees. These projects include major healthcare and aviation infrastructure. He will also lay foundation stone for crucial maritime projects for the Union Territory of Lakshadweep. India's economy has maintained strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% as compared to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Program Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. Prime Minister Narendra Modi has said that it reflects the inherent strength of Indian economy, the success of reforms and the hard work of 140 crore Indians. In a social media post, Mr. Modi said, "Government will leave no stone unturned to further ease of living, ease of doing business and increase opportunities for the youth." Union Home Minister Amit Shah has said Prime Minister Narendra Modi is working with the goal of building a developed India by 2047. Addressing the Prahari Sammelan at the Lankamura border outpost along the India-Bangladesh international border in Tripura today, the Home Minister emphasized that making the nation safe and secure is absolutely essential before achieving complete development. He highlighted that it is equally crucial to keep the youth away from drug abuse and to thwart all attempts to damage the national economy through fake currency. Minister for

0: अगर हम इसको सरल तरीके से देखें तो एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या रहा है एमएसएमईज में?
1: देखिए, एमएसएमईज में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है इनोवेशन। और मैं ये समझता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का ये एक जरिया है। और इसी फीलिंग के साथ आज के समय में स्टार्टअप्स और एमएसएमईज पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। इनफैक्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स दिस इकोसिस्टम हैज़ रियली इवॉल्व एंड गॉट ट्रांसफॉर्म्ड आई वुड से इन इंडिया, एंड टुडे इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 30% टू द जीडीपी, 35% टू मैन्युफैक्चरिंग, 60% टू एम्प्लॉयमेंट एंड 48% टू एक्सपोर्ट्स। सो दैट इज द रीजन वाई लॉट ऑफ पीपल से इट हैज बिकम द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी।
0: Usually, anyone engaged in entrepreneurship is looking at a business opportunity and then they're looking to create a system to exploit that opportunity. How do you see the government supporting this energy and spirit of the entrepreneur?
1: I would say the policy support has been a major enabler for the growth of this ecosystem, and the way the policy has also, transformed in the last few years, a lot of new policy interventions have come up. The definition itself of MSME has been refined, has enlarged the scope that is covered within it. Today, any enterprise with an investment of 125 crore and up to a turnover of 500 crore is classified within the definition of MSME. So the definition has really been enlarged for all the three categories, micro, small, and medium. So they have an incentive to scale up without really getting into the fear of losing out on incentives. So

0: them for filing intellectual property rights. That was the fourth component of the scheme. We were pushing them towards greening and sustainable manufacturing, which was other component of the scheme. So we have now added AI also to that, so that MSMEs are not left behind in this new technology.
1: Bharat Kheda ji, thank you so much for being with us. We have unfortunately run out of time, but the discussion can be endless. That is the scope of the micro, small and medium enterprises. Thank you so much for being with us.
0: Thank you.
2: In the special series, 12 Years of the Modi Government, you are listening to an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer was Arjun J. Chaudhary. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
3: Akashwani ka ye Shimla kendra hai. Kripya.
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
5: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
6: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
5: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
6: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
8: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
7: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों को नहीं बख्शेगी सरकार। भाजपा का आरोप, पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेता बौखलाहट में कर रहे हैं अनाप शनाप बयानबाजी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को जल्द मिलेंगी एक्सरे व अल्ट्रासाउंड मशीनें, खरीद प्रक्रिया पूरी। और केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा राज्य भर में चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त जीवन विषय पर आयोजित मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध वायु से समृद्ध राज्य है और विकास कभी भी पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त समाज ही उज्जवल भविष्य की आधारशिला है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। आज हमें ये समझना चाहिए, पृथ्वी को हमने माँ माना और अगर माँ है तो हम हैं। उसके अस्तित्व के कारण से ही हम सभी यहाँ पर हैं। हमारे सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब किस प्रकार से अपनी मातृभूमि और माँ की रक्षा करें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, की रक्षा करें। दूसरा, बढ़ते हुए जो नशे बचाने के लिए बच्चों ने और हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं इसके लिए सभी ऑफिसर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयास के कारण से ऐसा संभव हो सकता।
0: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में सभी वर्गों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे उत्तर भारत को स्वच्छ जल और शुद्ध वायु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिस कारण इसे लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी से पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आग्रह भी किया।
2: हमारी सरकार को जो नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ चंडीगढ़ है, उसने जो हमारी प्लानिंग है योजना को भी अप्रिशिएट किया। पहली बार चिट्टा को पंचायत स्तर पर मार्किंग की गई है, जो यहाँ ज्यादा चिट्टा वाले हैं या नशा करने वाले उसको रेड कैटेगरी में, येलो कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने ओकओवर शिमला में चेनार वृक्षारोपण अभियान के पहले चरण का शुभारंभ भी किया। राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल समावेशी व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अन्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल विकास प्राथमिकताओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। समझौते में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण को भी शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सहयोग राज्य को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि ये समझौता हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य और हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के एक आदर्श के रूप में विकसित करने की प्रदेश सरकार की परिकल्पना के अनुरूप है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के असंगठित अपशिष्ट प्रबंधन कर्मियों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से सफाई मित्र योजना का भी शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द ही एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीद से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान, जबकि लाहौल स्पीति और भरमौर क्षेत्रों में दो दो संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना और उन्नत चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत से कांग्रेस सरकार के मंत्री बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की राजनीति अब खुलकर सामने आ रही है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि चुनावों में लगातार हार और जनता के बीच घटते जनाधार के कारण कांग्रेस नेता धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विवादित बयान देकर ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं।
3: प्रदेश में हालिया संपन्न हुए पंचायती राज चुनावों में जहां भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, वहां कांग्रेस पार्टी को, जिनकी प्रदेश में सरकार है, करारी हार का सामना करना। कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई, इनके मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। सनातन हमारी संस्कृति, हम इसको मानने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और उनकी ये तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है।
0: इस बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में हुए स्थानीय निकायों

0: और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा को मिले भारी जनसमर्थन से कांग्रेस की राजनीतिक विदाई यात्रा शुरू हो चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से अब छुटकारा चाहती है और आने वाले समय में ये जन आक्रोश और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में युवा चेहरे जीत कर आए हैं। शिमला में आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। विक्रमादित्य सिंह ने इन चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा के दावों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हुए, ऐसे में भाजपा का जीत का दावा करना उचित नहीं है।
1: अभी जो हाल ही में हमारे पंचायती राज के चुनाव प्रदेश के अंदर हुए हैं, उसमें बहुत से हमारे युवा चेहरे जो है इस बारी जीत कर आए हैं, चाहे वो प्रधान है, उप प्रधान है और जिला परिषद में है या पीडीसी में है, और इसमें नई सोच निकल कर आती है। ऐसे चेहरे जो हम आम रूप से नहीं देखते हैं, मगर वो इन चुनावों के माध्यम से हमको मिले हैं, और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि बहुत से यंग प्रोफेशनल्स जो है इसमें जीत कर आए हैं। हमने उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों का, जितने भी चुनाव में जीत कर आए हैं, उनका पूरा समर्थन करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे।
0: विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती के मौके पर 23 जून को रिज मैदान पर प्रो बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत सहित 6 देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र जोन 2 का आयोजन हरियाणा विधानसभा द्वारा 8 से 10 जून तक चंडीगढ़ विधानमंडल में किया जाएगा। सम्मेलन में 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और पंजाब के पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय लक्ष्य को पाने में जागरूक नागरिक, समाज और युवा विधायकों की भूमिका विषय पर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 7 जून को 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा राज्य भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के दौरान पार्टी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। बिंदल ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शिमला में 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों को नहीं बख्शेगी सरकार। भाजपा का आरोप, पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस नेता बौखलाहट में कर रहे हैं अनाप शनाप बयानबाजी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को जल्द मिलेंगी एक्सरे व अल्ट्रासाउंड मशीनें, खरीद प्रक्रिया पूरी। और केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा राज्य भर में चलाएगी महाजनसंपर्क अभियान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किए जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है।

0: देशगान अभी आपने सुना। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम, केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की दिशा में उठाए गए अभूतपूर्व कदम। हमारा यह प्रसारण आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो हम इस दौरान सरकार की क्या उपलब्धियां रही और क्या कार्यक्रम रहे जिनसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, आज हम इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया ठाकुर जी। आप अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण विकास विभाग व प्रदेश नोडल अधिकारी पीएम आवास योजना हिमाचल प्रदेश हैं। सोनिया जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
2: नमस्कार, स्टूडियो में आज मुझे बुलाने के लिए आपका भी धन्यवाद।
1: जी सोनिया जी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं और 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिए, हर वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की हैं जिनके क्रियान्वयन से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, तो उनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको आपका विभाग संचालित कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालेंगी।
2: जी, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2016 से हुई, लेकिन इसमें जो व्यय है उसका अनुपात 90 और 10 के अनुपात में केंद्र सरकार, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करती है। तो जितना भी फंड इस योजना के लिए दिया जाता है उसका 90% केंद्र सरकार से मिलता है और उसका 10% जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार व्यय करती है। इसके अतिरिक्त इस योजना में एक लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 20,000 अतिरिक्त धन जो है उसे हम टॉपअप कहते हैं, वो भी स्कीम में लाभार्थी को दिया जाता है
1: केंद्र के अलावा।
2: जी, केंद्र के अलावा जी, और इस प्रकार से हम लगभग 1,50,000 रुपए एक लाभार्थी को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में दे पाते हैं।
1: जी, हिमाचल में अभी तक इस योजना के तहत कितना काम हुआ है, कितने लोगों को फायदा मिला है और ये योजना कितनी सफल रही है?
2: हिमाचल में ये योजना काफी सफल रही है। लगभग 1,03,000 के करीब हमारे पास लाभार्थी इस योजना में आए थे, जिनमें से लगभग 67,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिनको कि अपना मकान इस योजना में मिल चुका है, और 33,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके मकान बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है, निर्माणाधीन है उनके मकान। तो लगभग 1,03,000 लोग जो है वो प्रथम चरण में इसमें लिए गए हैं, और अभी एक सर्वे चल रहा है जिसमें इस योजना का जो दूसरा चरण है उसके लिए लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है, और इसमें हमें अभी सर्वे में लगभग 2,23,000 लोग सर्वे में हमारे पास आए हैं, और इस सर्वे का अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, इसका डिलीशन प्रोसेस आजकल चल रहा है, और उसके बाद जो सर्वे कंप्लीट होने के बाद एक परमानेंट वेटिंग लिस्ट बनेगी जिसमें जो भी एलिजिबल पात्र जो लाभार्थी होंगे वो उसमें लिए जाएंगे, क्योंकि इस योजना में लाभ लेने के लिए पात्रता की कुछ शर्तें हैं। जो लोग हैं उनके पास अपना मकान नहीं है, जो बेघर लोग हैं या जिनके पास कच्चा मकान है, वो लोग इस योजना में इसका लाभ लेकर अपने मकान को बनाने के लिए आर्थिक सहायता ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस भी हैं, जैसे कि उनकी मासिक आय जो है वो 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त कुछ और इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, अगर वो उसमें फॉल नहीं करते हैं तो वो पात्र माने जाएंगे इस योजना में लाभ लेने के लिए। तो जो लोग पात्र हैं उनकी एक लिस्ट इस प्रकार से सर्वे के बाद फाइनल की जाती है, और उसके बाद उन्हें 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये धनराशि दी जाती है। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 65,000 रुपए की, जब मकान सेंक्शन होता है किसी लाभार्थी के नाम, शुरुआत में 65,000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, और उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट 52,000 रुपए का दिया जाता है जो लिंटल लेवल तक जब मकान का निर्माण हो जाता है तब दिया जाता है, और तीसरा जो है वो कंप्लीशन पर 33,000 रुपए की राशि लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
1: जी डॉक्टर सोनिया जी, ये योजना इतने बड़े स्तर पे हिमाचल में चल रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इस योजना की जानकारी कैसे पहुंचाई जाती है, कहां से पता लगता है उन्हें कि हम इस योजना में शामिल हो सकते हैं?
2: हम इसके लिए आईसी एक्टिविटीज के तहत योजना का प्रचार करते हैं, योजना के जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन पैरामीटर्स हैं उनकी एक वाइड पब्लिसिटी की जाती है, ताकि लोगों को ये पता रहे कि इस प्रकार की एक योजना है जिसका लाभ लेकर वो अपना घर बना सकते हैं, और किस प्रकार से वो एलिजिबल हो सकते हैं, वो ये जान सकते हैं कि क्या वे पात्र हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए या पात्र नहीं हैं। तो उसके लिए हम विभिन्न मीडिया का इस्तेमाल भी करते हैं, रेडियो जिंगल्स के माध्यम से या समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, दूरदर्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए जब हमारा सर्वे चल रहा है, जब हम लाभार्थी की पहचान के लिए सर्वे कर रहे हैं, उस समय हम इन सारी गतिविधियों पर जोर देते हैं ताकि सब लोगों तक ये सूचना पहुंच पाए और जो पात्र लोग हैं, जो सही में इस योजना का लाभ उठाकर अपने घर का एक सपना पूरा कर सकते हैं, उन तक ये जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा ब्लॉक्स में हमारा स्टाफ है, ब्लॉक स्तर पर भी इसकी वाइड पब्लिसिटी की जाती है। हमारी पंचायत सेक्रेटरीज हैं, रोजगार सेवक हैं, वो इस योजना के बारे में घर घर तक जानकारी पहुंचाते हैं। और इस बार जो हम सर्वे कर रहे हैं उसमें बल्कि एक खास एलिमेंट ये था उस सर्वे का कि सेल्फ सर्वे भी लोग कर सकते थे, वो अपने मोबाइल ऐप पे, मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करके सेल्फ सर्वे भी कर सकते थे। और असिस्टेड सर्वे जो है वो ब्लॉक के अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें 26,745 लोगों ने सेल्फ सर्वे करके अपने आप को रजिस्टर करवाया है। और उसके अलावा 1,96,000 के करीब लोग हैं जिनका असिस्टेड सर्वे हुआ है। तो इस प्रकार से जब सर्वे का काम चल रहा था तो हम बड़े स्तर पर इसकी पब्लिसिटी, वाइड पब्लिसिटी करते हैं ताकि हम हर लाभार्थी तक इस योजना को और के जो लाभ है उनको पहुंचा सकें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लाभार्थी इसमें कवर कर लिए जाएं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कोई भी लाभार्थी जो एलिजिबल है, पात्र व्यक्ति है, जिसको घर की आवश्यकता है, उस तक इस योजना का लाभ पहुंचे।
1: जी, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी आती हैं, कैसे ऐसी चुनौतियों से निपटा जाता है?
2: क्योंकि हमारा राज्य जो है वो एक हिल स्टेट है तो यहाँ अलग किस्म की चुनौतियां हैं। एक तो यहाँ पर घर बनाने की लागत जो है मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले में ज्यादा है, इसीलिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको जो आर्थिक सहायता राशि है वो थोड़ी सी ज्यादा है मैदानी क्षेत्र में जो लोग हैं उनको जो लाभ मिल रहा है उसके कंपैरिजन में। लेकिन जैसे निचले क्षेत्रों में 1,20,000 है ये राशि और यहाँ पे सिर्फ 1,30,000 है, तो सिर्फ 10,000 का फर्क है। तो हम इसको समय समय पर भारत सरकार से उठाते रहते हैं कि क्योंकि हिल स्टेट्स जहां पर हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज्यादा है, मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा पड़ती है लोगों को, तो थोड़ा धनराशि जो है वो कम से कम 2,00,000 होनी चाहिए। और इसीलिए प्रदेश सरकार ने भी इसमें 20,000 रुपए का टॉपअप ऐड किया है ताकि थोड़ा सा आर्थिक सहायता लोगों को और मिल सके। तो भौगोलिक स्थिति प्रदेश की ऐसी है कि कुछ इलाके दुर्गम है या परिवहन के साधन जो है उनके माध्यम से वहां पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को पहुंचाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है या उसका खर्च जो है वो ज्यादा आ जाता है, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरह की हिल स्टेट्स की अपनी चुनौतियां हैं जिनको लेकर भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि इनका समाधान हो सके।
1: जी जी, डॉक्टर सोनिया जी, जैसे आपने कहा कि इस योजना के तहत पक्के मकान बने लोगों के लिए और उनका सपना एक साकार हुआ, कच्चे मकानों में रहते थे, छतें टपकती थी, तो ऐसे लाभार्थी आपके ध्यान में होंगे कुछ जिनके अनुभव आप साझा करना चाहेंगी?
2: जी, अभी बहुत सारे ऐसे लोग थे पिछले 2023 में हिमाचल में, जैसा आप जानते हैं कि डिजास्टर एक बड़े लेवल पर हुआ और बहुत सारे लोगों के घर जो है उसमें ध्वस्त हो गए थे, टूट गए थे और उन लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तो 10,000 लोगों को अभी हमने 2025 का जो डिजास्टर आया है, डिजास्टर अफेक्टेड घर हमारे

0: के हर घर की कंस्ट्रक्शन में 8 या 9 महीने तक कंप्लीट कर दें, ये टारगेट लिया है। लेकिन ऐसे घरों को हमने 3 महीने में भी पूरा करवाया है। तो ऐसे एक सुखमा देवी है पुजारली पंचायत में, जिनका पैतृक मकान जो है वो पूरी तरह से टूट गया था डिजास्टर में, और इस योजना की आर्थिक सहायता से वो अपने घर को ठीक करवा पाई हैं और उस घर को पुनर्निर्माण कर पाई है। हमारे पास ऐसे बहुत सारा डाटा हमने कलेक्ट किया है, जिसमें हमने डिजास्टर के दौरान उस घर की क्या स्थिति थी और फिर बाद की क्या स्थिति थी, उस तरह के फोटोग्राफ्स भी हमने कलेक्ट किए हैं। तो अगर आप उन फोटोग्राफ्स को देखें तो आप जान पाएंगे कि डिजास्टर से उन घरों को कितना नुकसान पहुंचा था। कुछ घर तो पूरी तरह से टूट गए थे, पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, और कुछ घर पार्शियली डैमेज हुए थे। तो दोनों तरह के लोगों को इसमें कवर करके हमने जल्दी से जल्दी उनके घरों का निर्माण करवाया है। और अभी बल्कि एक उदाहरण आपको देना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर किसी ने हमीरपुर के क्षेत्र के किसी महिला के घर का फोटोग्राफ डाला था कि डिजास्टर में लास्ट ईयर वो अफेक्ट हो गया था उनका घर। तो हमने इमीडिएटली चेक किया हमारे डेटाबेस में, हमने उनको सर्वे में लिया है और हमने उनको श्योर किया है कि हम आपको विद इन अ वीक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज कर देंगे। तो इस तरह से बहुत बेनिफिशियरीज हैं, खास करके डिजास्टर अफेक्टेड बेनिफिशियरीज, जिन तक हमने जल्दी से जल्दी पहुंचकर उनको धनराशि और मामलों के बजाय जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाने की कोशिश की है।
1: जी, मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिए किस तरह से वरदान बन रही है, ये आपके उदाहरण से हम समझ सकते हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए, जैसे आपने बताया, धनराशि उपलब्ध करवाता है। तो तकनीक और डिजिटल माध्यमों ने योजना के क्रियान्वयन व निगरानी को जो है वो कितना सुलभ बनाया है?
0: देखिए, जब से हम डिजिटल टेक्नोलॉजी इसमें यूज करने लगे हैं, मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा आसान हो गई है, पारदर्शिता जो है वो इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में बढ़ गई है, और ये एक चीज सुनिश्चित हो गई है कि जो बेनिफिट है वो सीधे लाभार्थी तक पहुंच रहा है। हमारे पास आवास सॉफ्ट एक पोर्टल है जिसमें MIS पे हमारा पूरा डेटाबेस हर समय अवेलेबल रहता है, जिस पर कि हम देख सकते हैं कि कितने लाभार्थी रजिस्टर हुए, कितने लाभार्थियों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चली गई है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट चली गई है, उनके मकान का स्तर कहां तक पहुंचा है अभी। उसके अलावा हम आवास प्लस 2024 में हमने नए फीचर्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि फेस ऑथेंटिकेशन। तो जब सर्वे होता है उस दौरान जो लाभार्थी है उसका फेस ऑथेंटिकेशन होता है, EKYC होती है जिसमें उसमें उसके बैंक का खाता जो आधार से लिंक्ड है वही लिया जाता है, और डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर होता है पैसे का, DBT हम जो है उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसा नहीं हो पाता है कि गलती से किसी और के अकाउंट में चला जाए या कोई और जो है वो लाभ उठा ले उसका, और असली में जो लाभार्थी है उस तक कोई भी राशि ना पहुंच पाए। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए, इन बॉटलनेक्स को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल इसमें किया गया है। और अब जो सर्वे चल रहा है 2025 से, इसमें बल्कि हमने AI का भी इस्तेमाल किया है। तो AI के इस्तेमाल से अगर कहीं पर भी डुप्लीकेशन है या गलत डाटा फीड हुआ है या फोटोग्राफ्स जो हैं वो उस जगह के नहीं है वो एकदम से पकड़ में आ जाते हैं। और उसके अलावा जियो टैगिंग है जो आपको 5 स्टेजेस पर जियो टैगिंग होती है। एक बार जब वो सर्वे करने के लिए जाते हैं तो एग्जिस्टिंग साइट जहां पर कि किसी व्यक्ति का घर अभी है, भले ही वो टूटा हुआ है या नहीं है, तो वो प्रपोज साइट कौन सी है जहां पे कि घर का निर्माण होगा, उनका जियो टैगिंग होता है। उस फोटोग्राफ में जो दिनांक है और समय है जब वो फोटोग्राफ लिया जा रहा है वो अंकित हो जाता है, और उसके बाद जब सैंक्शन होता है इंस्टॉलमेंट्स का, तो उसके बाद जब सैंक्शन उसको लाभार्थी को मिलता है उस समय जियो टैगिंग होता है, और इंस्टॉलमेंट्स जब रिलीज होती हैं, कंप्लीशन होता है, उस स्टेज पे जियो टैगिंग होता है।
1: लाभार्थी को कहां से पता चलता है कि उसकी इंस्टॉलमेंट आ गई है?
0: इंस्टॉलमेंट जो है वो डायरेक्टली उसके खाते में जाती है
1: जी।
0: तो इस तरह से उनको ये पता लग जाता है कि उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है। उसके अलावा जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है तो हमारे ब्लॉक से स्टाफ जो है वो नियमित तौर पर वहां पर विजिट करते हैं, तो वो लाभार्थी को अवगत कराते हैं कि इंस्टॉलमेंट्स आने के बाद आप अपना काम जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आने के बाद जो अगली इंस्टॉलमेंट्स रिलीज होंगी वो तभी रिलीज होती हैं जब हमारे कर्मचारी वहां पहुंच के जियो टैगिंग करते हैं कि मकान इस स्तर तक बन चुका है, अब अगली इंस्टॉलमेंट रिलीज की जा सकती है। तो जब वो जियो टैगिंग हो जाती है उसके बाद बेनिफिशियरी को ये पता रहता है कि अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट उनके खाते में आने वाली है।
1: जी डॉक्टर सोनिया जी, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को अन्य सरकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और अन्य योजनाओं से किस प्रकार से जोड़ा गया है?
0: देखिए, कन्वर्जेंस आजकल हम हर एक स्कीम में कर रहे हैं, और उससे ये होता है कि एक स्कीम का जो एक रिस्ट्रिक्टेड लाभ है उसके अलावा

0: जो बहुत दूसरी स्कीम्स भी चल रही हैं उनका लाभ भी उससे जोड़ा जाए।
1: जी
0: तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन में हम
1: जी
0: शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये की राशि हर घर को देते हैं,
1: जी
0: तो उसको भी हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा है।
1: जी
0: प्रधानमंत्री आवास योजना में ये
1: जो घर
0: पैरामीटर
1: बनेगा
0: जी
1: उस घर के मालिक को उज्ज्वला या स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा है, उनको शौचालय बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे
0: बारह
1: हैं।
0: हजार रुपये की राशि अलग से
1: जी
0: शौचालय बनाने के लिए दी जाती है,
1: जी जी
0: और जो राशि हम मकान बनाने के लिए दे रहे हैं उसमें ये निश्चित है कि वो मकान 25 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में बनेगा,
1: जी
0: और साथ साथ उसमें एक कमरा कम से कम और एक रसोई घर होना जरूरी है अलग से।
1: जी
0: तो इसमें एक रसोई और शौचालय का प्रावधान उसके साथ है। जिसको भी हम ये सहायता देते हैं उनको 12,000 रुपये की अतिरिक्त राशि
1: जी
0: स्वच्छ भारत मिशन से जोड़कर शौचालय के निर्माण के लिए दी जाती है।
1: जी
0: और उज्ज्वला योजना है, एलपीजी कनेक्शन जो है वो दिया जाता है, जल
1: जी
0: जीवन मिशन के माध्यम से उनको पाइपलाइन वाटर हर घर तक पहुंचाया जाता है।
1: जी
0: तो इस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिला है लाभार्थी जो है उनका, उस परिवार की लाभार्थी महिला जो है उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े होना जरूरी है।
1: जी जी
0: और सबसे अच्छी बात एक ये है इस योजना में कि जो मकान है वो महिला के नाम पर बनता है,
1: जी
0: तो इससे महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य है हमारा
1: वो
0: वो
1: भी
0: भी
1: पूरा
0: पूरा
1: हो रहा
0: होता
1: है।
0: है। क्योंकि
1: जी
0: ये जरूरी है कि वो मकान महिला के नाम पर ही बने तो संपत्ति में भी महिला का अधिकार जो है वो
1: बन
0: अपने आप
1: जाता
0: आ
1: है।
0: जाता है।
1: जी
0: तो ये एक बहुत अच्छा पहलू है इस योजना का कि महिलाओं का सशक्तिकरण इसके
1: जी
0: साथ साथ हो रहा है।
1: जी केंद्र की सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है, महिला सशक्तिकरण भी हो गया, मकान भी बन गया, विकास भी हो गया। जी सोनिया जी, मौजूदा समय में इस योजना के तहत हिमाचल में कितने पात्र लोगों के पक्के मकान का प्रस्ताव है, और आवेदन के बाद कितने समय तक लाभार्थी को जो है इसका लाभ मिल जाता है?
0: देखिए अभी जो हमारा सर्वे चल रहा है उसमें लगभग 2,23,000 लोगों ने आवेदन किया है,
1: जी
0: लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन आवेदनों की हमें दोबारा से जांच करनी पड़ती है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि जो भी डेटा उसमें भरा गया है वो
1: जी
0: सही है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी लाभार्थी छूटे ना और
1: जी
0: किसी भी अपात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ ना मिल जाए।
1: ना
0: तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो अभी चल रहा है, और
1: जी
0: उसके बाद जब हमारी एक परमानेंट वेटिंग लिस्ट बनेगी उसको रखा जाएगा ग्राम सभा में।
1: जी
0: तो ग्राम सभा के द्वारा इस लिस्ट को पास किया जाता है, तो
1: जी
0: ये ग्राम सभा में जब जाती है लिस्ट तो ये भी सुनिश्चित हो जाता है कि सिर्फ पात्र व्यक्ति जो है वही इस लिस्ट में है। और जब हमारी पीडब्ल्यूएल ग्राम सभा से पास हो जाती है
1: जी
0: उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट्स उनको रिलीज करना शुरू कर देते हैं।
1: जी जी डॉक्टर सोनिया जी, केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी शुरू की है, और योजना के तहत किसानों या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग आप देख रही हैं तो ये योजना भी चल रही होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वाटरशेड विकास घटक,
1: जी
0: जिसके अंतर्गत हमारा काम ये रहता है कि बारिश का जो पानी है
1: जी
0: वो ऐसे ही व्यर्थ ना बह जाए, हम उसको मिट्टी में संचित करें
1: जी
0: या चेक डैम और तालाब बनाकर उसे संचित करके रखें और उसे खेती में इस्तेमाल करें।
1: जी
0: तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तो हम पानी को व्यर्थ होने से बचाएं,
1: जी
0: उसे संचित करें, खेती में इस्तेमाल करें, और साथ साथ हम सॉइल कंजर्वेशन भी करें। तो
1: जी
0: इस योजना के तहत हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं, इस तरह के काम करते हैं जिससे मृदा संरक्षण और जल
1: जल
0: संरक्षण
1: संरक्षण दोनों साथ।
0: दोनों सुनिश्चित हों, और साथ ही साथ खेती में भी हम उसे इस्तेमाल करके किसानों की मदद कर पाएं, किसानों की फसल की पैदावार बढ़ सके,
1: जी
0: या जिस एरिया में अभी तक खेती कर रहे हैं हमारे किसान
1: जी
0: वो
1: जी
0: उससे ज्यादा एरिया में खेती कर पाएं,
1: कर
0: या
1: सकते
0: अगर वो एक क्रॉप एक साल में उगाते हैं तो वो दो या तीन क्रॉप्स उगाने लगें।
1: जी
0: ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
1: जी इस योजना के तहत कौन कौन से काम हैं जो करवाए जा रहे हैं मौजूदा समय में?
0: इस योजना के तहत हम चेक डैम्स बनाते हैं, तालाब
1: जी
0: बनाते हैं, प्लांटेशंस के काम करते हैं,
1: जी
0: कॉन्टूर ट्रेंचेस बनाते हैं जिससे कि वर्षा का पानी जो है वो मिट्टी में ही रचा रहे और
1: जी
0: उसको जो है वो यूज करके हम पैदावार जो है मिट्टी की बढ़ा
1: बढ़ा
0: सकें,
1: सके। जी
0: उसकी उपजाऊ क्षमता को हम बढ़ा सकें।
1: जी
0: इस तरह से हम क्रेट वायर्स लगाते हैं,
1: जी
0: प्लांटेशंस के काम करते हैं, और
1: जी
0: ये सारे काम जो है वो पंचायतों में निजी भूमि पर से ज्यादा फोकस इस बात पे रहता है कि जो कॉमन लैंड है वहां पे किए जाए।
1: पंचायतों के माध्यम से इन कामों को जो है बांटा जाता है।
0: इसके लिए योजना शुरू होने के समय, जैसे अभी 2.0 का अंतिम चरण चल रहा है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 जब शुरू हुई थी तो उस समय DPR का निर्माण किया जाता है। उस DPR के प्रिपरेशन में पंचायतों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, इवन विलेज लेवल कमेटीज होती हैं हमारी, वॉटरशेड विलेज डेवलपमेंट कमेटीज, तो उस कमेटी का निर्माण करते हैं हम और गांव के लोगों को उस योजना में साथ जोड़ते हैं। तो गांव के लोग ये तय करते हैं कि उनके क्षेत्र में खेती को और ज्यादा सफल बनाने के लिए किस किस प्रकार के इंटरवेंशन की जरूरत है। तो लोगों के आइडियाज के बाद ये काम हम फाइनलाइज करते हैं और फिर इनकी DPR बनती है। तो अभी जैसे हम कृषि सिंचाई योजना के 2.0 के अंतिम चरण में है और उसके बाद 3.0 हमारा शुरू होने जा रहा है, तो उसके DPR प्रिपरेशन में अभी हम फिर से ये सारी की सारी एक्टिविटीज करेंगे कि हम अब विलेज लेवल कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उनसे सुझाव लेंगे और गांव के लोग ही ये तय करेंगे कि उनके गांव में किस तरह के काम होने चाहिए। तो इस तरह से हम एक प्लान बनाते हैं जिसमें हम एक पूरे एरिया को, पूरे एक एरिया में वॉटरशेड को डेवलप करते हैं।
1: जी, कितना काम इस योजना के अंतर्गत हो चुका है हिमाचल प्रदेश में?
0: देखिए 2.0 में अभी तक हमने 121 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर लिए हैं इन सारे कामों को करने के लिए, जो जल संरक्षण और मृदा संरक्षण से जुड़े हुए काम है उनको करने के लिए अभी तक हम कर पाए हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि लगभग अगले सितंबर तक हम 150 करोड़ के काम जो है वो कंप्लीट करें इस योजना के तहत,
1: लक्ष्य रखा है
0: जी
1: सितंबर तक का।
0: जी जी
1: सोनिया जी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 साल के अब तक के कार्यकाल में महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास की निर्णायक भागीदार बनाने पर जोर दिया है, तो इसी उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई पहल शुरू की हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ रही हैं और कुछ हमें जानकारी मिली है कि इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ भी जोड़ा गया है, तो आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे?
0: जी, जैसे हमने अभी कन्वर्जेंस की बात की थी कि हम एक योजना के साथ जो अन्य योजनाएं हैं उनको भी जोड़ के ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी तक पहुंच सके, उस पर भी कन्वर्जेंस पर भी काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा ये मैंडेटरी रहता है कि जो भी महिलाएं हैं लाभार्थी परिवार की वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हों, और हम पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं कि कितने परिवारों को हमने बेनिफिट दिया और उनमें से कितने परिवार की महिलाएं जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। इसका पूरा डाटा हमारे पास रहता है, पोर्टल पे अपलोड होता है जिसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। तो स्वयं सहायता समूहों से उनका जुड़ना एक अनिवार्य शर्त है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो उसके जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि महिलाएं थोड़ा स्वरोजगार की तरफ भी मुड़ें और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करें जुड़ के, ताकि वो आर्थिक रूप से भी स्वावलंब हो पाए।
1: जी डॉक्टर सोनिया जी, जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत वॉटरशेड का निर्माण किया जा रहा है या वॉटरशेड का प्रावधान है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से हमारे श्रोताओं को बताएंगे आप?
0: जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक बड़ी योजना है और वॉटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट इसका एक कंपोनेंट है जिसमें हम एक एरिया में एक वॉटरशेड को डेवलप करते हैं।
1: जी,
0: और वॉटरशेड को डेवलप करने का मतलब है कि उस एरिया में बारिश का पानी जितने भी स्रोतों से पहुंचता है उसे कंजर्व करना और उसे खेती में इस्तेमाल करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। लेकिन जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके बारे में लोगों को फिर भी जानकारी रहती है, लेकिन वॉटरशेड क्या है इस बारे में लोग अनभिज्ञ होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वॉटरशेड का कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, लोगों की समझ में आए कि वॉटरशेड क्या है, वॉटरशेड डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट क्या है, स्कीम में किस तरह के काम होते हैं और वो कैसे इसका लाभ उठा के अपने क्षेत्र में कृषि की उन्नति करा सकते हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने इसलिए इस बात को समझने के बाद इसकी थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की लोगों में, और नवंबर से लेकर दिसंबर तक हमने एक महीना वॉटरशेड महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें एक हमने राज्य स्तर पर एक आयोजन किया वॉटरशेड महोत्सव का और उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया। और इसके साथ ही हमने सोशल मीडिया पर एक रील कॉम्पिटिशन भी कराया, फोटो कंपटीशन और रील कंपटीशन, जो एक सरकारी स्कीम में शायद पहला ऐसा प्रयास था जहां पे कि लोगों के बीच में जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, उसे लेकर हमने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और लोगों को ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की, और लोगों के द्वारा ही, लोगों ने ही उसमें रील्स बनाई है, लोगों के ने ये सबसे पहले स्कीम के बारे में सुना, जानने की कोशिश की कि उनके गांव में, उनके क्षेत्र में, उनके घरों के आसपास क्या वॉटरशेड में कभी कोई काम हुआ है, लोग पंचायतों तक पहुंचे, रील्स बनाने के लिए वो ब्लॉक्स तक पहुंचे जहां से उन्होंने जानकारी हासिल की, और इसके अलावा हमारा जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर भी हमने उन सारे कामों की लिस्ट डाली थी जहां पर वॉटरशेड में काम हुए हैं उनकी लोकेशन के साथ। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और पहली बार ऐसा हुआ कि लोग जागरूक हो पाए वॉटरशेड के बारे में, लोगों को पता चल पाया। और जब हमने उन रील्स को देखा तो हमें ये सबसे अच्छा पहलू इस पूरे वॉटरशेड महोत्सव और सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन का ये लगा कि ये जो जानकारी हमारे पास आई है वॉटरशेड के बारे में, ये हमारे माध्यम से हमने लोगों को नहीं बताया बल्कि लोगों ने ही एक दूसरे को बताया, लोगों के माध्यम से ये जानकारी एक दूसरे तक पहुंची और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची, और बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने रील्स बनाए हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। आप अभी भी जाएं तो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि वॉटरशेड महोत्सव अगर आप हैशटैग इस्तेमाल करेंगे तो इसके दौरान बनी हुई सारी रील्स आपके सामने आएंगी। 50,000 रुपए के इनाम भी रखे थे, जो पहले 4 विजेता होंगे, सबसे ज्यादा जिनके व्यूज होंगे या जिनका कंटेंट सबसे अच्छा होगा उनके लिए। तो लोगों को ये हमारा जो कंपटीशन था बहुत ज्यादा आकर्षक लगा, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस वॉटरशेड महोत्सव में जो कॉम्पिटिशन हुआ है उसमें। तो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस कॉम्पिटिशन का यही था कि लोगों को पता चले वॉटरशेड क्या है और लोग इस योजना का लाभ उठा पाए, तो उसमें हम सफल हुए। वॉटरशेड जो किसी ने सुना भी नहीं था, लोगों का सवाल होता था वॉटरशेड और योजनाओं के बारे में हमने सुना है लेकिन वॉटरशेड क्या है,
1: क्या है? पता नहीं
0: तो
1: था।
0: उसका उसकी जानकारी उनको इस कंपटीशन के माध्यम से मिली और हम लोगों को बताने में कामयाब हुए कि कैसे वर्षा के पानी को हम संचय कर सकते हैं और हम सॉयल कंजर्वेशन के क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरह से हम वॉटरशेड योजना में ये सारे काम करते हैं, और अगर आप इस योजना में पार्टिसिपेट करना चाहें, क्योंकि जन भागीदारी जो है
1: वो जरूरी है,
0: उस पर हमारा बहुत ज्यादा फोकस है इस योजना में। खास करके हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो इस योजना में काम हो रहे हैं उसमें कुछ परसेंट जन भागीदारी का कंट्रीब्यूशन हो, और जब हम परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं अपने ब्लॉक्स की तो हम उनके बीच में एक कंपटीशन करवाते हैं जिसमें जो विनर ब्लॉक्स होते हैं हमें हम उनको 25 लाख की अतिरिक्त राशि वॉटरशेड के कामों के लिए देते हैं। तो इस कॉम्पिटिशन का उद्देश्य ये भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी को प्रोत्साहन देना,
1: लोगों को जोड़ना इसमें,
0: ताकि हर ब्लॉक में जो काम चल रहे हैं उसमें वो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, लोगों को जोड़ना, लोगों को स्कीम के बारे में बताना, और जो स्कीम में काम होने वाले हैं वो लोग ही तय करें और लोग ही प्लान करें उस काम के लिए, ये हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस रहता है।
1: जी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत किसानों को कुछ उपदान दिया जाता है या कुछ उपकरण दिए जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
0: जी, हम देखिए इस योजना में डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं करते, हम कुछ काम कॉमन लैंड पे ऐसे करते हैं जिससे कि पानी का संचय हो और वहाँ आसपास के एरिया में खेती में उससे मदद मिल पाए। लेकिन एक हम इसमें ये करते हैं कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हम क्लस्टर्स में पंचायत्स में एक जगह सेंटर बनाकर भी इन इक्विपमेंट्स को रखते हैं जहां पर लोग एक नॉमिनल सी फीस देकर उन इक्विपमेंट्स को ले जाके इस्तेमाल करके
1: दोबारा वापिस कर
0: सकते हैं। जी
1: जी, डॉक्टर सोनिया जी, अभी हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे तो मैं जानना चाहूंगी कि इस योजना में किसी वर्ग विशेष या आरक्षित या पिछड़े वर्गों के लिए अलग से प्रावधान है।
0: जैसे हमने कहा कि महिलाओं के ऊपर भी इस योजना में खास फोकस है कि जो मकान बनेगा उसकी स्वामिनी जो है वो महिला होनी चाहिए, उसी तरह से जो हमारे SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। कम से कम 60% हमारा टारगेट जो है वो SC और ST कैटेगरी से होना चाहिए, और अगर वो कम है तो उसके बाद ही हम जनरल कैटेगरी में उन घरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 60% जो है वो योजना का उद्देश्य ये है कि वो इस तरह से जो पिछड़े वर्ग हैं समाज के उन तक इसका लाभ पहुंच पाए, और 3% इसमें ये भी प्रावधान है कि दिव्यांग जन जो हैं उनको हम इसमें ले पाए, हमारे लाभार्थी जो हैं वो कम से कम 3% उनका जो है वो दिव्यांग जन होने चाहिए।
1: आप अपने श्रोताओं को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि हमारे पास ग्रामीण विकास विभाग में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, स्वच्छ भारत अभियान है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, तो इन सभी योजनाओं के बारे में जाने और आप किस तरह से पात्र हो सकते हैं इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, आप अपने ब्लॉक ऑफिस में जाएं या पंचायत में जाएं, पंचायत में सचिव हैं, प्रधान उपप्रधान हैं, उनके माध्यम से इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और जब हम कुछ ऐसी योजना है जिनकी प्लानिंग जब हम करते हैं गांव के स्तर पर और पंचायत के स्तर पर, तो उसमें भाग लें ताकि इन योजनाओं में क्या काम होने वाले हैं, किस तरह से वो काम होंगे, उसमें आपकी जन भागीदारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े।
1: जी जी सोनिया जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई और विभिन्न योजनाओं पर आपने विस्तार से जानकारी दी। मैं आशा करती हूँ कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे श्रोता लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक श्री रितेश कपूर जी ने की थी।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की दिशा में उठाए गए अभूतपूर्व कदम विषय पर डॉक्टर सोनिया ठाकुर, हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की अतिरिक्त निदेशक व प्रदेश नोडल अधिकारी पीएम आवास योजना हिमाचल प्रदेश से राजकुमारी चंदेल की भेंट वार्ता। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी शिमला। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर सेवानिवृत्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व उपनिदेशक श्री मेलाराम शर्मा से डॉक्टर हुकम शर्मा की भेंट वार्ता। हमारा यह प्रसारण आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जा रहा है।
3: नमस्कार श्रोताओं, जैसे आप जानते ही हैं आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है, और इन 90 वर्षों की जब हम बात करते हैं या सोचते हैं अपने सफर के बारे में तो बहुत सी मधुर स्मृतियां हमारे जहन में आती हैं। एक दौर था जब हमें चिट्ठियां मिलती थी हमारे श्रोताओं की, उसके बाद फोन इन कार्यक्रम शुरू हुए, फिर ईमेल बेस्ड कार्यक्रम शुरू हुए, यानी लगातार एक निरंतर प्रवाह में आकाशवाणी ने अपने आप में बहुत से बदलाव किए हैं। शुरुआती दौर की बात करें और आज के दौर की बात करें तो बहुत कुछ बदल चुका है। आकाशवाणी की जो सेवाएं हैं वो डिजिटल प्रसारण शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे वो एक जो हम पुराना दौर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दौर भी बड़ा अच्छा लगता है जब उन मधुर स्मृतियों को हम याद करते हैं। और ना केवल हम, हमारे वो श्रोता भी जो इस पूरे सफर में हमारे हम सफर रहे और जिनका सहयोग, जिनका मार्गदर्शन, जिनका स्नेह प्यार हमें हर कदम पर मिलता रहा। आज एक ऐसे ही श्रोता आकाशवाणी स्टूडियोज में हमारे साथ हैं, श्री मेलाराम शर्मा जी। आप उपनिदेशक गीत एवं नाट्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिला सिरमौर के एक दूर दराज गाँव से संबंध रखते हैं। हमारे श्रोताओं को आप स्वयं अपना परिचय दें कि आपका जिला सिरमौर का जो गांव है वो कहाँ पे स्थित है, क्योंकि देखिए हमारा जिला सिरमौर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की लोक संस्कृति या जो हम कहें कि एक सांस्कृतिक विरासत जो है जिला सिरमौर की, उसकी मेरे ख्याल तुलना कहीं नहीं की जा सकती है। तो बताएं हमारे श्रोताओं को अपने गांव के बारे में थोड़ा।
4: धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश में उपनिदेशक गीत एवं नाट्य प्रभाग से सेवानिवृत्त हुआ हूं, और मैं सिरमौर जिला के बहुत ही जिसको गिरिपार का क्षेत्र कहते हैं पिछड़ा इलाका है, संगढ़ा विकास खंड में एक गाँव पड़ता है अरट, वहाँ का निवासी हूँ। मैंने वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो है बहुत कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की, और मैं तो मुझे गौरव हो रहा है बताते हुए कि मैं अपने गांव का पहला मैट्रिकुलेट हूँ और अपनी पंचायत का पहला ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि उन दिनों जो है शिक्षा का इतना प्रसार नहीं होता था। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं एक लंबे अंतराल तक जो है आकाशवाणी शिमला से भी जुड़ा रहा हूँ। ना केवल मैंने सिरमौरी बोली में यहाँ कार्यक्रम किए, हिंदी में भी अनेक विषयों पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया जाता रहा, और जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो लोक संगीत समिति है हिमाचल प्रदेश की, उसमें भी मैं जो है प्रसार भारती द्वारा मुझे नामित किया गया है एक निर्णायक सदस्य के रूप में। तो मैं आकाशवाणी से लगातार जुड़ा रहा हूं, और मेरा सौभाग्य है कि आज जबकि आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो चुके हैं तो मुझे भी हिमाचल प्रदेश के लोगों से बातचीत करने का जो है आपके माध्यम से मौका मिल रहा है।
3: तो शर्मा जी, अगर हम प्रसारण की बात करें, रेडियो प्रसारण जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे, क्योंकि अब तो आप वरिष्ठ नागरिकों की सूची में शामिल हो चुके हैं, और जब आप स्कूल जाते थे या जब से आप, हम यूं कहें कि रेडियो के बारे में जो आपका अनुभव रहा, पहला अनुभव कब आपने देखा कि रेडियो में कुछ चल रहा है या आप रेडियो सुन रहे हैं?
4: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। जब मेरा जन्म जो है 1959 का, और मैंने 75 में मैट्रिक पास की, लेकिन 1975 मतलब 70 के दशक में भी हमें आभास हो गया था रेडियो जो है प्रचार प्रसार का और सूचना संप्रेषण का एक बहुत सशक्त माध्यम हुआ करता था, और हुआ करता था नहीं, अभी भी है, क्योंकि जिस तरह से ऑथेंटिक सूचना जो है आकाशवाणी के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, क्योंकि उस जमाने में 70 के दशक में जब हम होशोहवास में संभाला, क्योंकि 1975 में मैंने मैट्रिक पास किए, तो गांव में जो है सूचना प्रसारण का कोई भी ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं होता था। उन दिनों आप जानते हैं कि मोबाइल तो होते ही नहीं थे, टेलीविजन भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं

0: बताता है, और सरकारी सूचनाओं के लिए या सरकार के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लोगों तक कैसे पहुंचे, और लोगों की जो समस्याएं हैं वो चाहे समाचार के माध्यम से हो तो वो सरकार तक कैसे पहुंचे, ये सारा काम जो है रेडियो के माध्यम से होता था। और इतना ही नहीं, जैसे आपने कहा कि सिरमौर की बड़ी समृद्ध लोक संस्कृति है, बहुत समृद्ध सिरमौर का लोक संगीत भी है, तो उस टाइम भी जो आकाशवाणी के माध्यम से जो कार्यक्रम प्रसारित होते थे गीत संगीत के, तो वो उसको सुनने के लिए भी मुझे अभी तक याद है कि रेडियो तो आम आदमी के पास रेडियो नहीं होता था उन दिनों,
1: जी
0: हाँ, क्योंकि क्षमता नहीं होती थी। लेकिन वो जो सूचना जनसंपर्क विभाग, जिस विभाग से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं, तो पहले शुरुआत में विभाग जो है हर गांव में और हर पंचायत में एक एक रेडियो सेट, वहां पे विभाग की तरफ से बड़ा रेडियो सेट लगाया जाता था, और उसको जो है शाम को, खासकर जिस वक्त खबरें होती थी और शाम को जिस वक्त जो है सिरमौरी कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रम होते थे, तो जिस आंगन में वो रेडियो बजता था उसमें जो है दर्जनों लोग बैठकर जो है रेडियो के कार्यक्रम सुनते थे, और उनको सूचना प्राप्त करने का केवल एकमात्र यही माध्यम हुआ करता था।
1: यानी लोग एकत्रित होकर, गांव के लोग एक जगह इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, तो कितना अच्छा वो माहौल होता होगा, कितना दर्शनीय वो नज़ारा होता होगा। तो शर्मा जी, उस वक्त का जो रेडियो सेट होता था और आज जो रेडियो सेट है, क्योंकि हमने तो वो दौर देखा नहीं है, तो वो रेडियो सेट भी कुछ अलग तरह का होता होगा।
0: बिल्कुल अलग रेडियो सेट होता था, और वो बहुत बड़े साइज का रेडियो होता था, और उसका जो स्पीकर है वो अलग से एक भोंपू जो है छत के ऊपर लगाया होता था,
1: जी
0: तार वहां से जोड़ के, और फिर हर महीने जो है सूचना जनसंपर्क विभाग के रेडियो मैकेनिक जो है वहां का दौरा करते थे, और उसको देखते थे कि वो ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और कई बार अगर नहीं भी नहीं काम कर रहा है तो वहां के जो जो उसका रेडियो केयर टेकर होता था गांव का कोई एक ग्रामीण, वो इतला भेजता था DPRO ऑफिस को, तो फिर वहां से रेडियो मैकेनिक आता था उसको ठीक करके जाता था, तो वो एक अलग किस्म का माहौल होता था। उसके बाद तो खैर एक फिर 90 के दशक में, 80 के दशक में तो हर घर में रेडियो आने शुरू हो गए, जैसे जैसे लोगों की क्षमता बढ़ती गई अपने रेडियो सेट खरीदने शुरू किए, लेकिन सबसे पहले तो वो तो बहुत बड़ा, एक तो साइज में भी बड़ा होता था वो रेडियो,
1: जी
0: और उसको जो है बड़े आराम तरीके से उसको ट्यूनिंग करते थे, और उसके बाद वो जो उसका अलग से जो स्पीकर होता था छत के ऊपर लगाया हुआ है वो उसके माध्यम से आवाज जाती थी, तो बाद में फिर जैसे जैसे रेडियो की टेक्नोलॉजी विकसित होती रही तो रेडियो सेट जो है वो मतलब
1: जी अब
0: अलग
1: तो मोबाइल
0: अपना,
1: तक पहुंच गया है,
0: हाँ
1: मोबाइल में
0: बिल्कुल,
1: रेडियो
0: अब तो
1: सेट।
0: आज तो फिर मोबाइल ने ले लिया ना रेडियो सेट
1: जी
0: का भी
1: जी जी
0: सारा अपना जितना भी काम।
1: जी तो एक बात और जानना चाहेंगे, उस वक्त जो उस रेडियो सेट को ऑपरेट करता था, क्योंकि उसको भी लोग खास नजर से देखते होंगे कि हाँ ये व्यक्ति है जो रेडियो को ट्यून कर रहा है, रेडियो हमें सुना रहा है, तो उस व्यक्ति को कैसे देखा जाता था?
0: अच्छा, जो एक रेडियो सेट सरकार द्वारा या सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा गांव में लगाया जाता था, वो जिसके घर में वो लगता था उसी को रेडियो केयर टेकर बोलते थे, और वही उसको ऑपरेट करता था, उसके बिना कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता था,
1: जी
0: और उसको इतनी, और लोग जो है जब शाम को जैसे किसी किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का इंटरेस्ट सिरमौरी कार्यक्रम में, तो उसको पता है कि 5 बजे सिरमौरी कार्यक्रम आना, तो वो कार्यक्रम संगीत सुनने वाले लोग वहां पहुंचते थे, वो उसके आगे हाथ जोड़ते थे कि आप हमारे लिए रेडियो शुरू कर दो, तो वो तो हीरो होता था एक किस्म से गांव में।
1: जी
0: और जैसे न्यूज के टाइम में जिनको खबरों की रुचि होती थी, अगर मतलब वो बाई चांस इधर उधर हुआ कहीं तो उसको स्पेशली, क्योंकि उस दिन ना तो मोबाइल होते थे तो ढूंढ के लाया जाता था, और उसके आगे हाथ जोड़ के कि जी आप इसको शुरू कर दो, और आदमी मतलब उसको छू नहीं सकता था रेडियो को, ना ही उसको ऑन कर सकता था।
1: जी यानी ये वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता था उस गांव का,
0: जी
1: और
0: हाँ
1: गांव में, पूरे गांव में वो रेडियो सुनाई देता था। अगर कोई अपने घर पे भी, वहां पे भी नहीं भी इकट्ठा नहीं हुए वहां पे उसके प्रांगण में, तो हर घर तक वो पहुंचता था मेरे ख्याल से।
0: क्योंकि वो स्पीकर ही इतना बड़ा लाउड स्पीकर होता था, तो वो उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती थी, तो जो गांव के अधिकतर लोग तो गांव के प्रांगण में पहुंच जाते थे, लेकिन कुछ लोग तो जो है दूर अपने कहीं भी
1: खेतों
0: बैठ के
1: में
0: खेतों में काम कर रहे हैं या अपने घर के पास ही कोई कुछ काम कर रहे हैं, तो वो बैठे बैठे वहां तक उसकी आवाज जाती थी, सुनते थे। और मैंने तो ऐसे भी नजारे देखे हैं जब शाम को जो है रेडियो पे जब गीत संगीत, और जैसे सिरमौरी कार्यक्रम, नाटियों के कार्यक्रम होते थे, तो रेडियो पे नाटियां चल रही है और आंगन में लोग नाच रहे हैं उसको सुन के,
1: जी जी
0: तो मैं समझता हूं कि ये जो आकाशवाणी ने हमारी जो समृद्ध लोक संस्कृति है, हमारी जो समृद्ध लोक संगीत है, प्राचीन लोक संगीत है, और जिसमें हमारी लोक गाथाएं भी होती है, उनको जिंदा रखने के लिए, उनके संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए भी हमारे जो आकाशवाणी का है वो बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज भी अगर देखा जाए तो हमारी जो पारंपरिक लोक

0: कलाएं हैं, पारंपरिक लोक गाथाएं हैं और पारंपरिक जो लोक संगीत की हमारी विधाएं हैं उनको जीवंत रखने के लिए आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: तो जिला सिरमौर के कुछ ऐसे लोक कलाकार जिनको आप बचपन में सुनते थे और आज भी सुनते होंगे क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग्स तो आकाशवाणी के पास उपलब्ध है ही, आपके जहन में कोई कलाकार हैं जो पुराने कलाकार आकाशवाणी के हुआ करते थे या कोई जो अनाउंसर्स होते थे, क्योंकि अनाउंसर्स या उद्घोषक भी आकाशवाणी का आईना माना जाता है या कहें कि जो एक चेहरा उसको कहा जाता है कि आकाशवाणी का चेहरा ये उद्घोषक है, तो वो चेहरा तो सभी को ही मतलब हर व्यक्ति को याद होता है कि कौन उद्घोषक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है या कौन लोक गायक गीत गा रहा है, तो ऐसे कुछ नाम आपको याद हैं?
0: जी बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो सिरमौर से जो सबसे पहले लोक कलाकार होते थे जिनको लोग बहुत ज्यादा सुनते थे, जैसे किशन सिंह ठाकुर होते थे, हेतराम शर्मा जी होते थे, उनके गीत जो है इतने जबरदस्त हुआ करते थे कि उनकी एक तो आवाज ही अलग से होती थी।
1: मतलब हेतराम शर्मा और किशन सिंह ठाकुर,
0: हाँ, बहुत सुरीली आवाज उनकी होती थी, तो जब उनके रेडियो पे गीत आते थे तो लोग जो है उनको बड़े चाव से सुनते थे।
1: जी, उसके बाद भी दौर आया कृष्णलाल सहगल साहब और बहुत सारे
0: वो तो बाद के हैं, लेकिन डॉक्टर
1: शुरुआती दौर में,
0: हाँ, शुरुआती तौर की कर रहा हूं मैं बात, और उसके बाद तो खैर डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जो आज जिनको आज पंडित की उपाधि से भी नवाजा गया है।
1: जी जी,
0: और पहले ए ग्रेड आर्टिस्ट होते थे, पंडित
1: टॉप ग्रेड में,
0: टॉप ग्रेड में इस आज की,
1: और हिमाचल के पहले लोक कलाकार,
0: हाँ हिमाचल के पहले लोक कलाकार भी है। और वो जो मैं समझता हूं कि हमारे जो जितने भी आज लोक कलाकार है हिमाचल प्रदेश के, सिरमौर के तो है ही है, अधिकतर लोग उनको जो है बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और गुरु मानते हैं, और हकीकत में डॉक्टर कृष्णलाल सहगल हैं भी गुरु, क्योंकि उनका अनुसरण किया जाता है जब आकाशवाणी से उनका प्रसारण होता है, उनके गीतों का प्रसारण होता है।
1: जी, यानी एक तरह से आप मानते हैं कि आकाशवाणी एक बहुत बड़ा मंच है।
0: जी, आकाशवाणी ना केवल लोक कलाकारों को उनकी कला संप्रेषण का मंच है बल्कि नवोदित कलाकारों के लिए सीखने का भी बहुत बड़ा एक मंच है। और कोई जैसे डॉक्टर कृष्णलाल सहगल पंडित की उपाधि से हुए हैं, तो लोग जो है उनको सुन सुन के उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो इससे बड़ा मंच जो है लोक संगीत के लिए और लोक कलाकारों के लिए कोई हो नहीं सकता।
1: तो शर्मा जी देखिए, अब तो एक प्रतियोगिता का दौर आ चुका है, एक वक्त था जब आकाशवाणी ही आकाशवाणी था और कुछ भी नहीं था, लेकिन आधुनिक दौर में अब बहुत से प्राइवेट रेडियोज आ चुके हैं और आकाशवाणी भी है उसी प्रतिस्पर्धा में, आप क्या कुछ सुझाव देंगे कि आकाशवाणी और आगे बढ़े, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो हमारा ध्येय वाक्य है इस वाक्य के साथ हम आगे बढ़ें, आपके कुछ सुझाव प्रसारण की दृष्टि से कोई सुधार आप चाहते हैं?
0: ऐसा है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्राइवेट मीडिया, प्राइवेट रेडियोज, बहुत सारे माध्यम अब शुरू हो चुके हैं, तो ऐसे में जहां तक मैं समझता हूं अगर क्रेडिबिलिटी देखी जाए तो क्रेडिबिलिटी के लिए आकाशवाणी का कोई अभी तक जो है सानी नहीं, इनका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता आकाशवाणी के बराबर जो क्रेडिबिलिटी के मामले में। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे मीडिया में जो है ना आजकल बहुत फूहड़ता लोगों को जो है परोसी जा रही है, इससे क्या हो रहा कि हमारे लोक संगीत को और हमारी लोक विधाओं को जो है प्रदूषित किया जा रहा है, उनका जो पहलू है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है और उसको खराब किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी ने विशुद्ध लोक परंपराओं और लोक संस्कृति को बचाकर रखा है वो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी है, और मैं समझता हूं कि अगर इसी परिपाटी को जो है आकाशवाणी लगातार बनाए रखेगी तो इससे बड़ा योगदान लोक संस्कृति और लोक संगीत के लिए और सूचना संप्रेषण के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सूचना प्रेषण चाहे समाचार ले लो आप, चाहे आपकी दूसरी वार्ताएं ले लो, जो ऑथेंटिसिटी आपके कार्यक्रम में है, विश्वसनीयता जिसे कहते हैं, लोग जो है सुनी सुनाई बातों पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हर कुछ आ रहा है, आजकल झूठी खबरें फैलाई जा रही है, लेकिन आकाशवाणी अभी भी लोग विश्वास करते हैं और जो आकाशवाणी से प्रसारण हो गया वही सच है, बाकी किसी पे कोई अभी विश्वास नहीं करता, तो इसलिए आकाशवाणी की जो विश्वसनीयता है मैं समझता हूं ये बनी रहनी चाहिए। और जो जिस तरह का योगदान लोक संस्कृति, लोक कलाओं और लोक संगीत के प्रसारण और संवर्धन और संरक्षण के लिए आकाशवाणी करती है और करती रही है, इसी तरह से आगे बढ़ता रहे आकाशवाणी, तो समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान भी होगा और उपकार भी होगा।
1: मेलाराम शर्मा जी, आप श्री के श्रोता जब आकाशवाणी से जुड़े रहे पहले भी और हम आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं, तो हमें पूरा यकीन है कि आपके स्नेह, आपके मार्गदर्शन और जैसे कि आपने कहा कि आकाशवाणी की विश्वसनीयता जन जन तक बहुत है, हम उस विश्वसनीयता को कायम

0: और आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज में आए, आकाशवाणी प्रसारण से जुड़ी हुई जो तमाम बातें आपने साझा की हमारे श्रोताओं से, तो एक दौर जो पुराना दौर जिसके बारे में आपने चर्चा की, शायद बहुत लोगों को तो ये विश्वास भी नहीं होगा कि एक दौर वैसा भी रहा होगा, लेकिन आप उसके गवाह हैं, साक्षात गवाह हैं, और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमारे कार्यक्रम से श्रोताओं से साझा की। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रसारण के 90 वर्ष के उपलक्ष पर सेवानिवृत्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व उपनिदेशक श्री मेला राम शर्मा से डॉक्टर हुकुम शर्मा की भेंट वार्ता। हमारा यह प्रसारण आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी रिले किया जा रहा था। 8:45 होने को है। हमारा अगला प्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
4: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।

0: संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा

0: था कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
1: The negotiating team which came from
2: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: ट्रेड अग्रीमेंट फॉरवर्ड।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुग्यानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kakamigahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future and India is actively contributing to this transition.
5: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
4: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
5: Surat sirf swachhta aur circular economy tak hi simit nahi hai, balki green growth ke dusre madhyamon ka bhi abhutpurva gati se vistar ho raha hai. Surat aisi vyavastha banane mein juta hai jahan sadkon par chalne wali sari basein electric hongi. Saath hi yahan Surat metro ka bhi vistar ho raha hai. ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
4: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
5: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमण और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।

0: Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final in Japan. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं एक ही फिल्म के क्रम में फिल्म गीता मेरे नाम के गीत।

श्रोताओ, फिल्म गीता मेरा नाम आर के नैयर द्वारा निर्मित 1974 की एक भारतीय हिंदी फिल्म है।

श्रोताओ, फिल्म गीता मेरा नाम के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं। श्रोताओ, इस फिल्म को निर्मित किया आर के नारायण ने 1974 में। उनकी पत्नी साधना ने फिल्म में दोहरी भूमिकाएं निभाई और निर्देशन भी किया। फिल्म में सुनील दत्त, फिरोज खान और हेलन भी हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म के क्रम में फिल्म गीता मेरे नाम का ये गीत। श्रोता, ये फिल्म चार बच्चों की कहानी है जो एक मेले में बिछड़ जाते हैं और सालों बाद अनजाने में फिर से मिलते हैं, जब गीता यानी साधना की मुलाकात नीता, जो उसी की सगी बहन है, से जेल में होती है। नीता पर हत्या का गलत आरोप लगा है। इसके बाद गीता असली हत्यारे को खोजने की साजिश में फंस जाती है, जो उसे उसके भाई जॉनी यानी सुनील दत्त के गिरोह तक ले जाती है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म दीवाना से। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का। गीत को गाया था कुमार सानू और साधना सरगम ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म सैनिक का ये गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में, कारवां सुरों का। इसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है दामिनी और गायक कलाकार कुमार सानू और अलका याग्निक। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कारवां सुरों का के अंतर्गत फिल्म संगीत आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से चिट्टा मुक्त जीवन और स्वच्छ पर्यावरण पर रिज शिमला में आयोजित मिनी मैराथन समारोह होगी रेडियो रिपोर्ट रिले की जाएगी।

0: हमारा यह प्रसारण आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।
1: युवा शक्ति समाज की रीढ़ होती है। युवा घर परिवार और समाज का भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु कई बार युवा किन्हीं कारणों की वजह से अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं और नशे के शिकार हो जाते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला के रिज मैदान में एंटी चिट्टा और स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस और पर्यावरण तथा जनगणना विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को चिट्टे के नशे और अन्य नशों से दूर रहकर स्वस्थ जीवन अपनाने और पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। इस आयोजन के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण चिट्टा मुक्त जीवन हमारा संकल्प, ये संदेश भी प्रमुखता से दिया गया। इस मिनी मैराथन में दो श्रेणियां रखी गई थी, पहली 10 किलोमीटर की मिनी मैराथन और दूसरी 3 किलोमीटर की प्रेरणा दौड़ आयोजित की गई। इस दौड़ का शुभारंभ प्रातः हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मैराथन में देश व प्रदेश के विभिन्न भागों से आए हरेक वर्ग के लोगों ने भाग लिया। मैराथन का आकर्षण विशेष रूप से सक्षम बच्चे रहे। ये मिनी मैराथन नशा मुक्त हिमाचल और स्वच्छ हिमाचल के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा सकता है। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता ने अपने संदेश में कहा,
2: विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूं। आज इसी दिन के हेतु यहां पर कार्यक्रम का बहुत बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड पुलिस इनके साथ मिलकर के एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ, जिसमें मैराथन का आयोजन किया गया। तो पर्यावरण के साथ नशा मुक्ति पर भी शपथ भी दिलाई गई लोगों को कि हम इससे समाज में भी सुधार के लिए बड़ा जरूरी है, हर कोई व्यक्ति संकल्प ले। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि समाज के लिए ये बहुत बड़ा नासूर है, उस नासूर को खत्म करने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है उसको भी सुरक्षित करने के लिए इस अभियान को आगे चलाएंगे।
1: इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपस्थित लोगों को हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त एवं स्वच्छ स्वस्थ सुरक्षित हरित हिमाचल के निर्माण हेतु निष्ठा एवं समर्पण से कार्य करने की शपथ भी दिलाई।
3: भारत माता की, भारत माता की। हम सभी आज यह पवित्र शपथ लेते हैं,
4: यह पवित्र शपथ लेते हैं
3: कि
4: हम
3: स्वयं कभी चिट्टा या किसी भी नशे का सेवन
4: नहीं करेंगे
3: और
4: हम अपने
3: परिवार
4: मित्रों
3: और समाज को
4: चिट्टे
3: एवं नशे से
4: दूर रहने के लिए
3: जागरूक
4: एवं
3: प्रेरित करेंगे।
4: हम
3: हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने
4: तथा युवाओं
3: और आने वाली पीढ़ियों
4: के सुरक्षित भविष्य के लिए
3: सक्रिय
4: योगदान
3: देंगे।
4: हम
3: अपने
4: पर्यावरण
3: जल वायु और हरियाली

0: की
1: हरियाली की
0: रक्षा
1: करेंगे
0: तथा
1: प्रकृति को
0: नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से
1: दूर रहेंगे।
0: हम सब मिलकर
1: स्वच्छ
0: सुरक्षित
1: हरित एवं
0: चिट्टा मुक्त
1: हिमाचल के निर्माण हेतु
0: पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कार्य करने का संकल्प लेते हैं। जय हिंद जय हिमाचल।
2: इस अवसर पर कबूतरों तथा रंग बिरंगे गुब्बारों के माध्यम से इस जन आंदोलन के लिए चिट्टा मुक्त हिमाचल और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुख ने कहा,
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मैं आप सभी को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा मानना है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। साफ पानी, शुद्ध हवा, हमारे जंगल और नदियाँ हमारे जीवन का आधार है। इसलिए कुदरत के इन अनमोल उपहारों को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह मिशन सिर्फ एक दिन तक ही न सीमित रहे बल्कि पर्यावरण की रक्षा हम सबकी जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्लास्टिक का उपयोग न करें। प्रकृति की रक्षा कोई विकल्प नहीं है बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर एक हरे भरे हिमाचल प्रदेश का निर्माण करें। प्रकृति की रक्षा यानी हमारी स्वयं की सुरक्षा है। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण का महत्व और भी ज्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव, बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाएं हमें यह संदेश दे रही है कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। प्रदेश के जंगल हमारी जीवन रेखाएं हैं और हमारी सरकार फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश की 100% भूमि में से 68% वन भूमि है, यानी कि 68% वन भूमि है और 28% पर गहरा जंगल है। हम इस गहरे जंगल में और इसमें वृद्धि हो उसको 2030 तक 32% बढ़ाने की दृष्टि से हम राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुरुआत की है, जिसके तहत युवा मंडल, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूहों को पैसे के अनुसार 1 हेक्टेयर भूमि पर अगर वो वन उगाते हैं तो उन्हें 1,40,000 रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। हम देश को इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में, पूरे देश को 90,000 करोड़ रुपए की हर साल की इकोलॉजिकल सर्विसेज के रूप में सेवाएं कर रहे हैं। 5 नदियां जो हिमाचल प्रदेश की है वो ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश से होती है, लेकिन जो हमारे पानी है, जो हमारी संपदा है, जो हमारा बहता हुआ सोना है, उसका सदुपयोग काफी समय से कई बड़ी कंपनियां और पूरे नॉर्दर्न इंडिया के हमारे जो प्रदेश है वो कर रहे हैं। हम उनसे अपने अधिकार की लड़ाई मांग रहे हैं। हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया भी है, यानी कि जो साफ हवा आज दिल्ली में पहुंचती है, अगर शिमला में बारिश होती है तो हवा दिल्ली में भी पहुंचती है। मैं आज आपके साथ चिट्टे पे भी बात करना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने चिट्टे के खिलाफ भी एक जन आंदोलन शुरू किया है। यह अभियान केवल सरकारी अभियान नहीं है बल्कि यह लोगों की भागीदारी के साथ एक जन आंदोलन बन चुका है। युवाओं, महिलाओं और समाज के हर वर्ग से हम इस अभियान में योगदान मिल रहा है। हमारी सरकार की नीति चिट्टे पर जीरो टॉलरेंस की है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर पंचायत स्तर तक चिट्टा तस्करों और नशा करने वालों की पहचान की गई है। हमने नशे के प्रभाव के आधार पर पंचायतों को 3 वर्गों में बांटा है। रेड, येलो और ग्रीन श्रेणी में बांटा गया है। जहां नशे का प्रभाव ज्यादा है वहां सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और चिट्टा माफियों की कमर तोड़ी जा रही है। मैं आज एक बार फिर चिट्टा माफियों को चेतावनी देता हूं कि अगर वह नहीं सुधरे तो मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। चिट्टा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई है। नशा कारोबारियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है और अब तक हमने 66 ऐसी संपत्तियों की पहचान कर ली है और 17 मामलों में नशा माफियों की संपत्ति को, जो उन्होंने नशा के द्वारा धन कमाया था, संपत्तियां बनाई थी, को ध्वस्त कर दिया गया है। चिट्टे के काले कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को सरकार छोड़ेगी नहीं, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। कानून से ऊपर कोई

0: संकल्प भी है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस मिशन में आप हमारा भरपूर सहयोग दें। अभी जो चिट्टे से ग्रस्त लोग थे उन्हें डी एडिक्शन सेंटर उनके लिए कोई नहीं था, प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर चलते थे। मैंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया और 7 तारीख को जो महिलाएं चिट्टे में सम्मिलित पाई गई है कुछ उनके लिए पहला डी एडिक्शन सेंटर हम मशोबरा में बनाने जा रहे हैं और उसमें जो महिलाएं वापिस समाज की मुख्य धारा में आना चाहती है उन्हें दोबारा से मुख्य धारा में लाने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। इसी प्रकार कांगड़ा में भी हम एक डी एडिक्शन सेंटर बनाने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वहाँ भी जो हमारे युवा साथी जो चिट्टे की लत में पड़ गए हैं, परिवार के लोगों को पता नहीं है कि कहाँ उनका इलाज करवाना है, उस दृष्टिकोण से भी हम कांगड़ा में एक जल्दी ही डी एडिक्शन सेंटर को खोलने जा रहे हैं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ। जनगणना का काम शुरू हो चुका है, मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि जनगणना के काम में बढ़ चढ़ कर भाग ले और अपनी सही जानकारी दर्ज करवाए। एक बार फिर से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय कार्य करने वाले संगठनों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों को आज HP एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इसके लिए सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी युवा साथियों से आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई भी आपके पड़ोस में कोई भी युवा साथी गलती से चिट्टे की लट में अगर फंस गया है उसकी जानकारी पुलिस विभाग के 112 नंबर पर दीजिए। 112 वाले नंबर पर दे जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा और जो चिट्टे में सम्मिलित कोई माफिया आपको नजर आता है उसकी जानकारी भी आप 112 नंबर पर दीजिए। इसी के साथ मैं सभी पर्यावरण प्रेमियों को बहुत बहुत आज पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: इस मिनी मैराथन के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक तिवारी ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा,
2: माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मेयर शिमला, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण, प्रिय युवा साथियों, देवभूमि हिमाचल के जागरूक देवियों और सज्जनों, विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर आयोजित इस विशेष समारोह में हिमाचल प्रदेश पुलिस पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत सरकार के जनगणना विभाग की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस और एंटी चिट्टा जन आंदोलन का एक साथ जुड़ना कोई संयोग नहीं है, क्योंकि प्रकृति और युवा दोनों को बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण धीरे धीरे प्रकृति को नष्ट करता है, वैसे ही चिट्टा धीरे धीरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। आज का यह आयोजन केवल एक मिनी मैराथन अथवा पुरस्कार वितरण समारोह नहीं है, यह एक ऐसे हिमाचल के निर्माण का संकल्प है जो स्वच्छ भी हो, हरित भी हो और चिट्टा मुक्त भी हो। हिमाचल प्रदेश ने अनेक चुनौतियां देखी हैं, किंतु पिछले कुछ वर्षों में जिस चुनौती ने सबसे अधिक परिवारों को भीतर तक झकझोरा वह चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों का बढ़ता हुआ दुष्प्रभाव था। यह केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी। ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए चिट्टे के विरुद्ध लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाया। महोदय ने स्पष्ट कहा कि यदि हिमाचल को बचाना है तो हर गांव, हर पंचायत, हर विद्यालय, हर महाविद्यालय, हर परिवार और हर नागरिक को इसका हिस्सा बनना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने पिछले वर्ष 15 नवंबर को इसी ऐतिहासिक रिज मैदान से एंटी चिट्टा जन आंदोलन का शुभारंभ किया। आज यह अभियान एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक सामाजिक क्रांति का रूप ले चुका है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जन आंदोलन में को अपना मिशन बनाया है और इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही है। आज प्रदेश का प्रत्येक युवा चिट्टा छोड़ो जीवन चुनो का संदेश दे रहा है। आज पंचायतें चिट्टा मुक्त पंचायत का संकल्प ले रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने चिट्टा तस्करों, संगठित अपराधियों और नशा नेटवर्क के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। साथ ही जागरूकता फैलाने और नशे की गिरफ्त में आए युवाओं के उपचार, परामर्श और पुनर्वास को भी समान महत्व दिया है। इसी महीने 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय मशोबरा में प्रदेश में महिलाओं के लिए डी एडिक्शन कम रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस सेंटर को हिमाचल प्रदेश पुलिस संचालित करेगी। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों से भी आग्रह करता हूं कि चिट्टे के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएं और किसी भी प्रकार की सूचना, चाहे वो चिट्टे से रिलेटेड हो या किसी चिट्टे एडिक्ट के बारे में हो, किसी परिवार की समस्या हो, उसको ERSS 112 पर तुरंत शेयर करें। आपकी एक सूचना किसी तस्कर को पकड़वा सकती है, किसी परिवार को टूटने से बचा सकती है और किसी युवा का भविष्य बचा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिमाचल प्रदेश पुलिस आपके नेतृत्व में इस जन आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने तथा चिट्टा मुक्त हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

0: का इस समारोह में पधारने तथा अपने मार्गदर्शन से हम सभी को प्रेरित करने के लिए हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: इस अवसर पर पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव श्री सुशील सिंगला ने अपने उद्बोधन में कहा,
2: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों का और बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये समर सीजन है और हमारे बहुत नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जैसे कि सभी को विदित है कि आज 5 जून का दिवस है, ये पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विश्व को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने तथा सतत विकास के लिए प्रेरित करने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पहली बार हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर इस तरह का आयोजन कर रहा है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। स्वच्छ हिमाचल, हरित हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल, इस संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए माननीय राज्यपाल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छ हिमाचल, हरित हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल मिनी मैराथन का शुभारंभ आज प्रातः किया गया। पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त समाज एक दूसरे के पूरक लक्ष्य हैं। दोनों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेवारी, सामाजिक सहयोग और निरंतर जागरूकता आवश्यक है। एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण नशे की प्रवृत्ति रोकने में सहायक हो सकता है। हरित क्षेत्र, पार्क, खेल मैदान और सामुदायिक स्थान युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं। वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में भागीदारी से युवाओं में जिम्मेदारी, अनुशासन और समाज के प्रति जुड़ाव की भावना विकसित होती है, जिससे वे नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहते हैं। मिशन लाइफ एक भारत सरकार का प्रोग्राम है जो सतत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता जीवन शैली को बढ़ावा देने का एक पहल है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले व्यक्ति के भीतर सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है। यह विचार नशे की समस्या से भी जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। आओ मिलकर हिमाचल को स्वच्छ, हरा भरा और चिट्टा मुक्त बनाएं। स्वस्थ युवा, स्वस्थ पर्यावरण और जागरूक समाज के संकल्प के साथ सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल हिमाचल का निर्माण करें। धन्यवाद।
1: विभिन्न वर्गों में मिनी मैराथन प्रतियोगिता के विजेताओं को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मिनी मैराथन में हजारों प्रतियोगियों ने भाग लिया। इसमें जतिन, मुस्कान, नरेश, कुलदीप, भीम सिंह और रजनी ने अपने विचार व्यक्त किए।
3: आज 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया है और यहाँ हिमाचल प्रदेश पुलिस व एनवायरनमेंट विभाग द्वारा एक मैराथन आयोजित की गई थी, जिसमें बहुत सारे युवाओं और युवतियों ने पार्टिसिपेट किया है और ये हिमाचल को चिट्टा मुक्त तथा एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। धन्यवाद।
4: मैं तो सारे पहले अज 5 जून अपना मैराथन दौड़ रहे हैं, सारे ने पार्टिसिपेट किया। पुलिस एंड आर्मी एंड सिविल जनता ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो मैं इसका तहे दिल से गवर्नर साहब एंड सीएम साहब का बहुत धन्यवाद हूँ जो इन्होंने ये अभियान चलाया है। आज सभी ने बहुत ही तहे दिल से शब्द लिया है कि हम चिट्टा मुक्त ये शिमला को करेंगे, कोई भी नशा नहीं करेंगे हम। आज से ये गवर्नर साहब ने सुबह जब स्टार्ट किया था मैराथन ये शब्द दिलाई थी, तो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ परमात्मा का, सब ये नशे से मुक्त रहें। थैंक यू।
5: आज एनवायरनमेंट डे पे आज हम यहाँ मैराथन करने के लिए आए थे और ये एक बहुत अच्छी एक पहल है सरकार के द्वारा एक चिट्टा मुक्त हिमाचल को बनाने के लिए। हम बहुत खुश हैं और आज की युवा पीढ़ी इसको कर रही है, हमें बहुत खुशी है और हम काफ़ी आनंद के साथ यहाँ मैराथन करने के लिए आए थे। धन्यवाद।
6: भीम सिंह, हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित मैराथन में मैं भी एक कंटेस्टेंट के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है इस पे और चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए जो ये पहल है हिमाचल पुलिस की, इसमें मैं भी एक अपना छोटा सा योगदान दे रहा हूँ मैराथन में दौड़ के रूप में। तो सभी से मेरा आग्रह ये है कि चलना है, रुकना नहीं है, अब कभी ना कभी आप अपनी मंजिल तक आप जरूर पहुँचोगे।
7: आई एम अ PhD स्कॉलर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंड आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर द रिज शिमला पर हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये जो एंटी चिट्टा मैराथन सच में एक बहुत बड़ा कदम था। इतने लोग एक साथ नशे के खिलाफ और साफ पर्यावरण के लिए दौड़े, ये देखकर दिल खुश हो गया है एंड ये सिर्फ एक रेस नहीं थी बट एक संदेश था पूरे हिमाचल के लिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आज जो इनिशिएटिव लिया है वो सच में

0: के मतलब काबिले तारीफ है। एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर एंटी चिट्टा मिनी मैराथन में हम हजारों लोगों का जुड़ना ये दिखाता है कि हिमाचल नशे के खिलाफ एकजुट है। मैं बहुत खुश हूँ एंड इट इज़ अ मीनिंगफुल मोमेंट एंड हम सब इसका हिस्सा बने, बहुत ज़्यादा भाग्य की बात है। थैंक यू।
1: नमस्कार, मैं नरेश छाजा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस उपलक्ष्य पर हिमाचल पुलिस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विभाग से एक ड्रीम रन और मैराथन रन का आयोजन किया गया और ये एंटी चिट्टा और गो ग्रीन के नाम से किया गया और ये बहुत अच्छी पहल है कि आज आने वाली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो चिट्टा में संलिप्त हो रही है, उससे उभरने के लिए बहुत अच्छा। मेरा भी ये संदेश है, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले और चिट्टे को जो है हिमाचल प्रदेश से दूर भगाएं। धन्यवाद।
2: आज की इस एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन में दोहराया गया युवाओं के लिए संकल्प, प्रदेश बनेगा नशा मुक्त हिमाचल स्वच्छ पर्यावरण से भरपूर। इसी के साथ चिट्टा मुक्त जीवन और स्वच्छ पर्यावरण के लिए हुई मिनी मैराथन समारोह की रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। तकनीकी सहयोग वरिष्ठ तकनीशियन रामचंद, संपादन आलेख और वाचिका सपना ठाकुर, क्षेत्र संकलन और प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
3: अभी आप सुन रहे थे चिट्टा मुक्त जीवन और स्वच्छ पर्यावरण पर रिज शिमला में आयोजित मिनी मैराथन समारोह की रेडियो रिपोर्ट। इसमें तकनीकी सहयोग दिया वरिष्ठ तकनीशियन रामचंद्र ने, संपादन आलेख व वाचक स्वर सपना ठाकुर का था, क्षेत्र संकलन व प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं पुराने फिल्मों से गीत चित्रपट संगीत में। सभी श्रोताओं को अनुराधा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म इजाजत के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म शागिर्द का ये गीत। संगीत यह है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

पुरानी फिल्मों से गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से कार्यक्रम चित्रपट से में, और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मुकेश, फिल्म का नाम रोटी कपड़ा और मकान।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पुरानी फिल्मों से गीत चित्रपट संगीत में। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री

0: ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।